0: काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
1: बटकराही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। सुबह 11 बजे से आपके लिए ओपन। इसके अलावा बटकराही की रिवायती कड़ाही, बीफ पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकराही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पे पे। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
3: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
4: Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
5: टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आजान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निजाम औकात के मुताबिक नमाज मगरिब अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में आजान मगरिब।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210।
3: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM। स्टे ट्यून्ड।
4: जगाती है कयामत कोई।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विथ $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Take it away!

0: आप सुन रहे CMR at 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवॉन्टेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
5: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m.

कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: FM. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड एट 3852 फिंच एवेन्यू, ईस्टर्न स्कारबरो, यूनिट GO3। आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se aur call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: Listen to us around the universe, www.cmr.fm.

0: FM।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves।
2: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: Listen to us around the universe, www.cmr.fm.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
3: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 30, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेन हैपनिंग। थंडरस्टॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है। टेम्परेचर्स अ लिटिल लोअर देन यस्टरडे, अबाउट 2 degrees, एंड सनसेट 8:26 पे होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर्स अबाउट 27 टुडे, थंडरस्टॉर्म्स लाइकली अराउंड 12:30 PM, एंड टुमारोज मैक्सिमम टेम्परेचर्स 28, फ्राइडे 27. Beautiful, beautiful weather, and nothing to really, really complain about. AQI ki baat karein, it's about moderate, and it is at 52. Studio ka number 416-593-0005, and Mashal was the film. Filmaya ye geet on none other than Anil Kapoor, and Zindagi Aa Raha Hoon Main, and legendary voice of Kishore Kumar Saab, जिससे हमने दिन की शुरुआत की है। 12:15 की हेडलाइन, स्पॉन्सर्स के मैसेजेस, एंड आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है उसके लिए आपने कॉल करना है 416-593-0005। सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन, एंड राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी, सर्विंग फ्रॉम 30+ लोकेशंस इन GTA, बियॉन्ड GTA। कॉलर है, उन्हें लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो, ओके, कॉल बैक 416-593-0005 पे आप कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 6478631940 पर, 6478631940 पर टेक्स्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू लिसन टू अ सॉन्ग। एंड 12 अगस्त यानी आज सूर्य ग्रहण है, एंड अजय जी ने ये मुझे भेजा है, 12:55 से लेकर 2:23 दोपहर को सूर्य ग्रहण है, एंड टोरंटो में ये दिखाई देगा, एंड इन फैक्ट इट्स वी कैन आल्सो सी इन विनिपेग, पीपल दैट लिव इन विनिपेग एंड एडमिंटन एज वेल, एंड वैंकूवर में ये नहीं दिखाई देगा। क्या है खास, ये एक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के एक हिस्से को ढकेगा। So, yeah, I actually received this actually few days ago also from a listener of ours. Aur listeners ka bahut bahut shukriya, because listeners always koi na koi is tarah ki information jo hai bhej dete hain, to usse hamare liye easy ho jata hai, sometimes sari information aap tak pahunchai nahi jati, so baki ke listeners jo hain wo ye kaam kar dete hain, surya grahan ka bata diya, so thank you so much, solar eclipse I think ise kehte hain if I'm not wrong, and bahut hi main choti si break lene wala hoon, एंड 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 months। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, बीजीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.

0: जोशी।
1: आदाब, मैं आप सबको तहे दिल से दावत देना चाहती हूँ शामे रिख्ता में। शामे रिख्ता रिख्ता फाउंडेशन का एक खास ऑडिटोरियम कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक शो या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उर्दू के हुस्न, उसकी तहजीब और उसकी रूह के साथ गुजारी हुई एक यादगार शाम है। 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर, मिसिसागा। बुक योर टिकट्स ऑन टिकट मास्टर।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। रिमेंबर, यूर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट।
3: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
4: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232। Clear Optical by Varun Kanda.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
3: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

0: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Win Lifetime Trading, Clear Optical by Varun Khanda, McQueen Dental Care, Kavya Homeo Care, as well as Brampton TV and Appliances, Wayne's Auto. Shuru karte taza tareen headlines. Donald Trump ka kehna hai ki Iran can't borrow money. Military action ki dhamki bhi thi. Secret Service ki request par Donald Trump ne planes ko switch kiya, Iran threat ka hawala diya. Trump ka kehna hai ki Russian President Vladimir Putin ke saath hui chat ke baad ex-US Marine ko Russian jail se release kiya gaya. Woh 4.5 saal se Russia ki jail mein tha for assaulting a police officer. ग्रीनलैंड में बिना परमिट के यूएस एनर्जी फर्म ने ड्रिलिंग इक्विपमेंट को अनलोड किया. ईरानियन पोर्ट ब्लॉकेड को ब्रेक करने की कोशिश करने वाले पैनामा फ्लैग्ड शिप को यूएस ने किया हिट. कोलंबिया के 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का काउंट 250 के पार पहुंच चुका है. इंडिया ने पाकिस्तान सऊदी तुर्की के न्यू डिफेंस पैक्ट पर कहा वी आर एग्जामिनिंग इट्स इंप्लिकेशंस. यूके डिफेंस सेक्रेटरी ने नेवी ड्रोन स्केयर को लेकर कहा नो सेंसिटिव डेटा सेंड टू चाइना. एंड लेबनान पहला मिडल ईस्ट नेशन बना टू फॉर्मली अबॉलिश डेथ पेनल्टी. यमन के हूतीज ने रेड सी में कार्गो शिप पर किया हमला, 3 लोग मारे गए. लोकल समाचारों में ब्रैम्पटन प्रॉपर्टी ओनर को कन्विक्ट किया गया इन 2023 फायर दैट किल्ड अ प्रेग्नेंट वुमन एंड हर 3-year-old चाइल्ड. टोरंटो ज्वेलर को अक्यूज किया गया ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी फॉर रायन वेडिंग कंसेंट्स टू एक्सट्रेडिशन. एंड सेंट क्लेयर शूटिंग का सस्पेक्ट पहुंचा अदालत. ब्रैडफोर्ड ने वादा किया टू रिप आउट इटोबिको बाइक लेन, ही वोटेड फॉर इट इन 2023. डिस्प्ले प्रॉब्लम के चलते टोयोटा रिकॉल्स मोर देन 11,000 व्हीकल्स इन कनाडा एंड हैवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स पॉसिबल इन जीटीए टुडे. भारतीय समाचारों में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने गवर्नर से की मुलाकात टू सीक पैरोल फॉर बेअंत सिंह मर्डर कॉन्विक्ट. 31 साल से ये कॉन्विक्ट जेल में है. चीफ मिनिस्टर हिमांता शर्मा बोले फ्लड कॉम्पनसेशन के लिए असम को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी. बिहार में 24 आवर्स में लाइटनिंग से 9 लोग मारे गए, 3 डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्ट. जेप्टो के बेंगलुरु वेयरहाउस में रेड ने फिल्थ को एक्सपोज किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक कंडीशंस. पंजाब के बीजेपी चीफ केवल ढिल्लो ने पूछा झारखंड प्रोटेस्ट साइट को राहुल गांधी ने क्यों नहीं विजिट किया फॉलोइंग द लाठी चार्ज. उत्तर प्रदेश ने काउ यूरिन कलेक्शन पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा और कहा बीजेपी का ये बड़ा स्कैम है टू रेज फंड्स फॉर इलेक्शंस. केंद्र का कहना है कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट टू एक्सट्राडाइट शेख हसीना बीइंग एग्जामिन्ड. बंगाल को जल्द मिलेगा एंटी कन्वर्जन लॉ, कर्ब लैंड सेल अक्रॉस कम्युनिटीज. फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पैसेंजर की आप बीती, कहा पायलट सीम्ड pretty high when we were boarding the plane. Punjab farmers ne adopt kiya resolution to engage with center over E20 policy. Aur patni ke saath hui argument ke baad Himachal ke vyakti ne apne 6 saal ke bacche ko nadi mein pheka. Police ne use arrest kiya, rescue operation jari. Bengaluru ke assembly complex mein kitchen ke andar cockroaches aur expired idli mile. स्पोर्ट पाकिस्तान की खबरों से रेड सी पर हुए कमर्शियल शिप अटैक में 3 पाकिस्तानीज भी मारे गए, हूतीज ने किया था हमला. गवर्नमेंट इज क्लोजली फॉलोइंग सिचुएशन आफ्टर द इंसिडेंट. रिपोर्ट के अनुसार कराची के मीर रजा को टॉर्चर किया गया था, एसिड पार्टिकल्स फाउंड ऑन द शर्ट. केमिकल एग्जामिनेशन से पता लगा 2 गन शॉट होल्स ऑन द शर्ट. आइडेंटिटी को कंसील किया गया था, विक्टिम्स के हाथों पर नो फिंगरप्रिंट्स फाउंड. प्रेसिडेंट जरदारी ने एनएससी कमांडो जनरल रजा को निशाने इम्तियाज से नवाजा, पीएम शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर भी थे शामिल एट द सेरेमनी. द न्यू टाइटल एनएससी कमांडर को एस्टैब्लिश किया गया आफ्टर द पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी अमेंडमेंट बिल्स 2025 पास्ड लास्ट ईयर. रावलपिंडी के मॉल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर हुई फायरिंग, पीटीआई वर्कर शॉट डेड. सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है मोहम्मद हुसैन फ्रॉम खाइबर. पुलिस के मुताबिक सस्पेक्ट का स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था. एंड दूसरी ओर आईएसपीआर के अनुसार सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कंडक्ट किए, 5 आतंकी मारे गए. इंडिपेंडेंस डे इवेंट के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है. फॉरेन ऑफिस का कहना है कि मोहसिन नकवी फिलहाल ईरान में है टू डिस्कस बायलैटरल टाइज एंड रीजनल सिक्योरिटी. स्पोर्ट्स जगत से स्टार इंडिया पेसर जसप्रीत बुमराह की लेटेस्ट इंजरी के बाद टीम में वापसी फिलहाल अननोन है. टीम मैनेजमेंट को बुमराह के बिना फ्यूचर सोचना पड़ेगा। सितंबर में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज खेली जाएगी। सैफ अली खान ने वायरल क्रिकेट वीडियो ने बज को स्पार्क किया। फैंस कैंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिज बोलिंग एक्शन। अजमतुल्ला उमरजाई को ICC ने रेप्रमेंड किया फॉर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच। और बॉलीवुड खबरों से, फिल्म हैवान के टीजर में सुपरस्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान फेस ऑफ इन ए चिलिंग गेम ऑफ हाइड एंड सीक। राशि खन्ना ने शाहिद कपूर के साथ फर्जी 2 की शूटिंग शुरू की। जूनियर NTR टू अंडरगो शोल्डर सर्जरी इन हैदराबाद टुडे, एक्टर की टीम ने कन्फर्म किया। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर टू रिलीज ऑन October 9th। एंड शिल्पा शिरोडकर मेक्स ग्रैंड बॉलीवुड कमबैक आफ्टर 26 इयर्स विद मालामाल वीकली पार्ट 2। सनी लियोनी ने उत्तर प्रदेश में अपनी अगली फिल्म चुड़ैल की शूटिंग को रैप अप कर दिया है। और दूसरी ओर महाभारत के स्टार गजेंद्र चौहान ने पूछा, ये फिल्म का नाम रामायणा क्यों है? फिल्म का नाम रामायण होना चाहिए। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। वैसे गजेंद्र चौहान जो कह रहे हैं सही है, मुझे खुद नहीं समझ आया कि रामायण हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं श्री भगवत गीता, तो रामायण का नाम रामायणा रखने का की क्या वजह है? क्योंकि आम तौर पे हम श्री राम कहते हैं, अब कई जगह लॉर्ड रामा लिखा होता है। सो हु आर वी एक्चुअली केटरिंग टू? बट इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। यू नो, कई बार इस तरह से चीज़ें होती हैं। कॉलर को लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ गो अहेड। हेलो, ओके, आवाज़ आपकी नहीं आ रही, कॉल बैक करें। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। जसपिंदर नरूला रेमो फर्नांडिस की आवाज़ में प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक लाइनअप कर दिया है। कॉलर को लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ गो अहेड।
1: कैसे हैं आप?
0: जी जी ठीक है, आप सुनाइए।
1: मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि ये जो अभी सब नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहा है, वो एक नकवी साहब है, वो जाके वहाँ बैठे होते हैं ईरान में, तो लगता ऐसा है कि वो वहीं के सिटीजन है, यहाँ इनका कोई काम नहीं है और वहाँ कुछ आंसर भी नहीं आता। सवाल ये है कि ये रीजन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ईरान ने जो हरकत की है ना, इससे इकोनॉमी इंडिया की भी हिल गई है और कंट्री की भी हिल गई है। लेकिन इस पीस टॉक में ईरान इंडिया का क्यों कोई एक्शन नहीं है? इंडिया क्यों खामोश, बिल्कुल अनकंसर्न बैठ गए? क्या इनकी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ रहा है या दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है?
0: नहीं, देखिए इकोनॉमी तो ग्लोबली हर इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे भी पड़ रहा है, बट दैट डजंट मीन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर गोइंग टू गेट इनटू द टॉक्स। जहां पे पाकिस्तान US का एक कोलैबोरेशन टॉक्स को आगे लेके चल रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, उसमें मुझे लगता है इंडिया का कोई काम ही नहीं है। बिकॉज अगर आप नेबर देखें ईरान का, डायरेक्ट नेबर इज पाकिस्तान, सो आई थिंक US नीड्स पाकिस्तान मोर देन इंडिया। इंडिया अपने तरफ से एक न्यूट्रल स्टैंड ले सकता है, वॉर को खत्म करने की बात कर सकता है, बट ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटिशियंस वुड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द टॉक्स, बट उनकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमी हिट कर रही है ना
0: जी,
1: इंडिया के जो 1.2 या 1.3 बिलियन लोग जो हिट कर रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडिया को चीप ऑयल मिल रहा है ईरान का, और इसी तरह चाइना को चीप ऑयल मिल रहा है ईरान का, तो ये चाहते हैं कि जंग चलती रहे, ऑयल हमें सस्ता मिलता रहे और ये कभी भी सेटल ना हो। रहा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को तो इमदाद में सऊदी ऑयल वॉयल दे देते हैं, लेकिन कंट्री का एक एरिया का बड़ा मुल्क इंडिया है, पाकिस्तान भी एक अच्छा स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन इन कोई कोलैबोरेशन तो करें यार, आपके अपने लोगों के लिए कर ले। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ईरान और ईरान ने जो मिस्टेक की है, अब यकीनन ये डिवाइड हो जाते दो उसमें, मुस्लिम में और नॉन मुस्लिम के चक्कर में, लेकिन सच्ची बात तो ये है जो गरीब आदमी है उसके पेट में भूख गरीब को भी लगती है, अमीर को भी लगती है। पता नहीं ये क्यों, कौन लोग बैठ जाते ऊपर जाके और ये कर रहे होते हैं, रिजल्ट कोई नहीं नजर आ रहा है। इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए और इसको अपना अपना जो रोल है प्ले करना चाहिए, कोलैबोरेशन ही कर लें। पानी पे हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में, तो ये तो बहुत लाइफ लाइन है, वही ऑयल जो है सप्लाई, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो यही आया है कि इंडिया को और चाइना को सस्ते रेट में ऑयल मिल रहा है, तो बस कहते हैं यार लगे रहो, ठीक है ना, होता रहा, हम क्या करें ना।
0: चलिए, आप पॉइंट है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सस्ता ऑयल मिल रहा है बट इंडिया और चाइना को एक तरफ आप कह रहे हैं, बट एक तरफ आप चीज़ों को, अपनी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इकॉनमी हिट हुई है। अगर सस्ता ऑयल मिल रहा है तो इकॉनमी हिट होने का कोई सवाल नहीं उठता। सो बट ये कि चाइना जो फिलहाल चाइना की जो मूव है, जो गेम है, इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट दैट दे आर प्लेइंग राइट नाउ। बैकडोर से जो भी वो कर रहे हैं, हम सबको अपना अपना एक आइडिया होता है कि चाइना कुड बी डूइंग दिस, कुड बी डूइंग दैट, बट फोर फ्रंट पे चाइना आई थिंक इज प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड गेम टू स्पीक ऑफ। विन लाइफ टाइम ट्रेनिंग 905-206-1008 हर सैटरडे आफ्टरनून होता है फ्री सेमिनार 12:30 to 3:30। प्लीज़ अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए, प्लीज़ डोंट वॉक इन। एंड चलिए, गीत संगीत का कारवां चलेगा। बाहर का तापमान 27, फील्स लाइक 32, थंडरस्टॉर्म्स की संभावना है। अगर आप ड्राइव कर रहे होंगे तो भाई केयरफुल, एंजॉय द सॉन्ग, एंड स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर करना तो बनता है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, trusted care, consistent service or complete automotive support. From first drive to lifetime care, Vane's Auto Group is always there. Visit vanesautogroup.com.
2: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008, 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040, 289-748-4040.
3: की तो हानू इलेक्ट्रिशियन की लोड है, सानू हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो. हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे को लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे. जाने की तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जक कानूनी है, पर एक गल पक्की है कि जदों भी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे. इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी. शायद
4: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि वो ईएसए परमिट हासिल करन. होर जानने लई highlicense.ca ते जाओ. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा.
5: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए. सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं, और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी. ऑफर सिर्फ August 31st तक है. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com, ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
6: Don Valley North Hyundai, doing
5: a proud member of Wayne's Auto Group.
2: काविया होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काविया होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 Cotrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. काव्या होम्यो केयर पहुंच चुके हैं गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा, पिनाक ओजा जी, 10 Cotrell Boulevard, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं. द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे, 10 AM to 6 PM, नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है. यू कैन वॉक इन, यू कैन ऑल्सो मेक एन अपॉइंटमेंट, या फ़ोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है. कई बार होता है कि आप काफ़ी दूर रहते हैं, यू डोंट वांट टू ट्रैवल, या सीनियर सिटीजन्स जो हैं, न्यू मदर्स, यू नो, सो द गुड ऑप्शन इज फ़ोन पर कंसल्टेशन करें, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी. 6477602779. मीता जी, स्वागत है.
8: थैंक यू सो मच सनी जी, एंड हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लिसनर्स.
7: जी आपको भी गुड आफ्टरनून. मीता जी, आज स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस टॉपिक पर करेंगे बातचीत?
8: फैटी लीवर डिजीज के बारे में आज देखेंगे सनी जी.
7: जी,
8: सो फैटी लीवर के लीवर में एक्सेस फैट जब जमा हो जाती है तो ये लीवर सेल्स में डैमेज प्रोड्यूस करेगी. अब लीवर का काम है कि जो भी हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स जो बॉडी के कॉन्टेक्ट में आते हैं उसको ब्लड से फिल्टर करना, निकाल देना, प्रोटीन एंड शुगर को एनर्जी में ये कन्वर्ट करना, स्टोर करना, ये सारा काम लीवर का है. और जब भी बॉडी को चाहिए तो वो रिलीज करता है. सो लीवर पे जब स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है, तो ऐसे में वीकनेस हैवीनेस तो होनी है, सो थकावट सी फील होना और जो भी सारे फंक्शंस लीवर के हैं वो परफॉर्म करना उसके लिए मुश्किल बन जाता है, जिस करके आप थकावट फील करेंगे, फटीक सी फील करेंगे, आपकी एपेटाइट में चेंजेस आने लगेंगे कि भूख कम हो जाती है. सो ज्यादातर लीवर में डैमेज का या फैटी लीवर का ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलेगा, जब आपका ब्लड वर्क होता है तो उसमें अगर डाउट जाता है कि हाँ आपके लीवर के एंजाइम्स हाई चले गए हैं, तो फिर आपके फैमिली डॉक्टर जो है यूजली आपको अल्ट्रासाउंड करवाने को कहते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रेड वाला आपको फैटी लीवर है. सो जो लोग वैसे भी ओवरवेट हैं या मेटाबॉलिज्म जिनका एबनॉर्मल है, स्लो चल रहा है उन लोगों में, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इवन पीसीओएस की प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स में, उनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है. और फिर डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई फैट डाइट है, लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस ऑफ आयरन सप्लीमेंट, कि आपका आयरन लेवल नॉर्मल भी है फिर भी आप साल से दो साल से कंटिन्यूअसली आयरन सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में कब आपके लीवर में फैट जमा हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा. लीवोटॉक्सिक मेडिकेशन जैसे कि टायलेनोल लेते हैं लोग, कई लोगों को हैबिट होती है कि काम पे जाना है तो दो टायलेनोल ले ली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बॉडी में पेन है नहीं है, तो अक्सर लंबे टाइम में जब आप ये आपकी हैबिट बन रही है तो वो फिर लीवर में डैमेज प्रोड्यूस करती है. और फैटी लीवर में क्या होगा कि लीवर में फैट जमा होने लगती है तो उसके साथ लीवर जो है साइज में भी बढ़ने लगता है, और इसके साथ डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लीवर जो है वो बाइल रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. सो लीवर पे इफेक्ट आया, दैट मींस आपका डाइजेशन वीक हो जाना, अफारा सा रहता है, ब्लोटिंग, गैस ऑल द टाइम, कुछ भी हेवी खा लिया तो उसके साथ आपको लगेगा कि प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या डायरिया की प्रॉब्लम, एंड कुछ भी हेवी खाते हो तो आप देखोगे कि राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में वहां पे आपको डिस्कम्फर्ट से लेके पेन होना, कई बार ये शार्प पेन, लगातार पेन होती रहती है, और फिर आगे जाके जॉन्डिस वगैरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है. तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि लीवर में डैमेज कितना है. यूजली ग्रेड टू तक का आपको फैटी लीवर बताते हैं ना, तो उसको हम इजीली रिवर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रेड थ्री या फाइब्रोसिस या फिर आगे जाके सिरोसिस हुआ है तो फिर ये जो प्रोसेस है वो कह लो कि इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस इसको माने जाते हैं. तो उसमें मैनेजमेंट के लिए कि जो भी डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको स्लो डाउन करने में ये मेडिकेशन आपको हेल्प करेगी, और जितना भी पॉसिबल है उसको रिवर्ट करेगी, ओवरऑल हेल्थ लीवर की मेंटेन करने में ये आपको हेल्प करेगा. सो फैटी लीवर है या एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एडिक्शन से सफर कर रहे हैं कि ज्यादा अल्कोहल इंटेक हो रहा है, पता है कि लीवर में डैमेज हो चुकी है, उसके बावजूद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सो वी डू है, और इसको सिर्फ फैटी लीवर समझ के इग्नोर ना करें. कहते हैं ना कि सारी बीमारियों की जड़ हमारे पेट में, हमारे लीवर में है, अगर वो वीक हुआ तो उसके साथ एक के बाद एक बीमारियां होनी शुरू हो जानी है. सो लीवर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है या फिर फाइब्रोसिस सिरोसिस तक की कंडीशन गई है, एडिक्शन है या कोई मेडिकेशन लेनी पड़ रही है आपकी हेल्थ की वजह से जो कि लीवोटॉक्सिक है और उस करके आपके लीवर में डैमेज हो रहा है, तो साथ में ये ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका क्लिंजिंग भी होगा और आपकी हेल्थ मेंटेन करने में ये काफी हेल्प करेगा. सो लीवर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, किडनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं कि किडनी के फंक्शंस आपके लो जा रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल हाई चले जाना है, प्रोटीन लीक होना यूरिन में या ब्लड लीक हो रहा है, या इंटरनल ऑर्गन्स के बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, किडनी इन्फेक्शन, ब्लेडर इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है. सो कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं, और इसके साथ है थेरेपी. सो बॉडी पेन्स हो रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहना, सिर दर्द की प्रॉब्लम है, दरन आपकी मूव हो जाती है बार बार, सो इन कंसर्न्स के लिए वी डू हैव थेरेपी एज वेल. सो फील फ्री टू कॉल अस, एंड पूरे कैनेडा यूएस में मेडिकेशन हम मेल करते हैं, शिप करते हैं. कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज जिनका एक्सटेंडेड प्लान है, दे डू कवर होम्योपैथी. सो अगर आपको कवरेज है तो इसका बेनिफिट भी आप जरूर ले सकते हैं.
7: बिल्कुल दोस्तों, काव्या होमियो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाकोझा जी, 10 कोट्रल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. एंड नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है. क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 6 PM. सो नंबर है 6477

बचत गुरविंदर बामरा ऑटो होम इंश्योरेंस ऑल स्टेट इंश्योरेंस बेस्ट रेट्स देती हैं 6473023207 6473023207. अगला गीत लाइनअप कर दिया है आप ही की रिक्वेस्ट है एंड ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस एंड क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा जो कि दो लोकेशन से सर्व करते हैं ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन एंड बहुत ही प्यारा सा गीत है फिल्म थी परदेस कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म आया ऑन शाहरुख खान एंजॉय

0: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
1: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
2: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
1: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
3: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
4: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन-इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
5: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी।
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ है। कल हम बात कर रहे थे किस तरीके से एज अ रियल्टर कई बार कुछ डील्स में राज जी वॉक अवे करते हैं अपने क्लाइंट का फ़ायदा देखते हुए, ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई क्लाइंट का इसमें शायद नुकसान है, तो इट इज़ बेटर कि भाई इस डील को, शायद इस घर को ना क्लाइंट के लिए परचेज किया जाए, बिकॉज द क्लाइंट मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम होम बायर्स की, जो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज इट्स देयर फर्स्ट होम, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ गूगलिंग करते हैं, लॉट ऑफ AI की सर्विसेज की मदद आजकल लोग लेते हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट आपके साथ हो, राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली, वी माइट एज वेल टेक हिज एक्सपर्टीज इन टू अकाउंट। राज जी का नंबर 6478661086। राज जी, आपका स्वागत है।
7: सर जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
6: जी। गुड आफ्टरनून जी, और
7: हाँ जी प्लीज।
6: और मैंने सोचा कि आज आप ही से पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज वन ऑफ दोज टाइम्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, जहां पे अनसर्टेनिटी इट इज एट इट्स पीक, हाईएस्ट लेवल।
7: एब्सोल्युटली सनी जी, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए मैं एज ए, आप कह सकते हैं ओल्डर ब्रदर, या एज अ फैमिली मेंबर, एज अ गाइडिंग हैंड इन रियल एस्टेट जर्नी, हमेशा लोगों से ये कहता हूं कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका बजट क्या है, आपकी आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, सबसे बड़ा फोकस उस पे होना चाहिए। सेकेंडरी आती है कि उस अफोर्डेबिलिटी में आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट लोकेशन क्या होगी। ज्यादातर लोग पहले एक ड्रीम होम दिमाग में बनाते हैं और उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपने जब फर्स्ट परचेज करनी है रियल एस्टेट में, आप आइडेंटिफाई करें अपना बजट, अपनी अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट उसको अपनी अफोर्डेबिलिटी में देखें कि कहाँ मोस्ट कन्वीनियंट आपके लिए बनता है। आज अगर GTA में आपकी जॉब है लेकिन अफोर्डेबिलिटी में आप $1 million या उससे ऊपर का घर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो इट्स बेटर टू ड्राइव 45 मिनट्स और एन आवर, और जब आप वहां से कम्यूट करेंगे तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके बजट में होगी। आपकी इंश्योरेंस फॉर होम, फॉर ऑटो, आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस, सब कुछ आपके बजट में सेट होंगे। सो हमेशा इस मापदंड के साथ अगर आप चलेंगे तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन यू विल गेन द ड्रीम हाउस दैट यू सेट आउट टू गेट। पहली बार में वो ड्रीम हाउस नहीं मिलता, पहली बार में आपको एक अबोर्ड मिलता है जिसको आप अपना घर कहते हैं, और उसी से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वेल्थ को अक्यूमुलेट करते हैं और उस ग्रोथ के प्रोसेस में अपने ड्रीम होम तक पहुंचते हैं। यही फलसफा है और इसी को मैंने हमेशा फॉलो किया है। सरी
6: जी बिल्कुल जी, एंड ये बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है जो राज जी ने शेयर की है, खासकर फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कि भाई आप पहला वाला घर आपका ड्रीम होम कभी होगा भी नहीं, इस ख्याल को जो है दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज जब आपकी एक्विटी बिल्ड होती है, आप देना शुरू करते हैं मॉर्गेज, एंड इट्स आफ्टर फ्यू ईयर्स वे यू एक्चुअली बिल्ड दैट नेस्ट एंड एक्चुअली फिर आप केपेबल होते हैं टू मूव इन टू द एक्चुअल ड्रीम होम जो आपके दिमाग में था। मैं कहूँगा कि रियल इस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी के अभी राज जी से एक मीटिंग करें और फिर फैसला आपके हाथ में होगा। वेन यू हैव अ नॉलेजेबल पर्सन, अ प्रोफेशनल हु नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ लॉट टू लर्न। 6478661086 6478661086। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ आपने ऐड करना है?
7: सनी जी क्विकली बता दूं, बहुत सारी शॉर्ट टर्म यानी के क्विक क्लोजिंग्स अवेलेबल हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारी क्लोजिंग 600s में 700s में आपकी अफोर्डेबिलिटी में है, 500s में भी क्लोजिंग्स अवेलेबल हैं, 2-story 3-story टाउन अर्बन टाउन्स। आप अपना पहला एड्रेस कंफर्म करें, सारी इंफॉर्मेशन हमसे लें और उसको अपना पहला होम बनाएं और आगे जर्नी में हम आपके साथ हमेशा रहेंगे एज योर गाइडिंग हैंड इन योर रियल एस्टेट जर्नी। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के लिए, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो और आपके साथ से हम इस कम्युनिटी को सर्व करते आ रहे हैं और वी फील ऑनर्ड टू डू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन।
6: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 6478661086। थैंक यू राज जी।
7: थैंक यू
6: जी। छोले भटूरे .ca चार लोकेशन से सर्व करते हैं दिल्ली वाले वर्ल्ड फेमस छोले भटूरे, एंड ये दो ब्रैम्पटन में है, एक वॉन में है, एक मिसागा। टेक आउट डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल एट ऑल द लोकेशंस, तो पहुंच जाइए छोले भटूरे .ca। अगला गीत फिल्म थी दीवाना मस्ताना, अनिल कपूर गोविंदा एंड जूही चावला, एंड दो लवर्स एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, एंड में लड़की किसी और को मिल जाती है, कुछ इसी तरह की कहानी थी इस फिल्म की, एंड बहुत ही एक बेहतरीन कॉमेडी थी जो कि डेविड धवन ने बनाई थी। इसी का बहुत ही बेहतरीन सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में फिल्माया ऑन गोविंदा।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। visit veinsautogroup.com.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Welcome back, friends. और हम बात करते हैं आयशा मुनव्वर जी से, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इनसॉल्वेंसी काउंसलर. और आयशा जी का ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शंस आपको देती हैं अलग अलग फॉर डेट सेटलमेंट. और मैक्सिमम डेट रिलीफ के लिए आपने कॉल करना है 416-428-2165, 416-428-2165. आयशा जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
2: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर. सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं. तो जरूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो. दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन. देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज में है, कौन सी चीज का आपको फायदा हो रहा है. क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती. सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू. और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती है. हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ. और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीजें जो है वो सेव रहती हैं. और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें. और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं. और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल. व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं. वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं. लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली. और उसमें यह कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं. क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं. और वो फिर कई दफा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं. तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए. बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल. माय फोन नंबर इज 416-428-2165. दैट इज 416-428-2165. थैंक यू वेरी मच.
1: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी. और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी, एंड आपको देते हैं अलग अलग ऑप्शंस फॉर डेट सेटलमेंट. द नंबर टू कॉल आयशा मुनव्वर 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर

समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। BZB in stock aapki electrifying experience ke liye. We pay top dollar for your trade. It's time to Toyota at Don Valley North Toyota.com. Located here 3300 Steeles Avenue, East Markham. At Don Valley North Toyota. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: अगर उर्दू से मोहब्बत है तो ये शाम आपके लिए है। This September, Toronto will gather for an evening where Urdu takes center stage. Shairi, Sangeet, Dance, voices from Hindustan and Canada come together for Shami Rekhta, an intimate mehfil celebrating a language that has moved hearts for generations. 19th September, Living Arts Center, Mississauga. Book your tickets on Ticketmaster.
2: काव्य होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।
5: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
6: नया इलाका और नया घर,
5: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं।
6: घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
7: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
8: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
9: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
10: Don Valley North Hyundai के Hyundai Upgrade Your Ride Sales Event का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
11: Don Valley North Hyundai,
10: a proud member of Wayne's Auto Group.
2: कितना सुंदर लिखा है किसी ने, सबकी अपनी कहानी है। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो, किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और अपनी अपनी कहानी है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी के आंखों में पानी है, तो किसी के आंखों में पानी है।
12: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
13: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
12: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
12: ਯੂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
13: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
12: 647-7710-6477-339-8710, license number M200-34504.
14: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
15: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM, और हमारे साथ हैं होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी की रियल्टर सुखी कौर जी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट सुखी जी ब्रिंग्स टू द टेबल। और खासकर जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, लें प्रॉपर्टी ना लें प्रॉपर्टी, और सुखी जी के पास अपनी भी ज़बरदस्त लिस्टिंग्स होती हैं इन GTA, बियॉन्ड GTA। उसके अलावा जो सुखी जी का सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ये साबित होती है आपके लिए, सुखी जी एज अ टीम ऑफ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स जो आपकी प्री अप्रूवल करवा के देते हैं, लॉयर्स की इनके पास टीम है, अप्रेजल इंस्पेक्शन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, और उसके ऊपर से होम एवेल्युएशन अगर आपने करवानी है बिना किसी ऑब्लिगेशन के, सुखी जी वो भी आपके लिए करती हैं। नंबर नोट करिए 6474087066। सुखी जी आपका स्वागत है।
16: थैंक यू सो मच सनी जी, सबसे पहले तो आपको एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी वेंसडे।
15: जी आपको भी हैप्पी वेंसडे। एंड सुखी जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी एक तो रियल एस्टेट की अपडेट दें, फिर उसके बाद आपकी अमेजिंग लिस्टिंग्स पहुंचाते हैं लिसनर्स तक।
16: जी सनी जी, बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अगर इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, आप फर्स्ट टाइम बायर है, हमारे पास बहुत सारे इंसेंटिव आए हैं जो कि यू नो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एज अ बायर। आई नो एवरी सिंगल पेनी काउंट्स व्हेन यू आर लुकिंग टू बाय अ हाउस। सो एज एन इंसेंटिव फ्रॉम आवर टीम, इफ यू आर फर्स्ट टाइम बायर और इन्वेस्टर, so I would take care of your lawyer charges. Like I said, every single penny counts. We have a whole team jisme ke lawyers and mortgage advisors hain. Agar aapko koi question bhi hai ki if you can buy a house, aapki kya situation hai, before I take you out to show a house, ghar dekhne jane se pehle let's get you pre-approved taki aapko pata ho what you are stepping in for.
15: Ji.
16: Uske liye karna kya hai? Pick up your phone. Please give me a call at 647-408-7066. 647-408-7066.
15: Ji, bilkul 647-408-7066 Sukhi ji ka number hai. Ji, Sukhi ji.
16: Ji, now batana chahungi kuch listings.
15: Ji.
16: This is amazing listing for agar aap first time buyer hain. Aap ghar lena chahte hain, detached ghar lena chahte hain, 3 bedroom ka ghar lena chahte hain. In Brantford area aapko ye ghar milega, detached property in mid 500s. Mid 500s mein aapko kya kehte hain, condo bhi nahi milti. तो इट्स वेरी फेयरली न्यू प्रॉपर्टी है इन ब्रैंटफोर्ड, 3 bedroom का घर है, आपको सिंगल कार गैराज मिलेगा, अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मिड 500s में घर लेना चाहते हैं, 5.5 lakh की रेंज में, तो सुखी को कॉल कीजिए 647-408-7066। अगर आप और आपका कोई नोन प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है जो कि लैंड के साथ है, तो मेरे पास 83 acre की लैंड पर बहुत ही अच्छा कस्टम मेड हाउस अवेलेबल है। दिस प्रॉपर्टी पावर ऑफ सेल पर आपको मिलेगी, तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल जाएगा। 6 bedroom आपको मेन फ्लोर पर मिलेंगे, तीन बेडरूम की फिनिश्ड बेसमेंट है एंड साइड पर आपको गेमिंग रूम भी मिलेगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा प्राइस है, फुली फुली फुली अपग्रेडेड है, ब्रांड न्यू फ्लोरिंग से लेकर एवरीथिंग इज न्यू। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं या आप अपने आप को प्री क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, प्लीज गिव सुखी अ कॉल एट 647-408-7066।
15: बिल्कुल दोस्तों, सुखी कौर जी 647-408-7066। वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू हैव अ रियल्टर लाइक सुखी जी ऑन योर साइड, बिकॉज सारी की सारी हेडेक उनकी है, मॉर्गेज उन्होंने करवा के देनी है, लॉयर का वो टेक केयर कर रही हैं, अप्रेजल वो करवा के देंगी, इंस्पेक्शन वो करवा के देंगी, घर आपकी, आपके ड्रीम होम की चाबियां आपके हाथ में होंगी। सो यू बेसिकली नीड टू जस्ट गो एंड चेक आउट विद सुखी जी द ड्रीम होम दैट यू आर लुकिंग फॉर, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, पहला घर है आपका और रीसेल प्रॉपर्टी है, आप एज अ सेलर पहले एक प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी बाय करना चाहते हैं। सुखी जी इज़ एन एक्सपर्ट एट व्हाट शी डज, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग एंड इनकी मॉर्गेज की टीम एब्सोल्युटली लाजवाब। 647-408-7066 एंड नो गिमिक्स, नो प्लेइंग गेम्स। एक बार सुखी जी ने कमिटमेंट कर दी तो भाई आपको पता है कि काम आपका हो जाएगा। 647-408-7066। सुखी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
16: थैंक यू सो मच सनी जी, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।
15: आपको भी 647-408-7066, 647-408-7066, 647-408-7066। इफ यू वांट टू चेक आउट दोज प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली सुखी जी से संपर्क करें। इससे पहले आपने सजाद अली की आवाज में रावी गीत सुना था, मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है वो गीत, एंड इसलिए हमने उस गीत को प्ले किया, आपकी रिक्वेस्ट को भी हमने पूरा किया क्योंकि इस गाने की आमतौर पर रिक्वेस्ट आती रहती है। अब जो है किशोर कुमार साहब लता जी की आवाज में परदेसिया, ये सच है, from the movie Mr. Natwarlal, Rajesh Roshan ka music, Anand Bakshi ke lyrics and filmaya on none other than two legendary superstars, Rekha and Big B, yani Mahanayak Amitabh Bachchan, brought to you by Brampton TV and Appliances and Gurvinder Bamra, home and auto insurance ke best rates offer karti hain, works with all state, 647-303-3207, 647-303-3207. Enjoy the song. I'll be back. Phir Brampton TV and Appliances, Sultan ji bhi honge hamare saath.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं कहां, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस. सुल्तान जी हमारे साथ हैं, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन. ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM. 905-450-2828 एंड द बेस्ट प्राइसेस यू गेट फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री इन GTA इन सदर्न ओंटारियो. ओनली वन प्लेस, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: सुल्तान जी, सबसे पहले मैं टीवी सेक्शन की ओर रुख करूंगा क्योंकि गूगल टीवी के नए फीचर्स आ चुके हैं एंड नए फीचर्स में पीपल लव दोस टीवीज. लेकिन साथ ही साथ प्राइसिंग, व्हाट न्यू प्राइसेस डू वी हैव, अमेजिंग प्राइसेस डू वी हैव फॉर द लिसनर्स?
2: जी सनी भाई, गूगल फीचर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है. उसकी रीजन ये है कि बिल्कुल जैसे आपके स्मार्टफोन में, सेल फोन में आपको ऐप स्टोर मिलता है, गूगल फीचर्स में भी आपको ऐप स्टोर मिलता है और अनलिमिटेड ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं. क्रोमकास्ट बिल्ट इन है इन टीवीज में. 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K स्मार्ट टीवी है ये, और ये 50 इंच सिर्फ 299 में.
1: वाओ,
2: 55 इंच सिर्फ 399 में.
1: क्या बात है.
2: 65 इंच सिर्फ 599 में.
1: वाओ,
2: और 75 इंच सिर्फ 699 में.
1: माय गॉड,
2: द लोएस्ट प्राइस गारंटी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से मिलेंगे आपको. अगर कोई भी हमारे ऐसे बहन भाई जो इवन इंस्टॉलेशन के इंडस्ट्री में है, इंस्टॉल करते हैं किसी को रेस्टोरेंट के लिए अपने मेन्यू डिस्प्ले के लिए टीवी चाहिए, तो 50 इंच 299 में परफेक्टली उनके लिए ये स्पेशल प्राइस है. रेगुलर अगर किसी को अपने घरों में चाहिए तो ये लोएस्ट प्राइस गारंटी है. इसके साथ साथ हमारे पास बिग स्क्रीन टीवी में 98 इंच पे $1500 कस्टमर सेव करेंगे क्योंकि 98 इंच सैमसंग सिर्फ 1999 में ऑफर किया जा रहा है. इसकी $3500 प्राइस थी लेकिन 1999 में लेके $1500 कस्टमर सेव करेंगे और 1999 भी 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है. 85 इंच में सोनी ब्रेविया मॉडल है हमारे पास. सोनी ब्रेविया 3 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, $2200 वाला 1599 में मिलेगा. इसमें भी $700 कस्टमर सेव करेंगे लेकिन इसके लिए आपको विजिट करना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस. ये वन वर्ड है जी, BramptonAppliances.com. हमारी वेबसाइट विजिट कर लें, कॉल करके नाम एंड नंबर दे के जो भी टीवी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे होल्ड करवा लें. शोरूम में आके चेक करें, कंपेयर करें, फिर डिलीवरी स्केड्यूल करें जी. 905-450-2828, 905-450-2828
1: जी. जहां पर आपने इतने जबरदस्त टीवी सेक्शन की डील्स दे दी हैं सुल्तान जी, अब प्रेशर जो है और बढ़ गया है क्योंकि अप्लायंस लॉन्ड्री में भी हमें इसी तरह की अमेजिंग अमेजिंग डील्स चाहिए.
2: जी डेफिनेटली जी, हमारे पास अगर बंडल पैकेज कोई कस्टमर खरीदते हैं तो $2000 तक की सेविंग गारंटी वो करेंगे क्योंकि फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, 3-पीस किचन बंडल $5000 वाला 29.99 में मिलेगा. $2000 सेव भी कर लेंगे और 29.99 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसी तरह फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी, अल्ट्रा फ्रेश वेंट सिस्टम के साथ फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर आपको जी स्पेशल प्राइस पे $2200 से 1599 का मिलेगा और 1599 भी आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसी तरह टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर, ये स्पेशल प्राइस पे आपको $1700 वाला 1099 में पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों 1099 में, और 1099 आप 6 मंथ में पे करेंगे. जरूर विजिट करें बोवेड एंड चिंकूजी पे, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. जो कस्टमर सिंगल पीस लेना चाहते हैं वो भी मिस ना करें क्योंकि हमारे पास स्टैंडिंग फ्रीजर इस वक्त स्पेशल प्राइस पे है $1,400 वाला सिर्फ $799 में, सिंगल पीस वॉशर लेना है सिर्फ $599 में, सिंगल पीस ड्रायर चाहिए सिर्फ $499 में, फ्री होम डिलीवरी के साथ 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलेगी, प्रोडक्ट के फीचर्स भी देख सकते हैं, प्राइस कंपेयर भी होगी, और जब वॉक इन करेंगे तो वॉक इन कस्टमर के लिए जो एडिशनल डिस्काउंट है उसका भी फायदा उठाएंगे। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे आना है जी, 905-450-2828 हमारा नंबर है, 905-450-2828 जी।
1: जी 905-450-2828 ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस। एंड जाने से पहले वेरी क्विकली सुल्तान जी, पिक ऑफ द वीक, जो चीजें आपको लगता है कि भाई इसको तो मिस करना किसी भी सेक्शन में, ऑल थ्री सेक्शंस में, दैट पिक ऑफ द वीक जो आप चाहते हैं कि हमारे लिस्टर्स जरूर आके परचेज करें।
2: बिल्कुल जी, 50 इंच टीवी $299 का पिक ऑफ द वीक है, 55 इंच टीवी $399 में पिक ऑफ द वीक है, इसी तरह वॉशर $599 में पिक ऑफ द वीक है, ड्रायर $499 में पिक ऑफ द वीक है, इसी तरह डिश वॉशर $1,000 वाली स्टेनलेस स्टील की $499 में पिक ऑफ द वीक है, क्योंकि ये 50% डिस्काउंट पे है, तो जरूर विजिट करें। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि फ्री होम डिलीवरी है और 6 मंथ में कस्टमर पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको विजिट करना है BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट पे, या फिर शोरूम में 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, 905-450-2828 905-450-2828 जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
1: जी। Brampton TV and Appliances।
3: जेनेसिस माखम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे, विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
4: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और log on to bcbc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
5: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
6: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
5: 26 locations across Canada।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com skylakeimmigration।
2: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda।
5: टोरंटो के दोस्तों, हम आपके लिए शामी रेख्ता लेकर आए।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, आप ही की रिक्वेस्ट है, फ्रॉम द मूवी आंधी, जो कि हमने लाइनअप कर दिया है। और जहां पे फिल्म आंधी की बात कर रहे हैं, बाहर का जो हालात जो दिख रहे हैं वो थोड़े से थंडरस्टॉर्म्स वाले हालात दिख रहे हैं। सो बाहर का तापमान राइट नाउ इज 25 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 31, बट देर आर थंडरस्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड, अबाउट 90% चांस एट अराउंड 2 PM। एंड सम प्लेसेस हमारे कुछ लिसनर्स ने कॉल करके कहा है कि भाई बारिश तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो जो भी सिचुएशन है, स्टॉर्म्स कंटिन्यू फ्रॉम 2 PM ऑल द वे थ्रू 5 PM। सो कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कई बार सिचुएशन जो है ड्राइव करते वक्त काफ़ी ख़राब हो जाती है। सो मोर सो इफ यू आर ऑन द हाईवे, यू नो, टेक एज मच प्रिकॉशन दैट यू कैन। चलिए, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में लता जी दे रही हैं साथ, आंधी फिल्म का ये ब्यूटिफुल सा गीत, इन्जॉय करें।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट. फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
2: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca.
3: राजधानी. इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
7: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना. वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040. दैट इज 6476280040.
6: यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
8: अगर आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं या अपनी अगली नस्ल को इसकी खूबसूरती से रूबरू करवाना चाहते हैं, तो इस शाम का हिस्सा जरूर बनिए. 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर, मिसिसागा. हम सब दिल से आपके मुंतजर रहेंगे.
9: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं. और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स. लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स. आज ही विजिट करें donvalleynorthlexus.com. A proud member of Wayne's Auto Group.
10: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
11: इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सिलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं. क्यों सोचें आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं. ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं. चाहे जितना भी जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं. झोली में वही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं.
12: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. और बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, फील्स लाइक 31. एंड यस, द रेन हैज स्टार्टेड इन लॉट ऑफ प्लेसेस. और कई जगहों पर जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा थंडरस्टॉर्म्स एंड यू नो अनसेटल्ड वेदर जिसे कहते हैं. एंड इट विल प्रॉब्ली बी ऑल द वे फ्रॉम नाउ गोइंग इनटू ऑल द वे थ्रू 5 PM. सो यू नो जस्ट मेक श्योर दैट यू ड्राइव अकॉर्डिंगली. एक और बहुत ही प्यारा सा गीत है फ्रॉम द मूवी घर। ये रिक्वेस्ट भी आज ऐसा लगता है कि सारी रिक्वेस्ट हमारे लिसनर्स ने किशोर साहब और लता जी की ही की हैं, एक के बाद एक। इट्स ऑल द वे फ्रॉम मिस्टर नटवर लाल से लेकर अब तक काफ़ी ऐसी ही रिक्वेस्ट आई हैं जो कि हम आपकी रिक्वेस्ट को प्ले कर रहे हैं। आपकी आँखों फिल्म आया ऑन विनोद मेहरा एंड रेखा एंड द मूवी वॉज घर। एंड चलिए ऐसे करते हैं, ये गीत इंजॉय करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्ले दैट बिफोर 2 PM। फिलहाल इसे इंजॉय करें, आते हैं वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। रिमेंबर, यूर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट।
2: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
3: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरे दी फड़ लिया वे।
2: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
4: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
5: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे on CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

मुस्कुराइए दिल से, छूनिए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तो माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

0: Radio Toronto, Canada. Very good afternoon. Namaskar. Assalamualaikum. Sasrikal. Khush Aamadeed. मैं हूँ शिवानी आपके साथ. मेरे साथ हैं आमिर और हमारे साथ हैं आप सारे listeners जो जुड़ चुके हैं Radio Toronto, Canada के साथ afternoon drive time show में. बहुत खूबसूरत सी दोपहर है. बारिशें का साथ लिए हुए 21 अभी इस वक्त जो temperature है 13 degree Celsius है. रात में आपको मिलेगा plus 8 degrees. तापमान में गिरावट आती हुई और आप सभी का साथ लिए हुए ये बहुत खूबसूरत सी दोपहर. गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज के साथ चलेगा ये सफर आमिर और शिवानी के साथ. नंबर टू कॉलर्स 416-303-3639.
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा. हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है. कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामुअलैकुम. स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल. मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं. आपका खैर मकदम है. लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर We will kiss the airwaves of Toronto this fine and wet afternoon.

0: और साहब बात करें ख्वाबों सपनों की ख्वाहिशों की इच्छाओं की, तो आप जो खुद नहीं कर पाए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो जरूर कर पाए। आपकी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, नहीं बन पाए, लेकिन आप अपने बच्चे में एक डॉक्टर को देखते हैं। जब भी आपका बेटा आपकी बेटी आपके सामने आते हैं तो आपका जी चाहता है कि कल सुबह का सूरज न चढ़े और आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए। तो लीजिए आज यही होगा। प्रोग्राम का आगाज करेंगे दो ऐसी शख्सियात के साथ कि जिनका कहना है कि अगर आपका बच्चा 12 साल की क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, इस मुल्क से, इस देश से ही नहीं दुनिया में कहीं से भी 12 पास है वो, तो वो डॉक्टर बन सकता है कम पैसे में, अच्छी सहूलियात के साथ, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड मेडिकल स्कूल में जाके वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन के अमरीका, कैनेडा, यूरोप, दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस वक्त ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी से हमारा साथ निभा रहे हैं सुलेमान जी और प्रीतम जी, वेलकम करते हैं आप दोनों को।
1: थैंक यू सर।
2: थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस।
0: शुरू करेंगे डॉक्टर सुलेमान से। आज मैं अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने खास दावत दी है, बड़ी इल्तिजा की है, आज हमारे पास यहां स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं ये दोनों। तो डॉक्टर सुलेमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए हाउ इज दिस प्रोफेशन फाइनेंशियली, ये कितना लुक्रेटिव प्रोफेशन है डॉक्टर?
2: वी नो दैट, ये पहले से हम जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन को रॉयल प्रोफेशन, रॉयल प्रोफेशन कहा जाता है। तो इसमें रिटायरमेंट नहीं है, एक बार डॉक्टर बन गया तो मरने तक डॉक्टर ही है,
0: डॉक्टर ही है। वाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक।
2: और लोगों को हालत ऐसा है, कोई ना कोई बीमार आ ही जाता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जीवन में
0: जी हाँ जी हाँ,
2: तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है
0: जी।
2: तो फिर डॉक्टर फिर जब देखेंगे तो वो तो उनकी
0: फीस तो लेंगे,
2: फीस तो लेंगे,
0: बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप दिल के डॉक्टर हैं, दिल का इलाज करते हैं, तो वो लोग जो मोहब्बत में दिल के मरीज बन जाते हैं उनका भी कोई इलाज किए, दरियाफ्त किया आपने कि नहीं?
2: देखिए ये इमोशनल है, आप जो बात कर रहे हैं वो दिल के इमोशनल की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में उसको हम ठीक करते हैं।
0: अच्छा, अभी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर कोई बंदा अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो उसको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है? बच्चा क्या पढ़ा हुआ हो, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हो, ये हमें बता दीजिए।
2: या बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ये दो तरह की प्रोग्राम है, एक 5 ईयर MD है,
0: अच्छा,
2: एक 4 ईयर MD है।
0: ठीक है,
2: 5 ईयर MD के लिए हम 12 ईयर्स स्कूलिंग किया हो स्टूडेंट जो भी हो तो उनको लिया जाते हैं,
0: बिल्कुल ठीक सही।
2: और 4 ईयर MD के लिए जो साइंस ग्रेजुएट हो,
0: अच्छा साइंस ग्रेजुएट,
2: साइंस ग्रेजुएट
0: ठीक है,
2: या 2 साल ग्रेजुएट क्या होगा, इट्स नॉट नेसेसरी उनको कंप्लीट किया हो
0: जी,
2: इवन 2 साल करने के बाद भी
0: अच्छा
2: वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं,
0: ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक।
2: ये 4 ईयर MD के लिए,
0: बिल्कुल सही। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या दुनिया के किसी भी हिस्से से 12 ग्रेड किया हो और साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हो तो हो सकता है, या सिर्फ कैनेडियंस के लिए है?
2: एनी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड,
0: एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड,
2: या
0: मान लीजिए हम
2: 12 साल का स्कूलिंग किया हो,
0: साइंस पढ़ा हुआ हो,
2: साइंस पढ़ा हो,
0: बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन सुन रहे हैं हमें जिनका ताल्लुक ओरिजिनली इंडिया पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, और उनके भतीजे भांजे बेटे बेटियां वहां पाकिस्तान इंडिया से पढ़ चुके हैं, 12 पास कर चुके, क्या वो वहां से भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं?
2: वहां से भी भेज सकते हैं जिन्होंने उनका परसेंटेज कम से कम 70% अबव हो,
0: 70% अबव हो, ठीक है।
2: एंड देन उनके सब्जेक्ट्स ये हो, ये मैथमेटिक्स,
0: अच्छा
2: इंग्लिश, और साइंस सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स,
0: अच्छा ठीक है, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी के किस नंबर पर कांटेक्ट किया जाए, कहाँ बात की जाए इसके लिए? प्रीतम है हमारे साथ, हम प्रीतम से भी बात करेंगे। प्रीतम आप मेन प्रोफेशनल हैं ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी की, एक तो हमें नंबर बताइए, दूसरा यहाँ पे कनेडियन अगर कोई बच्चा है तो यहीं पे इंटरव्यू हो जाएगा, सारी कहानी सब हो जाएगा, किस तरह के टेस्ट होंगे ये भी बताइए।
1: ओके, सो ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एडमिशन्स लेने के लिए अगर आप कैनेडियन हो तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 416-743-9222
0: बिल्कुल ठीक. मैं नंबर दोहरा देता हूँ, अभी कॉल कीजिएगा, बात जरूर करनी है. आपका बच्चा, बच्ची, भांजा, भतीजी, कोई दोस्त अहबाब में से किसी का बच्चा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो बात जरूर कीजिए, बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी है. 416-743-9222 दोबारा बता रहे हैं नंबर 416-743-9222. जी क्या रिक्वायरमेंट्स है?
1: और फिर वो हमारे ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं, हमें कॉल करके हम अपॉइंटमेंट उनका बुक कर सकते हैं. फिर वो दे कैन कम, सॉरी, वो हमसे मिल सकते हैं आके और फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं क्या रिक्विसाइट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में आप डॉक्टर बनने के लिए. तो वो पूरा इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं. और अगर वो अप्लाई करते ऑनलाइन जाके तो इंटरव्यू के लिए ओवर द फोन भी हो सकता है, और वो चाहे तो पर्सनली हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं.
0: बिल्कुल ठीक. आखिरी सवाल डॉक्टर सलमान इस सेशन का मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्या खुद वहां जाके फैसिलिटीज देखी, किस तरह की फैसिलिटीज हैं? कोई अपनी बेटियों को भिजवाना चाहता है तो कितना सेफ एनवायरमेंट है, कितना कंड्यूसिव?
2: ये आइलैंड जो है छोटा आइलैंड है, अपना स्कूल वहां पे कनेक्टेड विद ऑल हायर ऑफिशियल्स, तो सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं
0: है. बिल्कुल ठीक.
2: और स्टूडेंट्स वहाँ जाने के पहले दिल कांटेक्ट वहाँ के हमारे अकोमोडेशन जो देखते हैं उनको, उनसे कांटेक्ट करते हैं.
0: बिल्कुल ठीक.
2: तो वो लोग उनको कांटेक्ट अपनी तरह से, जैसे आपको सिंगल अकोमोडेशन चाहिए या डबल अकोमोडेशन चाहिए, कंबाइंड अकोमोडेशन चाहिए, सो वो सब अरेंज किया जाएगा.
0: बिल्कुल सही. और डॉक्टर साहब आप चूंकि दिल के डॉक्टर हैं तो किसी को देख के दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाए तो क्या करना चाहिए? को गाना सुन ले. अच्छा
2: आप CMR प्रोग्राम सुन जा रहे, तो फिर शिवानी जी से गाना सुन गया तो फिर आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा.
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहेंगे, आपसे और भी बात होगी. स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो.

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, इस वक्त जो टाइम है वो है 2:15, टेम्परेचर है +13°C और सब्सटेंशियल गिरावट टेम्परेचर में आई है और इसी के साथ, लेकिन आप सभी के जो मूड है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको पिछले 2 हफ्तों से बताई जा रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, दोस्तों वैसे भी कहते हैं ना कि जो जिंदगी है ना, लाइफ है, इट्स अ ट्रिप. The only problem is that it doesn't come with a map. We have to search our own routes to reach our destination. है ना? आमिर कितना सही है ना?
1: बहुत खूबसूरत बात की है. मैं तो वैसे भी मैप रीडिंग में बड़ा कमजोर हूँ.
0: है ना? तो इसलिए ये आप जैसे चंद लोगों के लिए शेर नहीं था. बाकी जो 95% लोग समझ गए उनके लिए ये शेर है. तो आपसे इस बारे में डिटेल में बातचीत होगी. तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरजोत रंधावा जी, द वन ऑफ द हॉटेस्ट एरियाज ऑफ ब्रैम्पटन, कैसलमोर एरिया में ये कैसलमोर एस्टेट्स आ रहे हैं. 20 लग्जरी होम्स हैं और इसमें इतना कुछ आपको दिया जा रहा है. प्राइसिंग ऐसी है कि मैं बताऊंगी तो आप शायद यकीन ना करें. तो सीधे आपको ले चलते हैं गुरजोत जी के पास. गुरजोत जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: गुड आफ्टरनून सोनी जी, बहुत बढ़िया है और थैंक यू फॉर ऑनर करने के लिए.
0: Pleasure.
2: और सोनी जी, ऐसे आप बता ही रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस कम्युनिटी है कैसलमोर. मैंने जैसे बार बार यही कहता हूँ, नाम ही काफी है, जैसे ऑल लग्जरी 2 acres सराउंडेड बाय लग्जरी होम, जिस जो पॉकेट बनने जा रही है. सो इसमें जो हमारे
0: गुज्जू जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई है, शायद आप नेटवर्क एरिया से बाहर हैं.
1: आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है.
0: फिर से लौटते हैं, फिर से ट्राई करते हैं. आमिर, बहुत प्यारा सा एक थॉट है हमारे लिस्टनर्स ने हमें भेजा है. वो कहते हैं कि जब ये बारिश होती है ना तो हमें बचपन की याद आ जाती है
1: जी,
0: स्कूल की याद आ जाती है और ऐसे ही हम भाग लेते थे स्कूल के बाहर बिना टीचर को बताए, क्लासेस बंक करके. और
1: नहीं, आप तो बगैर बारिश के भी मैंने सुना बंक कर लेती थी.
0: हाँ, मैं बिना बारिश के भी. आप और हम कई मामले में एक्सेप्शन केस हैं. किसी ने कहा कि हमारा जो जैसे आजकल कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम के लिए जो सप्लीमेंट्स पेरेंट्स बच्चों को देते हैं और दूसरे जो आपके जो विटामिन्स हैं उनके सब्सटेंस दिए जाते हैं, बचपन में हम इनकी किसी की जरूरत नहीं होती
1: नहीं
0: थी. हमारे लिस्टनर लिखते हैं कि पढ़ाई के टेंशन को हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा चबा के खत्म कर दिया, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी. और 5वीं तक स्लेट की जो बत्ती है उसको जीप से चाट कर कैल्शियम की कमी को पूरा करना हमारी परमानेंट आदत थी.
1: इधर बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, जरा ध्यान से टेस्ट दीजिएगा आज.
0: तो अगले में डॉक्टर सुलेमान हमें बताएंगे कि ऐसा नहीं है. ये टेम्परेरी कमी है, परमानेंट के लिए आपको मेडिकल स्कूल में जाना पड़ेगा. हमारे साथ गुरजोत जी जुड़ चुके हैं. गुरजोत जी, आप जब आप गायब हुए तो हमने थोड़ा सा बातचीत करके टाइम निकाला, अब आप हमें वापस बताइए कैसे हमारे लिसनर्स इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हैं.
2: हाँ जी सोनी जी, जैसे हम पहले से बता रहे हैं, ये जो कैसलमोर में जो बनने जा रहे हैं घर 40 feet, 45, 50 and 60 feet लॉट पे बनने जा रहे हैं और ये उनके 2600 स्क्वायर फीट लाके अब तो 7200 स्क्वायर फीट लग्जरी होम है, जिनमें हम पहले बता चुके हैं इनकी जो सीलिंग हाइट रहेगी वो 45 and 50 में 40 और 45 में 11 फीट मेन फ्लोर पे और 10 second पे 9 इन द बेसमेंट, और जो 50 और 60 है उस पर 12 फीट सीलिंग ऑन द मेन फ्लोर मिलेगी आपको, 10 on the second and 9 द बेसमेंट. और इसमें बहुत सारे लग्जरी फीचर्स, थ्रूड हार्डवुड फ्लोरिंग, क्वार्ट्ज काउंटर टॉप, ऑप्शनल एलिवेशन, और बिल्डर आपको सेकंड ड्वेलिंग यूनिट जो एज ए बेसमेंट वो भी बना के दे रहा है अगर किसी ने बनानी है तो.
0: क्या बात है.
2: तो और इसकी जो प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं वो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 1.25 million.
0: ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल. और इसके साथ ही जो कितना इजी और आसानी से पूरा किया जाने वाला डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, गुरजोत जी बता दीजिए कब क्लोजिंग है इसकी.
2: बहुत इजी डिपॉजिट स्ट्रक्चर शिवानी जी, आप देखिए ऐसे बड़े घरों को सिर्फ आप $20,000 का इनिशियल डिपॉजिट देके बुक करा सकते हो और इसके बाद जो इसका रिमेनिंग 10% डिपॉजिट है बहुत इजी है, आपने मंथली देना है इन अप टू 12 months. और इसकी क्लोजिंग होगी नेक्स्ट ईयर लेट 2027 और अर्ली 2028
0: जी. अच्छा,
2: और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी. आई हैव ऑल फ्लोर प्लान, साइट प्लान एट माय ऑफिस, सो यू गिव मी कॉल एट 416 576-0595 टू बुक योर अपॉइंटमेंट. सो हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देंगे. अगर आपका मन बनता है तो आप वहीं पे अपना घर बुक करा सकते हैं
0: जी. और चलते चलते गुजोर जी, हमारी जो लेडीज प्रोग्राम सुन रही हैं वो अपने किचन को लेकर बड़ी टची होती हैं, और आजकल ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्टेन्स पड़ जाए काउंटर टॉप्स के ऊपर और मेन किचन की जो खूबसूरती खराब हो जाए. इसके लिए स्पाइस किचन का कॉन्सेप्ट बड़ा ज्यादा चल रहा है. आप सुनते ये भी दे रहे हैं आप स्पाइस किचन?
2: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल. बिल्डर आपको एक ऑप्शनल दे रहा है, आप उसमें मेन फ्लोर पे जो आपकी मेन किचन है उसके साथ एक स्पाइस किचन बना सकते हैं जो आपकी मेन किचन को जो है वो क्लीन नीट एंड क्लीन रखती है. सो आप वहीं पे उनके पास और भी बहुत सारी ऑप्शन है शिवानी जी, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं.
0: अच्छा ठीक है, उसके लिए नंबर आपको एक ही कॉल करना है 416-576-0595. गुजू जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू विद अस.
2: थैंक यू शिवानी. ओके थैंक यू.
3: क्या आप सुन रहे हैं?
4: क्या आप सुन रहे हैं?
3: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं.
4: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
3: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए. रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए.
5: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा. कॉल 416-303-3639. इट्स 416-303-3639.
6: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है.
7: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
6: उसे डॉक्टर बनाएं. 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
7: 90% पास रेट.
6: कॉल नाउ 416-743-9222.
7: 416-743-9222.
6: और विजिट allsaintsuniversity.org. All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा.
8: भाई मैनू कहना भी पैना है, तो अनु सुनना भी पैना है.

0: For amazing designer frames and designer sunglasses, visit KandaOptical.com or call 416-922-5263. Kanda Optical, the name you can trust.
1: 2:23 और बारिशों का मौसम. और आमिर, कल हल्की हल्की बारिश थी, आपसे शायरी सुनने वाले हैं.
2: बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं,
1: है ना. और ये तमाम शायरी, गाने और हंसी ठहाके, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं जब हम हेल्दी होते हैं.
2: बिल्कुल ठीक.
1: जब हमारे पास बीमारियां नहीं होती हैं, स्पेशली हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो जब बच्चे और सीनियर्स, बुजुर्ग हमारे घर के, जब सब स्वस्थ रहते हैं तो हर चीज अच्छी लगती है. लेकिन ये जो जिंदगी है, इसमें सब कुछ मिलता है, इसमें बीमारियां भी मिलती हैं. कई बार तो ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है. लेकिन जब हमारे साथ 9 जनरेशन से आयुर्वेद की पढ़ाई करके और रेयर हर्ब्स लाके, जड़ी बूटियां लाके आपका ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद एंड हर्ब्स गुरु जी, तो डेफिनेटली हमें बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, परमानेंटली छुटकारा मिलता है, और हर एक मौसम हम इंजॉय करते हैं अपनों के साथ. गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: हाँ नमस्कार बहन जी, बहुत अच्छा है, भगवान आशीर्वाद से. अमीर भाई नमस्ते.
2: नमस्कार, आप कैसे हैं गुरु जी? आप ठीक हैं?
3: हाँ ठीक, सब ठीक है. आपको भगवान को आशीर्वाद से सारा ठीक है, हमारा पेशेंट भी सारा लोग अच्छा अच्छा आपको हमारा बात सुन के आ रहा है, आके ठीक होके जा रहा है.
1: आ रहा है ये भी अपने आप में, ठीक होके जा रहा है. गुरु जी ने ये बात बोली है, बहुत अच्छी बात है. जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो आप जरूर 1-1.5 घंटे का टाइम लेके जाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा रश होता है वहाँ पर. लेकिन गुरु जी की मुस्कुराहट देख के आपकी वेट है ना, आराम से खत्म हो जाएगी. गुरु जी मौसम जो है, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी सीजनल प्रॉब्लम्स लेकर आता है. तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे और कैसे आप हेल्प कर सकते हैं इसमें?
3: यस, ये सीजन में जी देखो, गर्मी होता है, कोल्ड होता है
2: जी.
3: इस सीजन में दो प्रॉब्लम आ जाता है. एक आता है कोल्ड आता है और खांसी आता है, ठंड में वो गला में खराब हो जाता है, एक प्रॉब्लम. इसके लिए क्या करना है, हमेशा हमेशा गर्म पानी पीना है और ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना, क्योंकि इमिडिएटली गर्म होता है, इमिडिएटली कोल्ड हो जाता है, ये बहुत बुरा क्लाइमेट है. इसलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए ये सूंठ, पेपर वैसा करके कषाय होता है वो लेना है.
2: अरे वाह, बिल्कुल सही गुरु जी. यहाँ मुझे मैसेज आया एक सुनने वाले का, वो कहते हैं कि मुझे पहली ही नजर में अक्सर हर 3-4 महीने बाद प्यार हो जाता है, तो उसका कोई हल है आयुर्वेद में? उसका कोई हल नहीं है.
3: सारा का हमारा पास इलाज होता है.
2: अच्छा,
1: सबका इलाज. गुरु जी शर्मा गए, आपका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया. गुरु जी ने कह दिया हमारे पास सब चीजों का इलाज है.
3: सारा का इलाज होता है, मेरा प्रॉब्लम है
1: जी.
3: और क्या होता है बहन जी, अभी ये सीजन को लिए जॉइंट में भी लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि कोल्ड में वो बाहर जाने के लिए भी नहीं होता है लोगों को, गर्मी हो जाता है, जब बाहर जाए तो गर्मी हो जाता है, यूरिनली बर्निंग हो जाता है, यूरिनली इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में भी गैस बढ़ जाता है, वैसा अभी हो रहा है ये गर्मी से. इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है. वैसा लोग कम से कम 20-30 लोग आ गया था दिस ये 15 दिन में, 2 वीक्स में, क्योंकि बाहर जाता है, घूमने के लिए जाता है, उधर जाता है, गर्मी पड़ जाता है.
2: बिल्कुल ठीक.
3: वजह यूरिन इन्फेक्शन होता है और बॉडी में इचनेस होता है और बॉडी में एलर्जीनेस होता है. वो लोगों को 2 वीक्स में 20 लोग आ गए, उसको ठीक हो गया था ऊपर वाला का आशीर्वाद से.
2: बिल्कुल सही. यहाँ गुरु जी का नंबर आपको दे रहे हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, लोअर बैक पेन है, मसल में बहुत ज्यादा पेन होता है आपको, या फिर लो एनर्जी रहती है, तो आप गुरु जी से बात करेंगे. आजकल तो आपने देखा होगा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस इतनी है कि इंसान को एनर्जी की जरूरत हमेशा ही रहती है. 4374383399 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, ये नोट कर लीजिए, बात जरूर कीजिए और पहले अपॉइंटमेंट लेके जाइए, गुरुजी के पास काफी रश होता है. 4374383 3399 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
1: थैंक यू गुरु जी.
3: थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
2: और साहब, अगर आपको पैसा चाहिए आज के दौर में तो खासा मुश्किल है, पता ही नहीं चलता कहां से आएगा पैसा. आप जमीनों आसमान के घोड़े दौड़ा देते हैं, लेकिन सुध बुध सीख हो गई है रिसेशन के इस दौर में कि पैसा कहां से आए. तो लीजिए आपको बता देते हैं कि अगर आपको 150,000 200,000 तक का लोन चाहिए तो वो कैसे अवेलेबल हो सकता है, ये बताएंगे. नागपाल जी, वेलकम करते हैं आपको.
4: सभी को सलाम हमारी तरफ.
2: बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये 1.5-2 लाख तो आज के दौर में बहुत बड़ी रकम है, ये कैसे इंतजाम हो सकता है इसका?
4: देखिए जी, जब आपकी गवर्नमेंट $900 मिलियन यूक्रेन को और देने जा रही है, तब तो आपको हैरानी होती नहीं. जब गवर्नमेंट आपको 0% पे बिना क्रेडिट चेक के लोन दे रही है $170,000 डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज, तब आपको हैरानी होती है.
2: 170,000 तो बहुत पैसा है.
4: बहुत पैसा खर्च नहीं होता है आराम से 10-15 साल में.
2: बिल्कुल सही. मुझे ये बताए कि तरीका क्या है, आज अगर किसी को 150,000-170,000 का ये लोन चाहिए जीरो इंटरेस्ट पे, तो क्या करे वो?
4: हमें कॉल करे, हमारे ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है, टिम होटल में नहीं मिलते, कोई मीठी बातें नहीं करते जी. और ऐसा भी नहीं कि आप पे घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कोई गारंटी है ही नहीं इसमें.
2: बगैर किसी गारंटी, किसी का घर नहीं है, कोई किराए पे रहता है तो उसको भी मिल सकता है?
4: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. हमारे पास लोग आते हैं जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, रियल्टर से बड़ी सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, चढ़ती मार्केट में. हमारे पास लोग आते हैं जिनके भविष्य में करे कपड़े फटे हुए होते हैं.
2: ओह माय गॉड,
4: हर तरीके का बंदा आता है हमारे पास.
2: वाह वाह वाह.
4: तालीम हासिल कर रहे हैं, फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फंडिंग हासिल करते हैं 0% पे बिना किसी क्रेडिट चेक के. स्कोर आपका क्रेडिट स्कोर 0 है, माइनस में है, एलिजिबल है. फंडिंग लें गवर्नमेंट से, 0% में फंडिंग लीजिए.
2: कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस लोन के लिए?
4: PR सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, 2-3 घंटे क्लासेस लगाएं, सिंगल मदर, उबर ड्राइवर, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, क्लासेस लगानी है, आराम से आप पास हो जाएंगे. आप तालीम हासिल करते हैं, बिजनेस के कोर्स करते हैं ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन, फोन पे या कंप्यूटर पे, आप कम्फर्ट से. और फंडिंग हासिल करें, जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा लोन 0% पे. और बच्चे छोटे हैं तो कॉलेज की फीस गवर्नमेंट कवर कर देती है.
2: अच्छा, जितने ज्यादा बच्चे हैं उतना ज्यादा लोन मिल सकता है?
4: बिल्कुल जी, अगर उनकी उम्र छोटी है, 11 साल से कम है बच्चों की उम्र, तो और ज्यादा बेनिफिट आपकी फीस कवर हो जाती है.
2: अरे वाह, मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम ऐसे लोग अक्सर ही सुनते हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं. कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ कारोबार करना चाहते हैं. जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे लायक ही हों, जितने भी बच्चे हैं उतने ही अच्छे हैं, और इस लोन के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं. ये नंबर मिलाएंगे आप 4372643175. नंबर दोबारा मिला लें और ये लोन ले लें. आजकल के टाइम पे मुफ्त में पैसा मिल जाए जिसका कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट, कोई सूद ना देना पड़े, तो इससे बड़ी नेमत आज के टाइम पे, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है. नंबर मिलाइए 4372643175. 437-264-3175. और मैं आपको बता दूं कि जब आपको पैसा मिल जाएगा, मान लीजिए 150,000 आपके अकाउंट में आ गया, तो उसके बाद फिर आपने इनकी फीस देनी है जो कि $200 से $400 है सिर्फ. कहां आपको मिलेगा 1.5-2 लाख, कहां इनको सिर्फ मिलेगा $200 से $400 जो आप खुद देंगे अपने अकाउंट से निकाल के. ये रहेगा नंबर 4372643175. नागपाल, आपसे फिर बात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया.
4: थैंक यू.

0: और साहब, ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी से इस वक्त हमारे साथ निभा रहे हैं डॉक्टर सुलेमन और प्रीतम जी। आपका बच्चा डॉक्टर बने, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और मैं आपको बता दूं इसके फाइनेंशियल गेन्स क्या हैं। साल का अमरीकी डॉलर में 4-5 लाख तो कहीं गया ही नहीं है। प्राइवेट चार्टर प्लेन्स मैंने देखे हैं अमेरिकन डॉक्टर्स के सामने खड़े हुए, मैंने उनकी प्राइवेट यॉट्स भी देखी हैं, कुछ के तो तेल के कुएं भी हैं डॉक्टर साहब, जो उन्होंने वहाँ खरीदे हैं पीछे कुवैत में, सऊदी अरब में। सो अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, तकदीरें बदल जाएंगी, किस्मत बदल जाएगी आपकी। डॉक्टर बनाइए अपने बच्चे को, और कैसे बनाना है ये बताएंगे डॉक्टर सलमान। वेलकम अगेन सर।
1: थैंक यू वेरी मच अगेन।
0: मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा डॉक्टर्स की इनकम के बारे में?
1: थोड़ा ज्यादा तो बोल रहे हैं आप,
0: अमरीकी डॉक्टर।
1: पैसे तो बना सकते हैं, पर ये प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि जब इलाज करते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता
0: है, अरे वाह वाह, आई लाइक दिस,
1: वो बढ़िया है,
0: वाह वाह,
1: वो बढ़िया है,
2: बहुत,
1: वो थैंकलेस है।
2: वो हमें कहते हैं ना कि जो किसी कोई बच्चा सपना देखता है, कोई ड्रीम देखता है, और एक डॉक्टर का ही प्रोफेशन ऐसा है। आप लास्ट लिंक पे बात कर रहे थे कि वो डॉक्टर का प्रोफेशन वो चेंज नहीं करता, जबकि दूसरे स्ट्रीम में हम जाते हैं तो हर 2 साल बाद ये इट्स नॉट हेल्पिंग मी, लेट्स चेंज टू अनदर प्रोफेशन। एक बार डॉक्टर बन गए तो होल लाइफ के लिए आपकी जिंदगी सेट है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आप एक लैंडमार्क एस्टेब्लिश करते हैं। सो दिस मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। और इसीलिए तो डॉक्टर सुलेमान आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, जो लिसनर्स हमें अभी जुड़े हैं जिन्होंने आपका लास्ट लिंक मिस किया उनको बता दीजिए कि बैक होम से भी कोई आना चाहे तो।
1: जैसे हम बताया अपने प्रोग्राम पे पहले भी, हमारे पास 2 तरह के प्रोग्राम्स है, एक 5 साल का प्रोग्राम है, एक 4 साल का प्रोग्राम है। 5 साल के प्रोग्राम के लिए हम लेते हैं 12 साल का, आई मीन 12 ईयर्स स्कूलिंग किया हो जो भी स्टूडेंट, और जिनका एग्रीगेट परसेंटेज 70% से ज़्यादा हो।
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: और सब्जेक्ट्स ऐसा हो कि उनके उनमें मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी किया हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किया हो।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही।
1: ये 12 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद 5 साल के प्रोग्राम पे, अगर 4 साल का प्रोग्राम है लेना चाहते हैं, वे अगर साइंस ग्रेजुएट हो
0: जी,
1: या साइंस ग्रेजुएट करते 2 साल का किया हो, तीसरा या चौथे साल भी कंप्लीट नहीं किया, फिर भी हम ले सकते हैं उनको, तो 4 साल के प्रोग्राम में ले जाते।
0: तो यहाँ कैनेडियन बहुत से बच्चे आपने भेजे हैं ऑलरेडी? बहुत सारे
1: हमारा कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं, अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, और इंडियन फैमिलीज जो भी इंडियन से आए हुए उनके स्टूडेंट्स भी हैं।
0: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर बता रहे हैं ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी का, यही नंबर मिलाइएगा। डॉक्टर सुलेमान यहाँ पर मौजूद हैं, प्रीतम जी यहाँ मौजूद हैं, ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी से आए हैं, यहीं पे वॉन में इनका कमाल का ऑफिस है। आपका बच्चा यहाँ जाएगा, बेसिक सा एक इंटरव्यू होगा, उसका एडमिशन हो जाएगा और डॉक्टरी की तरफ पहला कदम बढ़ जाएगा। ये नंबर मिलाएंगे आप 416-743-9222। नंबर दोबारा बता रहे हैं, ये मिलाइए, इंक्वायर कीजिए, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए। अगर वो 12 ग्रेड पास है और 60-70% नंबर है उसके साइंस सब्जेक्ट्स में, तो वो डॉक्टर बन सकता है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं है इसके लिए, सिर्फ एक छोटा सा नॉमिनल सा इंटरव्यू है। ये नंबर मिलाएंगे 416-743-9222।
2: जी, और आपसे जानना चाहेंगे प्रीतम की, आपके जो कॉलेज के कैंपस है उसमें व्हाट आर द टाइमिंग्स, कब हमारे लिस्टर्स वहाँ पे जा सकते हैं और कब अपने अपने क्वेरीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप पर जाएं और एडमिशन लें।
3: ओके, सो कैंपस के लिए वो हमारी अगर प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए भी तो वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा वीडियो भी है कैंपस का, हमारे सारे प्रोग्राम्स लिस्टेड है,
2: वर्चुअल टूर है वहाँ पर,
3: वर्चुअल टूर है भी
2: है,
3: और हमारा वेबसाइट है www.allsaintsuniversity.org। सो वहाँ उस व्हेन दे विजिट द वेबसाइट दे विल एबल वो सब कुछ देख सकते हैं कि क्या हमारे किस तरह के प्रोग्राम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमारा एक्रीडिएशन कहाँ पे है, हम फुल्ली एक्रीडिएटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी है,
0: ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है,
3: ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, इट इज एक्रीडिएटेड बाय WFMe रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज which must have them, right? So we are fully accredited, और 20 years से, more than 20 years से operational है, और जैसे ही वो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से मिल जाती है, उसके बाद अब हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हो और हम ऑलवेज रेडी है, अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन देने के लिए.
0: ग्रेट, बिल्कुल सही, अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन देने के लिए. इस नंबर पर कॉल कीजिए. बच्चे का कोई टेस्ट नहीं, कोई एमडी कैट नहीं, कोई लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं. अगर 12 जमातें पास है, 12 ग्रेड पास है, बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर बन सकता है. आज से उम्मीद बांध लीजिए. अगर आपने जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना है तो अपने बच्चे या बच्ची दोनों में से किसी एक को डॉक्टर बना दीजिए, काम हो जाएगा. ये नंबर मिलाएंगे आप 416 743

0: अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है, आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
1: टीम गुरजोत रंधावा आपके लिए लेकर आए हैं इस समर का ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कैसलमोर एस्टेट इन द हॉटेस्ट एरिया ऑफ कैसलमोर ब्रैम्पटन। लग्जरी एस्टेट होम्स फ्रॉम 3000 टू 7000 स्क्वायर फीट विद लॉट्स ऑफ फीचर्स, 2-4 कार गैराज, 10-11 फीट सीलिंग, क्वार्ट्ज काउंटरटॉप, ऑल बेडरूम्स विद अटैच्ड वॉशरूम्स, स्पाइस किचन ऑन द मेन फ्लोर एंड अप टू 7 बेडरूम 8 वॉशरूम ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बिगर यूनिट। Late 2027 closing. Easy deposit structure. Don't miss this opportunity. Call Gurjot Randhawa 416-576-0595. 416-576-0595. Castlemore Estates in the Castlemore, Brampton.
2: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
3: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कंटेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज आरटीसी के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा 243 इज द टाइम। और दोस्तों के साथ बारिश के मौसम में घूमना फिरना और बारिश में भीगना कौन भूल सकता है आमिर, बचपन की वो यादें।
4: थैंक यू फॉर द पकौड़ा पार्टी बिफोर द प्रोग्राम बाय द वे।
0: दोस्ती के बारे में कहते हैं, दोस्ती वो ख्वाब है जो दिल से दिल तक जाता है।
4: अरे वाह।
0: दोस्ती वो सुकून है जो हर गम को भुला देता है। दोस्ती ना रंग देखती है, न जात न मजहब। दोस्ती बस एक एहसास है जो हर रिश्ते से अनमोल है।
4: वाह वाह।
0: साथ चाहे जितना भी दूर हो, दिल से दिल का रिश्ता नहीं टूटता। दोस्ती जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी है, दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती।
4: खत्म नहीं होती, वाह।
0: साल दर साल बढ़ती जाती है।
4: और एक ही जुमला मैं कहूंगा कि वो शख्स कभी गरीब नहीं हो सकता, मुफलिस नहीं हो सकता, तंग दस्त नहीं हो सकता और तंग दिमाग तंग सोच का नहीं हो सकता जिसका दोस्त अच्छा हो।
0: क्या बात।
4: और बहुत से बनाने की जरूरत भी नहीं रहती। दोस्त पक्का हो, सच्चा हो, वफादार हो, अच्छा हो, दिलवाला हो तो एक ही काफी होता है।
0: क्या बात है, अमेजिंग।

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: और आजकल जीटीए का मौसम भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है. कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी अचानक ठंडी हवाएं. और ऐसे बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर पड़ता है दोस्तों. और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राजी, जो सहज केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं. जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बातचीत. और आपको बता दें कि इनका परिवार पीढ़ियों से नब्ज देखकर शरीर की प्रॉब्लम्स को समझने और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका उपचार करता आ रहा है. वैद्य जी, सबसे पहले आपका हमारे शो में दिल से बहुत बहुत स्वागत है. पहला सवाल आपसे यह है कि जीटीए के मौसम में रोजाना बदलाव देखने को मिलते हैं. कभी बड़ी गर्मी हो जाती है, कभी अचानक ठंड महसूस होती है. और ऐसे बदलते मौसम में अपनी सेहत को हेल्दी रखने के लिए आप हमारे लिसनर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: नमस्ते जी, आपने लिजरेंट्स के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है. अभी कुछ दिनों से इधर ओंटारियो में भी वेदर भी उतना ठीक नहीं है. एक एक दिन थोड़ा सा ठंड लगता है, एक एक दिन थोड़ा गर्मी लगता है, एक एक दिन थोड़ा सा बारिश गिर रहा है. तो लास्ट वीकों से थोड़ा सा एयर भी पोल्यूटेड हो गए. ये मौसम में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाता है. स्पेशली लोगों को, कुछ लोगों को ये रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के ऊपर, ब्रीथिंग इश्यूज़ के ऊपर इफेक्ट हो जाता है. आस्थमा पेशेंट्स के लिए भी ये वेदर बहुत ख़राब है. और ये वेदर में लोगों को ऑटोमेटिकली बोन्स भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है. जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, ऐसा आर्थराइटिस भी थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है. इसीलिए सभी लोग ये वेदर में थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा. और पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना है. एटलीस्ट 2-3 लीटर पानी एवरी डे पीना है. वो भी थोड़ा सा लूक वार्म वाटर जैसे पीना है.
1: बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी. और ऐसे बदलते मौसम में जो एस्मा के मरीज हैं उनकी परेशानी भी काफी बढ़ जाती है. सांस लेने में तकलीफ होती है, एलर्जी होती है और बार बार होने वाली ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं चाहूंगी आप उन्हें कुछ गाइडेंस दें. और क्या आयुर्वेदा में इसका कोई प्रभावी जो सोल्यूशन है वो मौजूद है?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी. आस्थमा नवे डेज बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम वीक इम्यूनिटी के कारण से भी होता है, वेदर का कारण से भी होता है, जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों को भी होता है. तो इसका कारण से लोगों को खांसी आ जाता है, कुछ लोगों को सर्दी पकड़ता है, कुछ लोगों को नॉक ब्लॉक हो जाता है, कुछ लोगों को चेस्ट में हेवी फीलिंग होता है, रात को सोने में आवाज़ आता है, वीजिंग आता है, रात को नींद भी बराबर नहीं मिलता है और आंख भी लाल लाल हो जाता है, आंखों में एलर्जी पकड़ता है, इचीनेस हो जाता है, चिक चिक भी आता है, स्नीजिंग बोलता है ना, स्नीजिंग भी आता है. इसका कारण से लोगों को बॉडी भी वीकनेस हो जाता है. कितना खाना खाएगा तो भी बॉडी को बराबर सूट नहीं होता है. थोड़ी देर चलने में भी बहुत दिक्कत होता है. तो इसके लिए हमारा केरला में बहुत अच्छा जड़ी बूटियों है. वो दवाई खाने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है. हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वीकनेस के लिए, और कुछ कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है. और जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, लिवर इश्यूज़ होता है ना, फैटी लिवर, उसके लिए, बाल हेयर का प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, डायबिटीज़ के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, माइग्रेन के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है.
1: वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. ऐसे बदलते मौसम में आई एम श्योर आपकी जानकारियों से हमारे लिसनर्स को बड़ा फायदा होगा. और दोस्तों, आप नोट कर लीजिए डिटेल्स, केरला वैद्य रत्न पीवी राजी, जो सहज केरला आयुर्वेदा हर्बल कंसल्टेशन सेंटर ब्रैम्पटन से जुड़े हुए हैं. नंबर नोट कीजिएगा, डायरेक्ट नंबर है 6473278111, 6473278111.
3: और साहब, बात करेंगे आपके सुख की, आपकी राहत की. और सुख राहत का जब जिक्र करते हैं तो बात होती है फाइनेंसेस की. लोन कितना? 150,000. और वापस कितना करना है? उतना ही जितना लिया, कोई ब्याज, कोई सूद, कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पर. यह कैसे मुमकिन होगा, जानेंगे नागपाल से. वेलकम करते हैं सर.
4: थैंक यू वेरी मच जी, सभी को सलाम।
3: आज के जमाने में कनाडा जैसे देश और मुल्क में सबसे इम्पोर्टेंट है मुफ्त का पैसा मिलना यूज करने के लिए, कैसे इंतजाम करते हैं ये आप?
4: हाँ जी, गवर्नमेंट इंतजाम करती है, हम एक जरिया है और बाकी करते बहुत को असिस्ट कर चुके हैं 8 साल में। गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स है हमारे पास, आप तालीम हासिल करें, हुकूमत कॉलेज की फीस पे करती है और आपको अलग से रहने खाने के लिए खर्चे करने के लिए अप टू $170,000 का 0% पे बिना गारंटी बिना क्रेडिट चेक के लोन देती है। हासिल करें, पीछे ना रहे।
3: बिल्कुल ठीक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये बताइए।
4: PR है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है और लाइक ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप उबर ड्राइवर हाउस वाइफ है अनएम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड है। हासिल करें लोन को, कहीं भी उसे खर्च करें, टफ टाइम फारिग करें और 12-22% तक का क्रेडिट कार्ड का लोन 0% के इस लोन से बिना गारंटी वाले लोन से फारिग करें।
3: 4372643175 लोन मिल गया, पैसा मिल गया तो कोई पाबंदी तो नहीं है कि कहां खर्च कर सकते हैं? बैक होम, यहां रेनोवेशन, घर की मोर्टगेज, डेली के खर्चे, कहां खर्च कर सकते हैं इसको?
4: कहीं भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट आपको दे ही दिए खर्चे करने के लिए, किसी के लिए खर्चा है ग्रोसरी करना, किसी के लिए गैस भरवाना, नो रिस्ट्रिक्शन। और ये जो लोन है, आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं ना साथ में, तो एक तीर दो निशाने, आपने तालीम हासिल करी, ऑनलाइन कोर्सेज करे, एग्जामिनेशन नहीं है, 2-3 घंटे अपने फोन पे या कंप्यूटर पे क्लास लगाई और आम लाइक एग्जामिनेशन नहीं है, आसान सी असाइनमेंट्स है, कुछ कोर्सेज में टीचर ही नहीं है और आपने 50,000 से लेके 1,70,000 का लोन हासिल अपने अकाउंट में करा, कहीं भी उसे खर्च करें 0% पे बिना गारंटी के। गाड़ी के लोन में गाड़ी उठा लेते हैं, घर के लोन पे घर उठा लेते हैं, आप उठाएंगे किताब उठा जाएंगे, उठा रहे गवर्नमेंट। आप जब बैंकों को गवर्नमेंट 2.5% पे लोन देती है, बैंक वाला आपको वही 10% पे चिपकाते हैं।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: डायरेक्ट 2.5% पे दे रही है, पीछे ना रहे, लोन हासिल करें, 0 से लेके 2.5% साल का ब्याज है सिर्फ।
3: और आपकी फीस क्या होती है? मिलने वाले को तो 1.5 लाख मिल गया, 2.25 लाख लोन मिल गया, उसने इंटरेस्ट भी नहीं दिया, जितना लेना उतना ही वापस करना है, व्हाट इज योर बेनिफिट इन इट?
4: हम जी वॉल्यूम में काम करते हैं, अगर हमने टीका लगाना होता तो हम वैल्यू पे ऐड ना करते। सर उन्होंने यहाँ पंचर लगाया, वहाँ पंचर लगाया, मीठी बातें करके फंसाते हैं, हम साफ करके था करके एयर के अपनी चीज बताते हैं। $199 वो भी काम होने के बाद फंडिंग किसके खाते में आती है? आपके। तो आपकी ईमानदारी चेक हो रही है, हमारी नहीं हो रही, पीछे ना रहिए। ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिस है, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा पे आइए, कितने लोगों का मैसेज कर चुके आपके शो से, मार्कअप से इतने लोग आते हैं आपके थ्रू।
3: बिल्कुल सही, जहां भी आप सुन रहे हैं दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, खुद आइए और 1.5 से 2.25 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन लीजिए। 4372643175 इट्स 4372643175। नागपाल बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू।
5: मम्मा व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, 1 महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस and no fee until victory.
8: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
7: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
8: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
9: 256 और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। बारिशों को एंजॉय कीजिए, ऐसे मौसम बार बार नहीं आते। आमिर कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
3: वाह,
9: चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से ही जगमगाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। कौन कहता है दिल से दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर।
3: मौसम था बेकरार, तुम्हें सोचते रहे, कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे। बारिश हुई तो घर के दरीचे से लग के हम चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे।
9: क्या बात है। और इसी के साथ शिवानी और आमिर आपसे लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि कल होती है आपसे मुलाकात। 416-303-3639। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
3: इस पैगाम के साथ कि जिंदगी नफरत के लिए, मनफी एहसास के लिए, बुगज, हिरस, हवेस, तमा, लालच, खुदगर्जी जैसे एहसासात के लिए बहुत बहुत छोटी है। इतना छोटा सा तोहफा, इतना खूबसूरत और अनमोल तोहफा इतने नेगेटिव और मनफी एहसासात में जाया मत कीजिए। मोहब्बत बांटिए, आपको बहुत मोहब्बत मिलेगी। सखावत बांटिए, सखी लोगों से वास्ता पड़ेगा। अच्छे एहसासात, अच्छा गुमान, अच्छी सोच रखिए, आप इबादत गुजारों से ऊपर के आदमी बनेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masiki Rail Gari, aayi Sean Express, Masiki Rail Gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का मैं शालिनी वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर. बाहर बारिश की बूंदें, हवाओं में हल्की सी ठंडक और ऐसा मौसम ही तो दिल को अपने आप रोमांटिक कर देता है. कभी खिड़की पर गिरती बारिश, हाथ में गर्मा गर्म चाय और बैकग्राउंड में आपकी फेवरेट मस्ती की रेलगाड़ी, छोटी सी खुशी के लिए कभी इतना भी काफ़ी होता है दोस्तों. कुछ बूंदें बरसी तो यादों का मौसम आ गया, कुछ बूंदें बरसी तो यादों का मौसम आ गया, दिल मुस्कराया तो हर लम्हा हसीन हो गया. बारिश तो बस एक बहाना थी दोस्तों, थोड़ा सा प्यार मिला और दिन खूबसूरत हो गया. तो आज सिर्फ मौसम ही नहीं दोस्तों, आसमान भी कुछ खास नज़ारा दिखाने वाला है. कई कैनेडियंस आज पार्शियल सोलर इक्लिप्स देख सकेंगे और आज नज़र मौसम पर भी, आसमान पर भी. और इसी खूबसूरत आफ्टरनून में रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ सबसे पहले, उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे बहुत सारी बॉलीवुड म्यूज़िक, मस्ती, मेहमानों का साथ और आपकी हमारे साथ दिल से बातचीत. तो एक बार फिर से दीजिएगा शालिनी का साथ. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो, 416-569-7812, 416-569-7812. गुड आफ्टरनून.
3: Sean Express न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
2: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के वैक्सीनेशन स्केड्यूल में बदलाव को लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है. इसमें कंबाइंड MMR शॉट की जगह मीजल्स, मम्प्स और रुबेला के अलग अलग वैक्सीन्स ऑफर करने की बात कही गई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से वैक्सीन्स को लेकर पहले से मौजूद कन्फ्यूजन और बढ़ सकता है और इसका असर कैनेडियन डिस्कशंस पर भी पड़ सकता है. टोरंटो में लिथियम आयन बैटरीज से जुड़ी फायर्स लगातार कंसर्न्स बढ़ा रही हैं. डाउनटाउन की जॉर्ज स्ट्रीट पर एक बिल्डिंग में लगी फायर पिछले 24 घंटों में तीसरी बैटरी रिलेटेड फायर बताई गई. इस इंसिडेंट में 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, 1 को बर्न्स और 2 को स्मोक इन्हेलेशन की वजह से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी. फायर ऑफिशियल्स के मुताबिक यूनिट के अंदर 10 से ज्यादा ई बाइक्स और मोबाइल डिवाइसेज मौजूद थे. नायग्रा रीजनल पुलिस ने 2 अटेम्प्टेड बैंक रॉबरीज के मामले में 18 साल के जेऑन बर्गर समेत 3 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि बर्गर के अलेजेड लिंक्स एक गन फॉर हायर नेटवर्क से हैं, जिस पर GTA में कई शूटिंग्स में इन्वॉल्वमेंट का शक है. मिसिसागा में हाईवे 403 नियर मेविस रोड पर हुए मल्टी व्हीकल क्रैश में 12 साल का एक बच्चा और 43 साल का एक व्यक्ति क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, दोनों US रेजिडेंट्स बताए गए. पुलिस के मुताबिक शुरुआती कोलिजन के बाद वो व्हीकल से बाहर निकलकर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे, तभी एक तीसरी गाड़ी ने वहां खड़ी व्हीकल को हिट कर दिया. इन्वेस्टिगेशन जारी है. तीन साल पहले ब्रैम्पटन में हुए डेडली हाउस फायर के मामले में एक प्रॉपर्टी ओनर को कन्विक्टेड ठहराया गया। इस फायर में एक प्रेग्नेंट वुमेन और उसकी तीन साल की बेटी की मौत हुई थी। सिटी के मुताबिक प्रॉपर्टी को प्रॉपर परमिट्स के बगैर चार रेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया था और यूनिट्स बिल्डिंग और फायर कोड रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते थे। उधर जॉर्जिना में आज सुबह 8 व्हीकल्स की कोलिजन ने ट्रैफिक को काफी स्लो कर दिया। यॉर्क रीजनल पुलिस के मुताबिक इंसिडेंट मॉर्टन और वुडबाइंस एवेन्यू के एरिया में हुआ है। आज आसमान में भी एक खास नजारा देखने को मिलेगा। कनाडा के कई हिस्सों में पार्शियल सोलर इक्लिप्स नजर आ सकता है। नासा के एस्टीमेट्स के मुताबिक मैक्सिमम इक्लिप्स के दौरान सेंट जॉन्स में करीबन 53% सन कवर, हैलिफैक्स में 31%, मॉन्ट्रियल में 18% और टोरंटो में लगभग 8% सन कवर होगा। यूरोप और आर्कटिक के कुछ हिस्सों में मून सन को पूरी तरह ब्लॉक करेगा। आखिर में वेदर अपडेट। टोरंटो में आज थंडर स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स की पॉसिबिलिटीज हैं। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक कुछ एरियाज में 60 मिलीमीटर्स तक रेनफॉल हो सकती है। हाई ऑफ 24 डिग्रीज, ह्यूमिडेक्स के साथ 29 डिग्रीज। दोपहर और शाम के दौरान वेदर ज्यादा एक्टिव रह सकता है और कल थर्सडे को स्काईज क्लियर होने की उम्मीद है। सनशाइन के साथ हाई रहेगा करीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक शालिनी के साथ सीएमआर एफएम 101.3 पर। गुड आफ्टरनून।
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम यानी जीतो जिंदगी भर, और एक बार फिर से ये सेगमेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी विद द लेटेस्ट ऑन दिस। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राफी जी। और देखिए, ये मौसम इतना खूबसूरत है इस वक्त बाहर का, और लेकिन कुछ लोगों के लिए थंडर स्टॉर्म्स जो हैं, दे डोंट गो वेल विद सम पीपल। तो वो चाहते हैं कोई ऐसा काम हो जिसमें मौसम जैसा भी हो, घर में बैठ के आराम से काम किया जाए, बच्चों के साथ वेकेशन पर जाओ, वहां भी काम करो। तो क्या ट्रेडिंग में हम ये सब अचीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में?
2: जी एब्सोल्युटली, आप अपनी लैपटॉप और इंटरनेट लेके मार्च पे भी चले जाएं तो हम आपके साथ पहुंच जाएंगे। तो ये तो कोई मसला नहीं है। पूरा देखें, सुबह 9 बजे से इस वक्त 3 बजे हैं, तो हमारी लाइव स्ट्रीम हर तरफ जा रही है।
1: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो राफी जी, कई बार ऐसा होता है जब हम नया काम करने जाते हैं ना, हम काम को चुनते हैं, लेकिन विन लाइफ टाइम के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि विन लाइफ टाइम चुनता है अपने स्टूडेंट्स को, कि कौन से स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गेट इन टू दिस ट्रेनिंग और फिर ट्रेडिंग। तो वॉट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एलिजिबिलिटी?
2: देखिए, सबसे आसान है कि आपको पैसे नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड आईटी का नहीं चाहिए, कोई फाइनेंस नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन लोगों को पिक करते हैं जिनका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड थोड़ा पेशेंस वाला है, इमोशन बैलेंस ठीक है ज्यादा, सिर्फ दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर आपको।
1: वेरी नाइस। तो राफी जी, क्या होगा पहला स्टेप, कैसे शुरुआत की जाए इस काम की?
2: सैटरडे 1 PM दोनों ऑफिस में आए, सेमिनार सुने, सारे Q&A लेके आए, आपके सारे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वंस यू एनरोल, उसके बाद फिर आपने क्लासेस लेनी है, एंड देन आप मेरे साथ या किसी भी मेंटर के साथ आपको उंगली पकड़ के बता दिया जाएगा क्या क्या करना है।
1: वंडरफुल। तो वेल दोस्तों, फ्री सीट आपकी है, बिल्कुल रिजर्व की जाएगी। अगर आप राइट अवे इस नंबर पे कॉल करते हैं, सैटरडे को 1 PM ये सेमिनार होता है हार्ट ऑफ मिसिसागा में, कॉल कीजिएगा, या वीकडे में जाकर भी आप जो लाइव फ्लोर है उसको विजिट कर सकते हैं। winlifetime.com 10 नंबर के फासलों पर है ये अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी। 9052061008, दैट्स 9052061008। राफी जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, फिर जुड़ेंगे। टेक केयर।
2: थैंक यू, टेक केयर। Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
1: और ये सेगमेंट दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो ये सर्विसेज देते हैं पूरे ऑन्टारियो में। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है और खुद ही एक्सपर्ट इंस्टॉलर्स जो हैं प्रोफेशनली इंस्टॉल करते हैं। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। यहां पर स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ मिलता है। और अब फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट अवे कॉल कीजिएगा 416-732-3600, that's 416-732-3600। और अब जो है ये सेगमेंट पहुंचाते हैं आप तक, और हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं एक बड़े डैशिंग और हैंडसम पर्सनालिटी हु इज अगेन कलर कोऑर्डिनेटिंग विद मी, एंड इट्स ग्रेट टू हैव हिम विद मी राइट नाउ। अभी चलिए अंडर रैप्स रखते हैं, बहुत जल्दी उस पर्सनालिटी को आप तक पहुंचाते हैं, आई थिंक तभी मजा आएगा। फिलहाल बता दें कि बॉलीवुड कैलेंडर का पहला पन्ना खोलते हैं, और ये भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। फिलहाल पहले पन्ने पे लिखा है नाम सारा अली खान का। बॉलीवुड की नई जनरेशन की बात हो और चार्म, कॉन्फिडेंस, सिंप्लिसिटी, जबरदस्त एनर्जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा अली खान जो हैं अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपनी जगह बनाई है। केदारनाथ फिल्म से शानदार डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, इतने खूबसूरत से मौसम में थोड़ी शरारत करते हैं, थोड़ी आंख मारते हैं। सो आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, पुराना गाना नई थाली में परोसा गया, मस्ती की रेलगाड़ी पर एंजॉय।

0: पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Jab koi baat bigad jaye, hum honge
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest fee installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
10: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
1: वेल वेलकम बैक दोस्तों. आपका शालिनी एक बार फिर से वेलकम करती है और चलिए आपको थोड़ा और खूबसूरत बनाया जाए. कहते हैं कि सारा कुछ कर लिया लेकिन एक चीज मिस हो गई ना, तो बस आपकी खूबसूरती पर कहीं ना कहीं एक ब्लैक डॉट लग जाता है. एंड वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन. इसीलिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं एक बहुत ही रिनाउंड नेम ऑफ आवर कम्युनिटी, जफर मलिक साहब, जो फ्रेश हेयर टॉनिक की फ्रेशनेस आप तक पहुंचाएंगे. 20 सालों से कनाडा में लोगों को इन्होंने दिया है ये ट्रस्टेड सॉल्यूशन इफ यू आर लुकिंग फॉर यू नो ग्रेट हेयर ग्रोथ. आप बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, डैंड्रफ हटाना चाहते हैं, बालों का पतला होना रोकना चाहते हैं, देन हमारी आज की बातचीत जरा ध्यान से सुनिएगा. और जश्न आजादी भी मनाया जा रहा है, भारत और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेज आ रहे हैं, तो एक स्पेशल ऑफर को भी बंडल किया जाएगा आज की बातचीत में. तो वेल जफर जी, आपका वेलकम है. हाउ आर यू?
11: जी वेलकम एवरीबॉडी, हाउ आर यू?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे.
11: जी जी, इट्स अ प्लेजर टू मी. एक्चुअली पीपल रिमाइंडेड मी फॉर द जश्न आजादी.
1: हां,
11: दे वांटेड समथिंग स्पेशल, तो मैंने कहा आपके जरिए इसको अनाउंस कर दिया ही जाए. 15 अगस्त तक हम आपको क्या देने वाले हैं. ठीक है,
1: जरूर
11: ये बता दीजिएगा. बता दूं
1: आप? जरूर. उससे पहले ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम सस्पेंस रखते हैं जफर जी. पहले हमारे लिसनर्स को ये बताएं, क्योंकि नए नए लिसनर्स जुड़ते हैं, कि किस तरह का प्रोडक्ट है और कैसे इसको अप्लाई करना है, कितनी बार अप्लाई करना है और क्या एज होनी चाहिए, क्या सारी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल पहले बता देते हैं.
11: मैं बता देता हूँ, डिटेल ये है. फ्रेश हेयर टॉनिक 6 ऑयल्स का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, डिफरेंट रेशियो में लिया जाता है.
1: अच्छा.
11: और डिफरेंट टेम्परेचर में इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं. उसको टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है कि उसकी एफिकेसी खराब ना हो.
1: अच्छा.
11: मसलन जो ऑलिव है उसको हम कोल्ड निकालते हैं और बाकी ऑयल्स को कुछ हीट देकर निकालते हैं, तो जब उसका काफी अर्क निकल आता है तो फिर हम उसको प्रिजर्व करके आपस में मिक्स करते हैं. और उसका मिक्स करने का भी एक स्पेशल तरीका है.
1: अच्छा.
11: जो हमारे फार्मासिस्ट के पास ही होता है. ये सब चीजें करने के बाद उसको हम प्रिजर्व करते हैं कि उसकी स्मेल वगैरह को खत्म कर दिया जाए.
1: अच्छा.
11: जब वो खत्म हो जाती है तो फिर आपको हम एक ऐसी प्रोडक्ट देते हैं जो आपके बालों को सूखने से रोकता है, डैंड्रफ को खत्म करता है, बालों को गिरने से खत्म करता है. अगर गुच्छे भी उतरते हों शैम्पू के बाद, 3 दिन में बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, 6-7 दिन में आपको उगते भी नजर आते हैं. हम तो कहते हैं कि आप पहले दिन भी पिक्चर ले लें और 1 हफ्ते के बाद भी पिक्चर ले लें.
1: ओ वाओ.
11: आपको नजर आ जाएगा कि फ्रेश एयर टॉनिक इस्तेमाल करने से आपके बालों का इलाज हो गया. देखे ना, आप सब काम कर लें, आप इतना इंतजाम कर लें, साड़ियां अच्छी हो जाए, मेकअप अच्छा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर बालों में थोड़ा सा कमी रह जाए या स्टिंग नजर आती हो या मांग चौड़ी हो रही हो तो फिर वो बात नहीं बनती.
1: क्या
11: बात है? ये है कि चीज को मुकम्मल करके दें और जो खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर उठाए, उसका ग्लो बने, ये हम आपकी उसमें मदद करते हैं.
1: वेरी नाइस.
11: और हम आपको एक और बात, कनाडा और यूएसए में फ्री शिपिंग देते हैं.
1: ओह वाओ, ग्रेट, वंडरफुल. तो अगर दोस्तों
11: हो गया,
1: आपके रिलेटिव्स अगर यूएस में हैं तो आप यहाँ से उनके लिए भी भेज सकते हैं.
11: हाँ जी, भेजते हैं जी.
1: क्या बात है. एक बार आपका नंबर जरूर अनाउंस कर दूं जफर साहब.
11: लेकिन पहले आप अनाउंस कर देना, फिर नंबर दीजिए.
1: अच्छा, नहीं पहले एक बार दे दूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लिसनर्स आपका नंबर सेव कर लें. 6475215159 फ्रेश हेयर टॉनिक लेकर आए हैं जफर मलिक जी. तो अब जफर जी, ये जो अब स्पेशल ऑफर है, बंडल ऑफर, उसको अनरैप करते हैं.
11: बात यह है, किसी वक्त किसी के मुंह से बात निकल गई थी
1: जी.
11: हम 3+1 लोगों को दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे.
1: अच्छा.
11: और हमारे एक सज्जन दोस्त रेडियो वाले के मुंह से निकला कि जी 3 बोतलें आपको 2+1 मिलेगी.
1: अच्छा.
11: 2 बोतल मंगाओ तो 3री फ्री मिल जाएगी.
1: वाओ.
11: तो वो लोगों ने कहा जी, उन्होंने तो कह दिया. अब चूंकि कह दिया तो हमने ऑनर कर दिया. अब डिमांड आ गई कि जनाब आगे 14 अगस्त और 15 अगस्त आ रही है, हमें कोई टाइम दें. आपने तो बंद कर दिया उसे. मैंने कहा कि चलो जी, हम 15 अगस्त तक इसको डिले करते हैं. उसके हम आपको 2+1 देंगे. आप फोन करें, आपको हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं कनाडा और
1: यूएसए
11: में. ठीक है जी. यानी $20, अगर $7 की एक बॉटल है
1: जी,
11: तो उसमें से 2+1 करो तो 40 की एक पड़ेगी आपको.
1: क्या बात है, दैट्स अमेजिंग.
11: अमेजिंग. तो अब ये आपको 15 तारीख तक हम दे रहे हैं.
1: बिल्कुल.
11: उसके बाद ये 15 की शाम को बंद हो जाएगा. ठीक है जी.
1: जी बिल्कुल.
11: तो हमारा नंबर दीजिए.
1: जरूर. तो अब ये नंबर आप लिख लीजिए दोस्तों, जफर मलिक जी से बात कर सकते हैं. 2 for 1 मिल रहा है, बाय 2 and get the 3rd 1 फ्री. 6475215159 6475215159. जफर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. ऑल द बेस्ट.
11: उनमें एक चीज बता दें, इसको बताएं 647-521-5159. अब समझ में आएगी लोगों
1: को. ओके, वंडरफुल. चलिए, मैंने कुछ काम आपके लिए भी छोड़ा था जफर जी. बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज अमेजिंग.
11: थैंक यू वेरी मच.
1: ग्रेट वर्क. ऑल द बेस्ट. ओके, टेक केयर.
11: सो नाइस
1: जी. तो वेल दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर आप सभी लोग ऑन CMR FM 101.3. एंड लुक हु डू वी हैव विद अस नाउ इन स्टूडियो. और आप हमें देख रहे हैं लाइव इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पर भी. अ बिग हेलो टू ऑल द व्यूअर्स. और हमारे साथ हैं राहुल कश्यप जी, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड #home से. और आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेप्शनली गुड अपॉर्चुनिटी. राहुल जी, यू केम इन स्टूडियो एंड यू ब्रॉट द सनशाइन.
12: Well, Shalini, देखो, अभी इतने हफ्तों से I was not able to either make it or, you know, or it was getting postponed. So finally, मैंने कहा चलो आज कर ही लेते, you know, I should come back. And because even the way the day is today, it's much better to, you know, just bring that sunshine out.
1: Kya baat hai, Rahul ji. Great to have you with us. Aur aap jo lekar aaye na projects, wo project itne mind-blowing hai ki bas mujhe lag raha hai ki jaldi se logo tak pahunchai dein kaun se projects hain, kyunki ye aisi jagah hai jahan par log bada intezaar karte hain ki kab kuch aayega, kyunki aapne I guess sare areas cover kar liye hain, aapne east, west, north, south sara cover kiya hua hai. Yahan par sabse pehle aapka magical number de dun apne listeners ko, apne viewers ko, 6479934844 6479934844. तो राहुल जी, आज ही आप एक लॉन्च से आए हैं यहाँ पर, आपने सीधे लैंड किया है, तो मैं चाहूंगी कि वो जो लॉन्च है उसके बारे में जरूर बताएं, कौन सा प्रोजेक्ट है.
12: जी एब्सोल्युटली. सो टुडे वी हैड अ एक्सक्लूसिव प्रीव्यू फॉर प्रोजेक्ट जो ब्रैम्पटन में आता है और वो वेस्ट एंड में है, राइट ऑन मिसिसागा रोड बिटवीन सैंडलवुड पार्कवे एंड बोवेर्ड.
1: Okay.
12: We know that pocket.
1: Great
12: Sandalwood
1: area.
12: Park है और अपना बोवेट के बीच में जहाँ मिसिसागा रोड है वहाँ पे ये पार्सल ऑफ लैंड है.
1: अच्छा.
12: और यहाँ पे ये नहीं कि कई कपल ऑफ हंड्रेड होम्स आने, देयर इज गोना बी अराउंड ऑलमोस्ट 8,000 होम्स इन द फ्यूचर दैट्स कमिंग हियर. इट्स अ मैसिव, यू नो, मास्टर प्लान कम्युनिटी जो आने वाली है. साथ ही साथ वी नो देयर इज अ कॉस्को कमिंग अप देयर, राइट, द 413 की जो एक्सटेंशन होने वाली है.
1: क्या बात है.
12: सो दिस इज गोना बिकम वन ऑफ दोस एरियाज दैट यू रियली वांट टू गेट इनटू, एंड दिस इज फेज वन, दिस इज गोना बी द स्टार्टिंग पॉइंट.
1: ओके.
12: अब यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है वो भी आज बता देते हैं, बिकॉज इस प्रोजेक्ट का जो लॉन्च है दैट इज हैपनिंग इन सेप्टेम्बर.
1: अच्छा.
12: सो सेप्टेम्बर 16 को उसका लॉन्च होने वाला है, बट वी आर इन ऑगस्ट
1: एंड
12: अ मंथ बिफोर वी ऑलरेडी हैव द डिटेल्स,
1: सो आई
12: कैन, वी कैन शेयर दैट विद आवर क्लाइंट्स.
1: अच्छा, दैट्स ग्रेट.
12: सो बेसिकली यहाँ पे टाउन होम्स और डिटैच होम्स आने वाले हैं. टाउन होम्स के अंदर भी काफी वेरिएशन है. यू हैव डबल कार गैराज, बैक टू बैक टाउन होम्स. यू हैव ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन होम्स.
1: ठीक है.
12: यू हैव डुअल फ्रंटेज टाउन होम्स.
1: वाओ.
12: टाउन होम जहाँ पे आपको इन लॉ स्वीट मिल सकता है मेन लेवल के ऊपर. सो वी ऑल नो, यू नो, इफ यू आर अ लार्ज फैमिली, यू आर पेरेंट्स, यू नो, समबडी दैट लिव्स विद यू, एंड ऑब्वियसली यू नो इट्स थ्री बेडरूम अपस्टेयर्स, बट पीपल प्रेफर समथिंग ऑन द लोअर फ्लोर,
1: बिल्कुल,
12: ताकि आपको सीढ़ियां ना चढ़नी.
1: सही बात है, मेन.
12: सो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल इन द टाउन हाउस, एंड सम ऑफ देम कैन गो इंक्लूड इवन अ फिनिश्ड बेसमेंट विद फाइव बेडरूम्स.
1: Oh my God, in town homes,
12: in a town house,
1: 5 bedrooms town homes में दिलवा सकते हैं सिर्फ राहुल कश्यप जी, 6479934844. और हम बात कर रहे हैं हार्ट ऑफ ब्रैम्पटन में, बड़ा एक्सेप्शनली गुड एरिया है.
12: जी बिल्कुल. और साथ ही साथ यहाँ पे अगेन इट्स नॉट जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, यू हैव लाइक आई सेड मल्टी फैमिलीज, यू नो, यू हैव समबडी हु वांट्स टू ईदर डाउनसाइज और अपसाइज, वो ऑप्शंस हैं आपके पास. एंड इवन फॉर द डिटैच होम्स जो आने वाले हैं, दैट्स गोना बी 33-foot लॉट्स एंड 36-foot लॉट्स. ऑल ऑफ देम आर डबल कार गैराज.
1: वाओ.
12: राइट. सो अगेन दिस यूनिट, दिस मास्टर प्लान कम्युनिटी इज गोना बी केटरिंग टू एवरीवन.
1: क्या बात है.
12: लॉन्च इसका 16 सितंबर को होने वाला है.
1: सो
12: गेट रेडी गाइस, जस्ट अबाउट अ मंथ आउट. राइट. प्लस we're going to have day one access. All of our bus already draft floor plans aa chuke hain. We can show you what these floor plans are going to look like. So you can get in touch with us, our team right away, and get all that information, because we want to make sure that you get your unit on day one in this particular project.
1: Very nice.
12: Project ka naam hai Cornerstone. Builder hai Premont Homes. Go do your research, guys. जो इस साइट का लोकेशन भी है वो भी मैं बता सकता हूँ. 10344, so 10344, Mississauga Road is the site address.
1: अच्छा.
12: Go drive there, have a look at it. It's right between your Sandalwood Parkway and Beauverde.
1: Okay.
12: You cannot miss this location. It's one of the prime locations over there.
1: Wow.
12: और get ready for it. That's all I'm going to tell.
1: Very
12: Brampton
1: nice.
12: Needs to get ready for this site. Pricing jo hone wali is going to be in the 600 range.
1: Oh,
12: that's the starting
1: great.
12: Price point of, you know, of these townhomes. So amazing, affordable townhomes.
1: Wow.
12: Right?
1: Very nice.
12: Brampton, freehold, I mean, you can't really go wrong.
1: Not at all. आपने ब्रैम्पटन कवर कर लिया और ब्रैम्पटन का जो एरिया है वो भी बड़ा अच्छा एरिया आपने बताया है, हाई एंड एरिया है. फिर आपने टाउन होम्स बताए जिसमें कॉस्ट अपने आप ही अफोर्डेबिलिटी में आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 600s. फिर आपने बता दिया इसमें 5 bedrooms तब के ऑप्शन मिल रहे हैं. इसके बाद आपने जो
12: with
1: है
12: मेन बेसमेंट
1: विद फिनिश बेसमेंट ओके है ना, और इसके बाद अब ये सब टाउन होम में मिलेगा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था. और मेन फ्लोर पर भी आपने बेडरूम का ऑप्शन दे दिया, इन लॉ स्वीट का ऑप्शन दे दिया,
12: फुल वॉशरूम. दैट्स सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इवन बिल्डर्स दे अंडरस्टैंड आप कौन सी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहां की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कमिंग अप विद दीस न्यू यूनिक फ्लोर प्लान्स, बिकॉज पहले वो देखने को नहीं मिलते थे और जगह भी नहीं होती. सो अगेन दीज आर नॉट गोना बी योर स्मॉल टाउन होम्स, दीज आर गोना बी डीसेंट साइज होम्स.
1: अमेजिंग
12: प्राइस पॉइंट इज वेरी अफोर्डेबल स्टार्टिंग इन द 600,000 रेंज. अगेन यू वांट बैक टू बैक विद डबल कार गैराज वो आपको मिलने वाले हैं. यू वांट ट्रेडिशनल टाउन हाउस वो आपको ऑप्शन है.
1: वेरी नाइस.
12: डुअल फ्रंटेज के आपके पास ऑप्शन है. दैट मीन्स यू हैव एंट्री फ्रॉम टू साइड.
1: दिस इज रियली नाइस. दिस इज एक्सेप्शनली
12: गुड. सो इफ यू आर इवन रेंटिंग आउट
1: या
12: you have another entrance for your tenants.
1: Very
12: so you don't
1: nice.
12: Have to worry about it.
1: Okay.
12: With detached homes, like I said, 33 footers, 36 footers, mm-hmm. double car garage on all of them.
1: Okay.
12: They range over up to 3,000 square feet plus.
1: Great.
12: So again, there's so much available, yeah. right? And we have all the details. Mm-hmm. All you got to do is give us a call. We'll send you the floor plans. We'll get you in our list mm-hmm. and we'll make sure that on September 16th, when the launch happens, you are first one to book the lot of your choice.
1: Wonderful. And Rahul ji, kya isme HST rebate ka bhi milega advantage?
12: That's right. So the pricing is going to be coming with excluding HST. So the builder is going to take care of it.
1: Achha.
12: You don't have to worry about it. Okay. That's why the price is going to be so attractive.
1: That's amazing.
12: Right?
1: Yeah.
12: And again, the deposit structure, we're going to find out very soon, mm-hmm. But it's going to be extended.
1: Okay.
12: And, just like I said, Brampton needs to get ready for something like this.
1: That's great. So number yahan par note kar lijiye, Rahul Kashyap ji ka 647-993-4844 647-993-4844. Aur baat ho rahi hai Brampton mein टाउन होम्स और उसके साथ साथ डिटैच होम्स भी अवेलेबल हैं आपके लिए. तैयार हो जाइए, गियर अप हो जाइए और HST रिबेट के साथ जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, उसमें तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग. इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हैशटैग होम्स नजर आता है आपको, चाहे रीसेल हो चाहे हो प्री कंस्ट्रक्शन. सो 647-993-4844. राहुल जी, कौन सी हमारे पास आज दूसरी अपॉर्चुनिटी?
12: सो वी आर गोना स्टे इन ब्रैम्पटन. ये तो अभी जो कॉर्नरस्टोन आने वाले हैं प्रीमाउंट के, दैट्स कमिंग अप इन सितंबर.
1: ठीक है.
12: बट अगस्त में नेक्स्ट वीक देयर इज अ लॉन्च हैपनिंग.
1: ओके.
12: एंड दिस इज हैपनिंग एट हेरिटेज रोड एंड स्टील्स एवेन्यू वेस्ट.
1: ओके.
12: ब्रैम्पटन अगेन, राइट? हाई, वेरी हाई एंड नेबरहुड,
1: राइट?
12: वहां पे 59 लॉट्स आने वाले हैं सर.
1: ओके.
12: ओनली 59 लॉट्स. और ये होंगे 38 फुटर्स एंड 41 फुटर्स.
1: अच्छा.
12: विद स्टैंडर्ड टू एक्स्ट्रा डीप लॉट्स.
1: क्या बात, ये तो बुटीक एरिया हो गया पूरी तरह से.
12: और आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट होने वाली है, रिमेंबर दीज आर 38 फुटर लॉट्स, राइट? स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट इज 1,099,000.
1: अच्छा, ठीक है,
12: राइट? वहां पे जो रीसेल अभी हुई है, the similar kind of home, which is a 35 footer home.
1: ठीक है.
12: ये 38 foot की lots हैं, वो 35 foot की frontage का lot है. वो अभी recently बिका in the last 90 days में average जो है 1.3 million की.
1: Wow.
12: So now you're below the resale market.
1: Amazing.
12: In that neighborhood.
1: Wow.
12: And those are older homes.
1: क्या बात है.
12: So you have to keep in mind. स्टैंडर्ड डेप लॉट्स हैं वो 35 फुटर फ्रंटेज एवरेज है. ये 38 एंड 41 फुटर्स के होंगे, स्टार्टिंग एट जस्ट ओवर मिलियन, राइट? प्लस यू हैव एक्स्ट्रा डीप लॉट्स अवेलेबल. यू हैव स्टैंडर्ड लॉट्स एज वेल बट एक्स्ट्रा डीप लॉट्स एज वेल. ऑन टॉप ऑफ दैट, फुल टियर एंड वारंटी मिलने वाली है, अपग्रेडेड फिनिशेस मिलने वाले हैं. The neighborhood has older homes right now. So you don't have the tear and warranty. Mm-hmm. You don't have as good upgrades as possible. So keep that in mind. 1.3 million ki average versus just over a million.
1: Amazing. Beautiful.
12: Right? Does that make sense for you?
1: Absolutely.
12: You have to decide that.
1: It does.
12: And again, Heritage Road or Steels ka ye neighborhood hai.
1: Bilkul.
12: Wahan pe ye launch hone wala hai iska. And next week iska launch hai.
1: Theek hai.
12: We have all the details already.
1: Very
12: in the next
1: nice.
12: Few coming days.
1: Mm-hmm.
12: All we got to do is our listeners and clients got to get in touch with us.
1: Yeah.
12: We'll share all the information.
1: Bilkul.
12: And we will make sure day one we booked a lot of your choice.
1: क्या बात है. तो आपको दोस्तों अगर अफोर्डेबल नेबरहुड चाहिए तो वो पहले वाली जो ऑप्शन बताई थी राहुल जी ने, लेकिन कभी कभी हमारी चॉइसेस होती हैं जरा अलग हटके. तो अगर जरा अलग हटके आपकी चॉइस है तो वहां पर आप इस वाले प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकते हैं. सो लाइक आई सेड बिफोर, ही हैज समथिंग फॉर एवरीवन. राहुल जी, तो आप लोग बात जरूर कीजिएगा हैशटैग होम्स में 647-993-4844 और जिस भी एरिया में आपकी नजर पड़ती है हैशटैग होम्स की तरफ से आपको मिलते हैं एक से बढ़कर एक ऑफर 647-993-4844. इसके अलावा राहुल जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी, कुछ बड़े अच्छी इन्वेंटोरी भी आपके पास अवेलेबल थी अलग अलग एरियाज में, जैसे किसी को चाहिए ईस्ट एंड में या किसी को चाहिए सिटी से बाहर. तो क्या कुछ इस तरह की इन्वेंटोरी अवेलेबल है जहां पर लोग कुछ रेडी टू मूव इन में चले जाएं या कुछ इस तरह से?
12: जी, एब्सोल्युटली. वी स्टिल हैव सम ग्रेट ऑप्शंस अवेलेबल मिसिसागा में.
1: ठीक है.
12: मूव इन रेडी, टू डिफरेंट लोकेशंस हैं, टू डिफरेंट साइट्स हैं, ब्रांड न्यू.
1: अच्छा.
12: सो उस पे एचएसटी रीबेट अवेलेबल है. वो प्राइसिंग आपकी शुरू हो रही है फ्रॉम जस्ट लो 300,000 से.
1: ओह नाइस.
12: सो इन मिसिसागा लो 300,000 फॉर वन बेडरूम्स, दिस प्राइस वाज ऑन द हर्डल.
1: ओनली यू कैन डू दैट.
12: क्योंकि कुछ साल पहले यही चीज आपकी 5.5 लाख के ऊपर बिकती थी, तो अब वो प्राइस भी चेंज हो गया, सो यू लुकिंग एट ऑलमोस्ट लाइक ओवर 150,000 डिस्काउंट, यू नो, विद एचएसटी रीबेट एंड एवरीथिंग कमिंग इनटू प्ले, आई थिंक यू जस्ट कैन गो रॉन्ग विद समथिंग
1: नॉट एट ऑल.
12: अगर आप मिसेस सागा में लेना चाहते हैं, साथ ही साथ पिकमिंग में वी जस्ट हैव अ लिस्टिंग दैट वी जस्ट डिड, इट्स 1+10 ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फुट विद पार्किंग. So this unit is just a couple of years old, still under Terrion warranty. And the price of that unit, remember, Pickering, you're literally 2 minutes of drive to the Pickering GO station.
1: Achha.
12: You're 2 minutes drive to getting on the 401.
1: Uh-huh.
12: Right, so very prime location.
1: Yeah.
12: Do saal, dhai saal purani building hai, so you're still within the Terrion phase. Uska jo price humne rakha hai, and that's enough for multiple.
1: Yes.
12: This is our sale price.
1: Okay.
12: 439,000.
1: 439,000. Pickering ki baat kar rahe hain. Walking distance to?
12: Walking distance
1: Pickering Town Center.
12: So yes, and also GO Station. Pickering GO Station. You can drive to, you know, GO Station, a couple of minute drive. Like, it's amazing. It's a phenomenal. I personally can't believe that's the price we're putting it on.
1: That's right. Because
12: jab ye biki hai unit, to ye obviously 5.5-6 lakh ke aaspaas biki hai
1: pehle. Sahi baat
12: hai. But obviously we know where the market is, so we have to come in strong in that sense. So a 1+10 with parking in Pickering for 439,000. That means if you're a first time home buyer and you just want to put 5% down, that's almost just $22,000.
1: Bilkul.
12: And you can get this unit. 20,000 mein aapke paas aapka unit aa jayega.
1: Kya baat
12: hai. It's a great starter option. Even as an investor, you can get into it because, again, the rental is very strong in Pickering. We all know that. So, yeah, take advantage of something
1: Amazing.
12: Like this. So, we have options available. Aapko move-in chahiye. We have townhomes as well. That's move-in ready. So, you know, whether East End, West End, GTA, we have it. And we also, like I mentioned, we have an exclusive deal.
1: Okay.
12: Jo hum Toronto mein leke aate hain.
1: Yehi mera aapse sawal tha downtown ki taraf.
12: Ji, bilkul. So, we have locked in a very special deal for Toronto. You are just, I would say, 10 minutes away from downtown core.
1: Achha.
12: 10 minute ki duri hai.
1: Beautiful.
12: Aur wahan pe ye project aane wala hai jiski closing hai 2030 ki.
1: Theek hai.
12: So 2030, we have 4 years.
1: Achha.
12: Ab wahan pe jo pricing humne lock in kari hai, that's one of the best price per square foot. You have the HST rebate availability on that. But the best thing we've locked in, and because we had to really go back to the builder and give them an example.
1: That's right.
12: Everybody complains about one thing.
1: Yes.
12: Occupancy fees.
1: Right?
12: Bahut mehengi hai. Interest bahut high hota hai because you have a, you know, good chunk of money that you still haven't paid down on. So uske wajah se jo occupancy fees hoti hai aapki jab pay karte hain until you get the final closing, that's like a phantom rent.
1: Wo
12: sirf aap rent pay karte hain builder ko,
1: na
12: wo aapki capital ki taraf ja raha hai as a down payment, neither is going towards your principal. So then what happened in that case, right? We're losing. On top of that, usko offset karne ke liye aap rent karenge unit ko.
1: Sahi
12: baat hai. We all also know ki aajkal rental market is pretty down.
1: Bilkul.
12: Right? So there's negative cash flow.
1: Yeah.
12: Plus, when we come for closing cost, and we have seen it, personally I've experienced it, closing costs range anywhere between $30,000 to $60,000.
1: 100%.
12: So keeping everything in mind, it becomes very, very expensive nowadays.
1: To afford,
12: right?
1: Yeah.
12: So now we sat down, we had a very transparent conversation. I said, listen, you have to bring out something very special. Otherwise, why would somebody buy?
1: Bilkul sahi baat.
12: That's a simple question, right? Why is somebody going to buy a condo? So now, best price per square foot, 20-30 ki closing hai, extended deposit structure until occupancy.
1: Wow.
12: Saath hi saath, we're getting you no occupancy fees.
1: No occupancy fee at all?
12: Zero occupancy
1: Very
12: fees.
1: Nice.
12: And
1: Amazing.
12: This is going to be in your contract.
1: Kya baat hai?
12: Plus, that's not it. Uh-huh. Zero development charges.
1: Okay.
12: So we also know Toronto, very high development charges fees,
1: right?
12: That's zero as well.
1: Okay.
12: Plus your closing cost. We know it. I know it personally. When I was in Toronto, I paid almost $56,000 in closing.
1: It's total rip-off.
12: We have it capped at $5,000.
1: Beautiful.
12: So closing cost capped at $5,000. You have zero occupancy fees, zero levy charges, the best price per square foot. You have HST rebate eligibility available to yourself. I mean, I can't put it better than this. Right?
1: Not at all. कोई गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं है ना करने की.
12: But wait, let me add one more thing.
1: अच्छा.
12: Every buyer will receive the 100-inch TV as well.
1: Oh, I was about to say that. Okay.
12: I have to give it. I have to do the 100-inch TV. I love it. I think it's everybody should have one. So that is just something, a bonus that we're doing it from my end. And, I've had clients who have taken advantage of it and they love it. They tell me, it's a big difference because when they go to someone else's house and they still have a decent sized screen, but it's not the same. amazing feeling.
1: Yes.
12: I said, yeah, you have a mini theater. You have a mini theater at your house, right? And I said, please call me over. I'll come with the popcorn for you.
1: तो चलिए पॉपकॉर्न बेबी ऑन टॉप आपको मिलेंगे, टीवी के साथ पॉपकॉर्न का बंडल मिल रहा है. और ये तो आपने इतना अच्छा बताया कि इतनी सारी फीस आपने वेव ऑफ कर दी है और सारा कुछ अफोर्डेबिलिटी में आप ले आए हैं. तो दोस्तों हमने डिस्कस किया आज मिसिसागा में 300s में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ब्रैम्पटन में 600s में अवेलेबल है, और हाई एंड एरिया की बात करें तो $1 million की रेंज में आपको एक्सेप्शनली गुड नेबरहुड मिल रहा है इन द हार्ट ऑफ ब्रैम्पटन. और ब्रैम्पटन में भी राहुल जी ने बताए टाउन होम्स और डिटैच्ड होम्स, जिसमें डिटैच्ड होम्स में भी 36 feet के लॉट हैं, 38 feet के लॉट हैं, 40 feet के लॉट हैं, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. पिकरिंग टाउन सेंटर के पास जो है मिड 400s में अपॉर्चुनिटी है, विच इज वॉकिंग डिस्टेंस टू पिकरिंग टाउन सेंटर. और इसके बाद डाउनटाउन से सिर्फ 10 minutes की दूरी पर ये जो है ना जैकपॉट, दिस इज लिटरली वेटिंग फॉर यू. तो फॉर ऑल दीज एंड मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज कॉल कीजिएगा राहुल जी को 647-993-4844. राहुल जी, एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू ऐड बिफोर यू गो?
12: शान जी, द ओनली थिंग आई विल से इज लाइक वी आर स्टिल वर्किंग ऑन मोर डील्स. देयर इज लॉट मोर, आई कैन ओनली कवर सो मच इन वन डे, बट यस वी डू हैव अ लॉट अवेलेबल, वी हैव लॉट कमिंग इन द पाइपलाइन. आई काइंड ऑफ हैव गिवन अ हैशटैग फॉर द मंथ.

घर के सामने इस फिल्म से लिया गया ये बहुत प्यारा सा गाना दिल का भंवर करे पुकार। तो भई अगर आपके दिल के अंदर भी कोई किसी को पुकार रहा है और वो आपको आप तक नहीं पहुंच पा रहा वो इंसान, तो इसीलिए हमने ही पहुंचा दिया है वो नाम आप तक जो आपकी मदद कर सकती हैं आपके दिल के करीब उस इंसान को लाने में जिसकी जोड़ी ऊपर वाले ने बना कर भेजा है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक जीवन साथी तो कहते

0: दोस्तों कि शादियां सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो दिलों का मिलन होता है। तो कोई ऐसा अगर आपको चाहिए जो बैक होम की परंपरा को भी मेंटेन करे, संस्कारों को भी साथ लेकर चले, एट द सेम टाइम वो कनेडियन लाइफस्टाइल में भी एडजस्ट हो जाए, तो बड़े खूबसूरत सोच के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरवा, जो matchfinders.ca के माध्यम से लोगों को उनके ड्रीम लाइफ पार्टनर तक मिलवाने का काम कर रही हैं। और यहां पर हम उनका वेलकम करते हैं। सबसे पहले नंबर बता दूं, 6477017973, matchfinders.ca इज द वेबसाइट टू विजिट। डॉक्टर फरवा, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, हाउ आर यू?
1: All good. Thank you so much, Shalini. Thank you for having me.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर फरवा। तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि मैच फाइंडर्स की मदद से आप कैसे उनके लिए मैच फाइंड कर सकती हैं।
1: जी शालिनी, हमारे पास बहुत अच्छा एक पूल इकट्ठा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और हम लोग हर तरह से आपको पर्सनली केटर कर रहे हैं, आपकी सारी नीड्स को देखते हुए, आपकी प्रेफरेंसेस को देखते हुए आपको कर रहे हैं। और इतने सारे लोग हैं कि मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ लोगों को अंदर से पिन पॉइंट करके बताऊं कि मेरे पास एक डॉक्टर भी है इंडिया से।
0: अच्छा।
1: जो बहुत ही 32 इयर्स ओल्ड और बहुत अच्छा लड़का है।
0: ओ, वाओ।
1: और हम उनके लिए आजकल ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह नाम ना लूं और मैं सबको बस ये कहूं कि मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते इस टाइम मौजूद हैं, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, ताकि हम लोग आपको बहुत अच्छे से पार्टनर के साथ जोड़ सकें।
0: क्या बात है डॉक्टर फरवा, दैट इज अमेजिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर द कम्युनिटी।
1: थैंक यू।
0: जी यहाँ पर नंबर एक बार फिर से, 6477017973। तो डॉक्टर फरवा, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे अपने बच्ची के लिए या बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हो, या खुद अगर लोग अपने लिए ही रिश्ता देख रहे हो, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका?
1: जी शालिनी, हम लोग फोन नंबर मेरा है, मैं पर्सनली खुद अटेंड करती हूँ और मैं उनसे थोड़ा बहुत पूछती हूँ पहले, और फिर मेरे पास एक परफॉर्मा है जो उन्होंने फिल करना होता है, ताकि हमें सारी डिटेल में उनकी एक एक प्रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे ये कर रहे हैं। आप डेटिंग एप्स पे जाएं तो ट्रस्ट मी शालिनी, वहाँ पे 99% लोग सीरियस नहीं होते रिलेशनशिप के बारे में।
0: सही बात है।
1: They are out there for dating, और आप उनसे उस तरह से मैच नहीं कर सकते। आप उनको 4-5 times मीटिंग्स करेंगे, फिर आपको समझ लगेगी कि वो इनकी प्रेफरेंसेस ये हैं, इनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स ये हैं। मैं पहले दिन आपके साथ बंदा जो मैच करूंगी या जो भी स्पाउस मैच करने की कोशिश करूंगी, मैं बहुत सारी बेसिक लेवल की प्रेफरेंसेज ऑलरेडी देख के करूंगी। सो हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन व्हेन यू मीट देम, और आपको पता है कि बेसिकली हम दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं, हम इसलिए मिले हैं। और पूरी प्राइवेसी के साथ और सीरियस लोग, बड़ी बात तो ये है ना कि दोनों साइड सीरियस होती हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए।
0: सही बात है।
1: आपको उन्हें जांचना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि ये सीरियस हैं, ये इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं।
0: जी।
1: तो प्लीज डेटिंग ऐप्स पे मैं लोगों को कहूंगी कि सीरियस लोगों को डेटिंग ऐप्स पे ढूंढना बंद करें, और ऐसे लोगों के पास आएं जो प्रोफेशनली आपको हर तरीके से उनका बैकग्राउंड चेक करके, उनका कम्युनिटी चेक करके, उनका लीगल चीजें चेक करके, और उनकी इवन जो उनकी फाइनेंशियल चीजें हैं वो भी चेक करके ऑलरेडी दें कि ये सेफ कैंडिडेट है और इनकी हर बैकग्राउंड चेक हो चुकी है और ये सीरियस है।
0: वेरी नाइस डॉक्टर फरवा। यहाँ पर नंबर एक बार फिर से, 6477017973। दोस्तों विजिट जरूर कीजिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी खूबसूरत वेबसाइट है matchfinders.ca। वहाँ पर सारी कम्युनिटीज को बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है, आपकी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, रिस्पेक्ट और केयर के साथ आपको ट्रीट किया जाता है। तो फरवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कुछ क्या कहना चाहेंगे?
1: इस टाइम इंडियन कम्युनिटी से बहुत सारे लोग हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं मैच करना चाह रही हूं, तो डू कांटेक्ट मी, क्योंकि इस टाइम मेरे पास पूल में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ट्रस्ट मी। क्योंकि रिश्ते आते हैं फिर वो मैचअप हो जाते हैं फिर चले जाते हैं, तो सारा टाइम सेम पूल नहीं होता, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड कि इस टाइम मेरे पास पूल में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं।
0: जी, अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों बस ज्यादा देरी ना करें, क्योंकि अच्छे रिश्ते हाथ से निकलने नहीं चाहिए। और matchfinders.ca 6477017973। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरवा, फिर आपसे जुड़ेंगे और ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।
1: थैंक यू सो मच, बाय।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
4: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
3: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
9: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
10: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
9: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन्स और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
10: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
9: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
11: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

0: ਕੰਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
2: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕੰਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
3: Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chinguzi aur Wanless ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100.
4: आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए हर घड़ी आपका विचार और हमारा अंदाज शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी
5: की रेलगाड़ी पर आप लोगों के विचारों की हम कद्र करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो सेगमेंट है आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में तो ये पूरे ओंटेरियो में सर्विसेज देते हैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है और खुद ही इनका अपना इंस्टॉलेशन है नो मिडलमैन नो कॉम्प्रोमाइज फिर यहां पर आपको स्टाइल लुक्स क्वालिटी सिक्योरिटी ड्यूरेबिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ मिलता है अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो एक ग्रोइंग टीम का हिस्सा बन सकते हैं दे हैव फ्रेंचाइज ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल नंबर है 416-732-3600 और देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं टोरंटो से बॉम्बे राउंड ट्रिप लगा है सितंबर टू अक्टूबर या नवंबर 1390 में दो बैग्स के साथ नाउ टोरंटो से दिल्ली अगले साल फरवरी से मार्च तक आप जा सकते हैं राउंड ट्रिप 1520 में टू बैग्स के साथ दिल्ली से टोरंटो आना चाहें तो मिड सितंबर से अक्टूबर वन वे 900 में लगा हुआ है दो बैग्स के साथ नाउ दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर टू फरवरी मार्च राउंड ट्रिप अगर आपको लंबा जाना हो तो 1390 में अब टोरंटो से दिल्ली अक्टूबर से नवंबर राउंड ट्रिप लगा है दो बैग्स के साथ $1,490 नाउ लिमिटेड सीट्स हैं देओल ट्रैवल की दो लोकेशन सिटोबिको एंड ब्रैम्पटन 905-588-5100 एंड 905-588-4200 588-5100 एंड 588-4200 और दोस्तों मस्ती की रेल गाड़ी पर आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कोशिशों को पसंद करने के लिए हमारे गानों को पसंद करने के लिए और हमारे सेगमेंट्स को पसंद करने के लिए एक बार फिर से आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे शो के बाद डायरेक्ट नंबर 416-569-7812 416-569-7812 कभी कहते हैं कि प्यार इजहार नहीं मांगता बस एक ऐसा एहसास चाहता है जहां दो दिल बगैर कुछ कहे एक दूसरे के लिए दुआ बन जाएं सिर्फ हाथ जोड़ने से सजते नहीं होते दोस्तों किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी इबादत है और जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर धड़कन हर दुआ हर सांस भी एक सजदा बन जाती है पेश करते हैं एक ऐसा नगमा जो प्यार एहसास और इबादत को एक साथ पिरो देता है
6: क्या मोड़ आया है कहानी में वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में
7: रब लब्बा पापियानू
5: चलिए दोस्तों शालिनी को इजाजत दें शो के बाद नंबर 416-569-7812 416-569-7812 कल होगी मुलाकात एक बार फिर से मस्ती की रेलगाड़ी पर गुड आफ्टरनून

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The views, opinions, and information shared by our hosts, guests, and callers are their own and are intended for general information and entertainment purposes only. While we strive to present accurate and reliable information, listeners should seek independent professional advice before making any financial, legal, medical, or other important decisions. Advertisements and sponsored messages broadcast on Jam 101.3 are paid commercial content. Unless expressly stated, Jam 101.3 does not independently verify, endorse, guarantee, or accept responsibility for any claims, representations, products, services, or benefits advertised by sponsors or advertisers. Listeners are encouraged to conduct their own due diligence before making any purchase or decision. Thank you for listening to Jam 101.3. Zara Suniye To.
2: ये है जैम ऑन सीएमआर 101.3 जतिन और अमिताभ के साथ हो जाइए टेंशन फ्री फ्री फ्री फ्री फ्री हाँ जी मित्र भाइयों ये है जैम 101.3 जतिन और अमिताभ के संग आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली गम के समंदर में ऐसे डूबे कि हंसी आज तक नहीं मिली सोचा था बदलेंगे किस्मत की लकीरें मेहनत के दम पर सोचा था बदलेंगे किस्मत की लकीरें मेहनत के दम पर कब खाली जेब को पैसे और इस दिल को कोई हसीना आज तक नहीं मिली हाँ जी बिंदर भाइयों आज से पहले आज से ज्यादा आइए लिए चलते हैं आपको ये खूबसूरत नगमे की ओर फिल्म का नाम चिचूर आवाज यसुदास की म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन और गाने के बोल भी रविंद्र जैन ये है जैम 101.3

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111 अस्थमा और एलर्जी त्वचा की बीमारियां कमर या घुटनों में दर्द या फिर अर्थराइटिस बालों की समस्याएं गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं लेडीज प्रॉब्लम्स वेट लॉस और सोराइसिस आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज ब्रैम्पटन और स्कारब्रो 6473278111 6473278111
4: अगर बॉलीवुड आपके दिल में है और क्रिकेट आपके खून में तो ये प्रोग्राम है आपके लिए गेट द लेटेस्ट कम्युनिटी अपडेट्स फिल्मी मसाला एंड क्रिकेट का तड़का हिंदी इंग्लिश और उर्दू के अपने प्यारे अंदाज में मजा भी मालूमात भी जैम 101.3 जरा सुनिए तो
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
9: और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी
10: अच्छा जी तो ठीक है इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे
11: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
12: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर डायबिटीज हार्ट अटैक बाईपास सर्जरी लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
13: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. जो specialized है in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. जहां मिलेंगे best of South Asian cuisine. Miss out मत करना उनका famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. अगर food आपको करता है excite, तो जरूर पहुंचे Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call करें at 905-239-4077 या visit करें mumbaigrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
4: घर में हिंदी उर्दू या पंजाबी ऑफिस में इंग्लिश और दोस्तों के साथ कुछ भी यही तो है हमारी ब्यूटीफुल साउथ एशियन स्टोरी इसी कनेक्शन को सेलिब्रेट करता है जैम 101.3 विद कम्युनिटी न्यूज बॉलीवुड क्रिकेट एंड कॉन्वर्सेशंस दैट फील क्लोज टू होम हर वीकडे 4 से 5 जैम 101.3 जरा सुनिए तो
3: बंदर भाइयों क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी गाड़ी का ऑयल खुद बदलना आपको हजारों डॉलर का चूना लगा सकता है इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है आइए हमारे साथ स्टूडियो में बंधु जुड़ रहे हैं बंधु क्या है मामला
14: सर, इस खबर ने सबको चौंका दिया है। सदबरी में रहने वाली एक महिला ने 2024 की सुबारू आउटबैक खरीदी और वो पिछले दो साल से अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल खुद बदल रही थी, लेकिन जब गाड़ी का इंजन खराब हुआ और वो डीलरशिप पहुंची तो उन्होंने वारंटी क्लेम देने से हाथ धो दिए। यानी कि डीलरशिप ने कहा कि अब वारंटी क्लेम के अंदर आपकी गाड़ी नहीं आती है।
15: अरे वाह, मतलब खुद का काम करना गुनाह हो गया। डीलरशिप का क्या तर्क है ये बताए बंधु।
14: डीलरशिप का कहना है कि इंजन में स्लम बजम हो गया है, क्योंकि महिला ने खुद ऑयल बदला और ऑफिशियल रिकॉर्ड या रसीदें नहीं थी, इसलिए वारंटी खत्म। महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उसका कहना है कि उसे गाड़ियों की पूरी समझ है, लेकिन डीलरशिप सुनने के लिए तैयार नहीं है।
15: तो बंधु, इस बात से, ये इंसिडेंट से एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं?
14: सलाह ये दे रहे हैं कि गाड़ी वारंटी में है तो खुद डॉक्टर या मैकेनिक बनने की बिल्कुल कोशिश न करे, वरना $50 बचाने के चक्कर में हजारों डॉलर का नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बंधु आपका।
15: तो बिंदर भाइयों, बिल्कुल सही कहा, गाड़ी की वारंटी बचाओ और खुद मैकेनिक बनने से बचो। डीलरशिप में जब भी कोई पेपर साइन करो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा समझो, वरना यहां पर तो सम कंडीशंस ऑलवेज अप्लाइड। ये है जैम 101.3, हम है आपके दोस्त जतीन।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हो, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881. कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यानी आप इजीली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन. बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस. टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर, कॉल 9259294881 or visit kumartradessolutions.com.
4: इसके पीने से तगिया तुम्हें रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए.
5: Wow, mom, dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
6: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
5: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
7: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
8: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से. और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808.
9: कम्युनिटी की बातें, बॉलीवुड का साथ, क्रिकेट का जोश और खुशियों की बरसात, इंग्लिश अपडेट्स, हिंदी का रंग, उर्दू के अल्फाज और अपनों का साथ. 4 से 5 वीकडे ड्राइव को बनाइए ब्राइट. जैम 101.3 इज योर फील गुड राइड. जैम 101.3, जरा सुनिए तो.
10: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
11: संजीव. शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है. इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
12: Another Don clean with the Don Ducks.
13: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
14: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
13: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
14: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
13: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
14: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
13: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
12: Dawn Platinum, the better grease getter.
15: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर. हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं. हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है. अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं, तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111. अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर आर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस. आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रैम्पटन और स्कारब्रो, 647-327-8111, 647-327-8111.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: कम्युनिटी की बातें, बॉलीवुड का साथ, क्रिकेट का जोश और खुशियों की बरसात, इंग्लिश अपडेट्स, हिंदी का रंग, उर्दू के अल्फाज और अपनों का साथ, चार से पांच वीकडे ड्राइव को बनाइए ब्राइट। जैम 101.3 इज योर फील गुड राइड। जैम 101.3, जरा सुनिए तो।

0: वेलकम बैक। यू आर ट्यून्ड इनटू जैम 101.3। जरा सुनिए तो, और मैं हूं अमिताभ। घड़ी में बज रहे हैं करीबन 4:25, और अब वक्त हो चला है हमारे बहुत ही खास सेगमेंट रियल एस्टेट पर चर्चा का। और इस सेगमेंट की जान और शान जीटीएचए के मशहूर, भरोसेमंद और कई दशकों का तजुर्बा रखने वाले रियल एस्टेट एक्सपर्ट श्री पी के सबरवाल जी एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित हैं। चाहे रियल एस्टेट मार्केट की ताजा हलचल हो, प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो प्रोजेक्ट्स, रीसेल होम्स या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सबरवाल जी हर हफ्ते लेकर आते हैं प्रैक्टिकल इंसाइट्स और सीधा सटीक विश्लेषण हम सबके लिए। स्टूडियो की लाइंस अब खुल चुकी हैं, तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है, हमें कॉल कीजिए ऑन 416-593-0055, दैट्स 593-0055 पर, और सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछिए। सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तकरीबन 4:50 तक, तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। सबरवाल जी, जैम 101.3 पर आपका तहे दिल से स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी।
2: सबरवाल जी, सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते आए हैं, पहले तो रियल एस्टेट मार्केट की इस हफ्ते की सूरत हाल हमें दें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, एंड आपसे बेटर इनको हमारे लिसनर्स को कौन समझा सकता है।
1: ये ना एक ये रास्ता उबड़ खाबड़ रास्ता चल रहा है, मैं तो कहूंगा पिछले 2 साल से रियल एस्टेट का
2: जी।
1: ये अमिताभ जी पीछे से इको हो रही है, मेरी आवाज मुझे खुद वापस आ रही है।
2: आई विल फिक्स इट। Is it better now, Sabarwal ji?
1: Let me see. नहीं, exactly वही आवाज वापस मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। I can say, but it is very inconvenient.
2: Trying a different mic. Is it better for you now?
1: No, let me say something. No, exactly वही चल रहा है, लेकिन चलो let's keep on going. But it is, अगर आप स्टूडियो में कहते तो बाद में फिक्स करवाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी ये वाली।
2: अच्छा, आई विल टेक केयर ऑफ इट।
1: ठीक है
2: जी,
1: ओके। सुनाओ, ये रास्ता जो है रियल का बड़ा उबड़ खाबड़ चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और टिप्सी टॉर भी जिसको कहते हैं रास्ता है ये
2: जी।
1: और अभी 2-3 महीने ठीक होने के बाद अभी जुलाई में फिर ये डाटा खराब हो गया
2: जी।
1: फिर ये रिपेयर ट्रांजेक्शन डाउन हुई है 0.9%
2: जी।
1: और लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट कंडीशन थोड़ी टाइट होती नजर आ रही है, वो कैसे है वो बताता हूँ आपको
2: जी। जी,
1: जैसे सेल जीटीए की मैं बात करता हूँ, बाकी पूरे कनाडा की जरूरत है नहीं
2: जी।
1: सेल जो है वो 0.9% डाउन हुई है ईयर ओवर ईयर
2: जी,
1: तो क्लोज टू 6,000। न्यू लिस्टिंग्स इज ए गुड न्यूज नाउ, सेल डाउन हुई है इट्स नॉट गुड न्यूज, बट न्यू लिस्टिंग डाउन हुई है अप्रोक्सीमेटली 18%, 17.8%, विच इज ए गुड न्यूज।
2: ओके,
1: कि मार्केट में इन्वेंटरी लेवल कम हो रहा है, 14,400 समथिंग
2: जी।
1: एक्टिव लिस्टिंग जो है वो भी 12% कम हुई है ईयर ओवर ईयर, ये भी बड़ी अच्छी बात है
2: जी।
1: एवरेज प्राइस जो है वो तो मैंने आपको बताया है कि कम हुआ है 4. ईयर ओवर ईयर मानते हैं तो 4.5, अदरवाइज 0.9,
2: ओके
1: 1,003,000। लेकिन एक और गुड न्यूज ये है कि एवरेज डेज ऑन मार्केट
2: जी
1: वो भी बहुत कम हो गया, विच इज ऑल्सो गुड न्यूज, 32 डेज।
2: ओके,
1: और टैक्स दर की एवरेज जो है ईयर ओवर ईयर 5.1% नीचे आई है 1,291,000
2: जी,
1: और सेमी टैक्स 7.4% नीचे आया ईयर ओवर ईयर 964,000, टाउन होम 3.9% नीचे आया है ईयर ओवर ईयर 817,000 समथिंग
2: जी,
1: कॉन्डो अपार्टमेंट सबसे कम नीचे गिरे हैं 2.3% ईयर ओवर ईयर 636। यहां से ये अंदाजा लगता है
2: जी,
1: जो छोटी परचेजेज है, छोटी वैल्यूज वाले हैं, उनमें डिमांड ज्यादा है
2: राइट,
1: क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं गिरी, कम गिरी है। जैसे सेमी टैक्स की 7.4 गिरी है, डिटैच की 5.1 गिरी है
2: जी।
1: सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी कॉन्डो अपार्टमेंट में चल रही है, अफोर्डेबल है वो, दूसरा टाउन होम में चल रही है।
2: ओके,
1: ये आज की आपकी ताजा खबर
2: जी। तो ये तो काफी सारी अच्छी खबरें से हमने आज की शुरुआत की है, नहीं तो पिछले कई हफ्तों से थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज ही ज्यादा आ रही थी, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि अच्छी न्यूज ही बोलेंगे या बुरी न्यूज बोलेंगे। तो
1: मैं ये कहूंगा अमिताभ जी कि लोग जो है साइड लाइन से निकल के आ रहे हैं बीच में, वो कहते हैं कब तक रुकेंगे, 3 साल तो हो गए रुकते हुए हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए।
2: वेरी ट्रू,
1: क्योंकि टैरिफ तो चलता जाएगा, सुबह टू शाम को कुछ यूक्रेन वार न्यूज से आ चुकी है
2: जी,
1: और ये जो ईरान का है
2: जी,
1: हमूद का झगड़ा, कभी कहते हैं सीजदार हो गया, कभी कहते हैं बम्बारमेंट हो गई
2: जी,
1: तो लोग यूज तो हो चुके हैं मेरे ख्याल से
2: 100%,
1: और हमको साइड लाइन से बाहर निकल के आ रहे हैं
2: जी,
1: वो तो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है
2: जी। तो यहाँ पर मैं एक मिनट लेते हुए अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि हमारी चर्चा जारी है श्री पी के सबरवाल जी के साथ, तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो स्टूडियो की लाइंस खुल चुकी हैं और आप स्टूडियो पे कॉल करके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर एज यूजल 416-593-0055। सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे करीबन 4:50 तक, लेकिन आप लेट ना करें, प्लीज फोन उठाएं और कॉल करें अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न है। सबरवाल जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जॉब मार्केट रिपोर्ट जो आई थी दैट वाज अ लिटिल पॉजिटिव, तो आपके विचार क्या है उसके बारे में? सबरवाल जी, बिफोर यू आंसर, देयर इज अ कॉलर ऑन द लाइन, सो व्हाई डोंट वी गो डायरेक्टली टू द कॉलर इफ यू अलाउ मी। हेलो, यू आर लाइव ऑन जैम 101.3, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन।
3: हां जी, गुड आफ्टरनून पीके जी।
1: जी, थैंक यू।
3: मेरा नाम जय है।
1: जी जय, या
3: सर, हमारा एक टाउन हाउस हमने रेंट पे दिया हुआ है
1: जी,
3: तो एक साल हो गया, एक साल के ऊपर 2 महीने हो गए और अभी उनका रेंट नहीं आ रहा है।
1: रेंट आ नहीं रहा है?
3: या वो बोल रहे हैं कि उनका मेडिकल इश्यू है तो वो लेडी काम नहीं कर सकती है, उसमें कुछ डिसेबिलिटी।
1: आपसे कोई मतलब नहीं है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये मुझे बताइए कि आपको ये आपने किसी रियल्टर के थ्रू रेंट पे चाहा था कि आपका कोई और रीजन था?
3: नहीं, एजेंट से, रियल एस्टेट के एजेंट से रेंट पे चढ़ाया था।
1: तो वो एजेंट आपका क्या कहता है?
3: उन्होंने बोला है कि N4 फॉर्म आप दे दीजिए उनको।
1: वो तो है ही है, वो तो नोटिस ऑन योर टेनेंसी अर्ली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, इसका जो N4 होता है उसको कहते हैं नोटिस टू एंड योर टेनेंसी अर्ली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। पर आप क्यों दे रहे हैं? आपका रियल्टर आपकी हेल्प तो नहीं कर रहा?
3: नहीं, उन्होंने बोला कि N4 फॉर्म हमको भेजा है कि वो दे सकते हैं, क्योंकि जब रियल्टर ने उनसे पास से, उनका भी एजेंट था और हमारा भी एजेंट था, तो उस वक्त उनका बॉयफ्रेंड और वो खुद का सबका डॉक्यूमेंट दिया था, साइन किया है एग्रीमेंट में, लेकिन अभी हमको मालूम, हमने बोला कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने बॉयफ्रेंड को बोलो वो पे करे, बोलता है वो
1: नहीं, तो नहीं, नहीं, ये रीजन सब बंद कर दो। आपको कोई, जितना किसी के दुखों में घुसोगे उतना आप ज्यादा दुखी होते रहोगे। आपको सीधा मतलब है आपके रेंट से। N4 भी जो आपने देना है, अगर आप N4 ढंग से भर सकते हो तो भर लीजिए, नहीं तो आप मेरे को बाद में टेक्स्ट मैसेज डालिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी गोल्ड मेडलिस्ट पैरा लीगल का नंबर दूंगा और वो N4 के बाद वो टेक ओवर कर जाएगी। जितने दिन लेट करोगे उतना आपका रेंट आना मुश्किल होता जाएगा। रीजन ये है कि जो इंसान 1 महीना रेंट नहीं दे सकता वो 2 महीने का कैसे देगा, समझे मेरी बात? तो इसीलिए 6-4-7
3: उन्होंने हमारे साथ चीटिंग भी किया था कि जब हमको रेंट
1: बात की बात है, बस छोड़िए, अप टू 6-4-7-2-9-9-4-7-5-7 6-4-7-2-9-9-4-7-5-7 या टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम जय जरूर लिखिएगा, विदाउट नेम मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। तो मैं आपको पैरालीगल का नाम और नंबर दे दूंगा, वो हमारी इन हाउस पैरालीगल है, बहुत स्ट्रांग है, शी विल हेल्प यू। बिना पैरालीगल के मत जाना। पहला N4 तो आप दे सकते हो, उसके बाद क्या होगा उसके लिए पैरालीगल में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लटक जाओगे।
3: अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कैम्ब्रिज में, वो कर लेंगे कैम्ब्रिज का?
1: वो यार ओंटारियो में कहीं भी हो, पैरालीगल ने आपके घर थोड़ा जाना है, वो तो लीगल नोटिस वगैरह भेजने हैं। तो आप जिसे कहते हैं ये जो मैं मेरे को बाद में टेक्स्ट मैसेज डाली और आपको पैरालीगल का नंबर दे दूंगा, कॉल करिए उसको, उससे बात करिए, शी विल हेल्प यू, शी इज ब्रिलियंट। ओके,
3: हस्बैंड तो उसके साथ रहता ही नहीं है और सब बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं, और हमारे
1: यार ये देखो ये टाइम सारा बर्बाद कर रहे हो फालतू रुजूल की बातें करके, ये बातें आप पैरालीगल को बताओगे आप?
3: ठीक है, मैं टैक्स
1: आपको बताएगी कि क्या करना है। घर नहीं रहता, वो नहीं रहता, मैं आपके पास समझ रहा हूँ, पर ये टाइम बड़ा कीमती है। ये अमिताभ जी है ना, मेरा बवा बहुत मोटा बिल बना देते हैं। मेरा नंबर डालिए, बाद में जिसे कहते हैं आपको पैरालीगल सब समझा देगी, मैं उसको बता दूंगा आपके बारे में ताकि वो आपका ध्यान रखेगी। ओके
3: ठीक है, मैं टेक्स्ट मैसेज में मेरा नाम और पैरालीगल हेल्प ऐसा लिख दूंगा आपको।
1: ठीक है, ओके जी, चलो
2: बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका कॉल के लिए। सबरवाल जी अब सीधे चलते हैं एक दूसरे कॉलर की ओर जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो, आप जैम 101.3 पे लाइव है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए।
4: जी नमस्ते जी सबरवाल जी, नमस्ते सारे रेडियो टीम को। मेरे
1: तरफ से ये तो हमारे प्रेमी भाई हैं हमारे तो ये। हाँ जी, क्या हाल है आपके?
4: जी सबरवाल जी, जी जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल जो लोग जो है अपने गार्डन स्वीट बना रहे तो उसमें क्या फायदा है?
1: बहुत फायदा है, और अलग अलग सिटी का अलग अलग रूल है गार्डन स्वीट बनाने का। कुछ उनके मिनिमम नॉर्म्स है, लॉट का साइज और जो आपकी बैक स्वीट है वो ये, और या फिर फ्रंट आपका लॉट कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितना रास्ता आप दे सकते हो। ये अपनी सिटी हॉल जाइए, आपकी सिटी, आप ईस्ट में रहते हैं मुझे पता है, तो आप ईस्ट में है तो अपनी सिटी जाके पता करिए, आपका लॉट इनके पास होगा, लॉट नंबर दोगे आपका हाउस नंबर, तो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे।
4: ओके, और दूसरा क्वेश्चन
1: गाइड कर देंगे, और बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए आपको। और इसमें आजकल के जमाने में तो दो पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आजकल वैसे प्रशिक्षण।
4: और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो गवर्नमेंट ने 80,000 की ग्रांट जो देने दे रहे थे ये गार्डन स्वीट बनाने में, तो अभी भी है वो?
1: ये अलग अलग सिटी की है सर, कोई सिटी अच्छा। फॉलो नहीं कर रही है, इंटायर रूल को कोई सिटी फॉलो कर रही है, और उसके अंदर भी उनके कुछ नॉर्म्स हैं, उनकी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी करनी होगी। जब आप सिटी जाओगे उनसे पता करोगे तो जब आपको बता देंगे कि भाई हाँ बना सकते हो तो मुझे मिल लेना, आप तो मेरे ऑफिस में कई बार आए हुए हो।
4: बिल्कुल,
1: मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा
4: जी। ठीक है, थैंक यू, अब तो मैं घर पर भी आ जाऊंगा आपके।
1: बिल्कुल आ जाइए, अब तो आपका अपार्टमेंट भी हमारी बिल्डिंग में ही है,
4: इसीलिए तो मैंने बोला ना मैं सीधे आपके घर ही आ जाऊंगा, ऑफिस में ले आऊंगा।
1: लेकिन आपसे शिकायत है आप सेमिनार में नहीं आए।
4: जी मैंने आपको बताया था,
1: मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा, आपने बोलूंगा।
4: आई एम सो सॉरी, बस
1: मैं बोला नहीं आपको
4: जी, मैं रेडियो पे आपको बोल रहा हूँ, मुझे वाइफ
1: भी बोल जो है राजपूत होता है राजस्थानी बड़े खूंखार, और मेरे आगे नहीं है आप दीपक राजपूत, आपका दीपक जलता रहे। थैंक यू वेरी मच,
4: थैंक यू सबरवाल जी
2: कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। एंड सबरवाल जी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जॉब मार्केट रिपोर्ट आई है विच इज वेरी एनकरेजिंग,
1: वेरी एनकरेजिंग, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग
2: जी
1: इस रिपोर्ट आ जाएगी। 75,000 न्यू जॉब्स आ गई
2: जी,
1: और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4% तक आ गया
2: जी,
1: लोएस्ट लेवल इन 2 ईयर्स, और क्यूमुलेटिव एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखें तो सिंस में 1,81,000 पोजिशन आई है, स्ट्रांगेस्ट 3 मंथ रन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी अच्छी बात है
2: जी।
1: और इसके साथ साथ जो है दो तीन छोटे मोटे डाटा और दे देता हूँ
2: जी, जी।
1: जो है अपना प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है अबाउट 58,000, और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर 44,000 करीब बढ़े हैं, और इसके अलावा जो है ओंटारियो ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया
2: जी,
1: 75,000 के अंदर 52,000 सिर्फ ओंटारियो के अंदर।
2: वाओ,
1: और सेकंड नंबर आता है बीसी का 18,000 जॉब्स
2: जी।
1: ये जो होलसेल और रिटेल ट्रेड है
2: जी,
1: इसके अंदर 21,000 जो है जॉब्स आई हैं, और इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, रेंटल, लीजिंग, इसमें 18,000 आई हैं, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और टेक्निकल सर्टिफिकेट में 17,000 आई है
2: जी।
1: सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है एवरेज आवरली वेज भी बढ़कर 2.8% बढ़ा है ईयर ओवर ईयर
2: जी,
1: हालांकि जून से कम हुआ है 3.3%, लेकिन ईयर ओवर ईयर 2.8% बढ़ा है
2: जी जी।
1: ये बड़ी अच्छी खबर आई है
2: जी।
1: और पर इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से कहा जाता है हमेशा
2: जी,
1: क्या इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा?
2: राइट,
1: अगर ये रिपोर्ट देखी जाए
2: जी
1: तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए क्योंकि जॉब रिपोर्ट अच्छी आई है।
2: एग्जैक्टली,
1: लेकिन हमारी अगर इन्फ्लेशन देखी जाए
2: जी,
1: चाहे वो हमारे टारगेट में है
2: जी,
1: और जिस हिसाब से इकोनॉमी हमारी चल रही है
2: जी,
1: और जिस हिसाब से टैरिफ की धमकियां आ रही हैं,
2: राइट,
1: और जिस हिसाब से वॉर चल रही है
2: जी जी,
1: मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट यहीं का यहीं रुका रहेगा।
2: सबरवाल जी अगर आप इजाजत दे तो हम एक कॉलर की तरफ चले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि दो कॉलर हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे हैं
1: जी, जी, जी,
2: तो सीधे चलते हैं कॉलर साहब की ओर। हेलो, आप जैम 101.3 पे लाइव है, प्लीज सबरवाल साहब से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछिए। हेलो, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सबरवाल साहब से। आई थिंक कॉलर के साथ हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन जैम 101.3, आप अपना प्रश्न सबरवाल साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
5: हेलो
1: जी, जी
5: गुड आफ्टरनून टीके जी, दिस इज विजय हियर।
1: यस विजय, गुड आफ्टरनून। या
5: कैन यू टेल मी इज देयर एनी प्रेडिक्शन फॉर प्राइस गोइंग फॉरवर्ड?
1: या
5: रियल एस्टेट
1: प्राइसेस इन इंडिया द बॉटम ऑलरेडी टच द बॉटम, इट इज ऑलरेडी टच द बॉटम, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन इट विल स्टार्ट गोइंग अप। And I have given the figure when I started this show. Some figures they suggest that we are going into a situation where there is a tight market situation for the housing, like listing has reduced, active listing has come down, and all these things, and day on the market is now reduced to 32 days. It all shows, takes us to a direction where we can say now the bottom has touched, now we are now going only one, we'll be going only one side up. That is what is indicated.
5: Okay, thank you, thank you,
1: thank you Vijay.
2: जी सबरवाल साहब, तो जॉब मार्केट का डिस्कशन चल रहा था हमारा, आप उस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे कि मैं
1: चाहता हूं? मैं इसकी बात कर रहा था कि मेरे को लगता है उसके उसको देखते हुए
2: जी,
1: ये जो है इंटरेस्ट रेट, मेरे को लगता है जैसे वही का वही रहना चाहिए अभी
2: जी,
1: और जो हमारा पॉलिसी रेट है 2.25 और

0: और बट कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी वो तो हम देख ही लेंगे, और उसकी जो पीछे की जो थॉट प्रोसेस होता है वो सबरवाल जी हमको बहुत अच्छे से एवरी वेंसडे जैम 101.3 पर शो पे बताते हैं। सबरवाल जी, अच्छी खबर थी जॉब मार्केट की, वहीं एक थोड़ी सी ट्रबलसम खबर ये आई है कि इंसॉल्वेंसी इज एक्सपेक्टेड टू रीच रिकॉर्ड लेवल्स हियर। तो आप इस न्यूज़ को किस तरह से देख रहे हैं, हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑर्डिनरी पीपल, और आप क्या सिनेरियो डेवलप होता देख रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स?
1: जी देखिए, इंसॉल्वेंसी की जो खबर आई है
0: जी,
1: इन जून 13,254 फाइलिंग्स हुई है इंसॉल्वेंसी की,
0: जी
1: सेकेंड हाईएस्ट मंथली टोटल एवर रिकॉर्डेड।
0: वाओ,
1: लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है सेकंड से नंबर वन में ना आ जाए
0: जी,
1: ये जून ओवर जून की बात कर रहा हूं मैं, वी आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस
0: जी
1: ऑफ इट्स वर्स्ट एवर एनुअल रिपोर्ट।
0: वाओ,
1: वर्स्ट एवर, ये इस ट्रेजेक्टरी की हम बिल्कुल थोड़ा ही दूर हैं
0: जी।
1: तो साथ ही मैं सॉरी दोबारा रिमाइंड कराऊंगा अमिताभ जी, जरा ये बहुत इरिटेटिंग है, इसको ठीक करवाइएगा, मेरी आवाज यूजिंग घूम घूम के वापस आ रही है तेज तेज,
0: ओके
1: वो शुरू से आ रही है, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आई कैन कंटिन्यू विद दिस बट ये इट इज बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। हेलो
0: जी सबरवाल जी, यहाँ पे स्टूडियो में ऑलरेडी आईटी टीम को बोल दिया गया है, तो आई एम श्योर दे विल फिक्स इट वेरी क्विकली, आई अपोलोजाइज फॉर दैट,
1: नो वरीज। तो और अगर दूसरी बात करें जो ओएसबी की रिपोर्ट है
0: जी,
1: वो ये कह रही है कि फाइलिंग्स वर 11.5% हायर देन अ ईयर अर्लियर
0: जी,
1: एंड मोर देन डबल जून 2020 से मोर देन डबल हो चुकी है
0: जी,
1: विच इज वेरी डेंजरस
0: जी।
1: और ओएसबी ये कह रहा है कि 37,523 कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी में फाइल हुई है
0: जी
1: क्वार्टर टू ऑफ 2026
0: जी,
1: विच 6.9% इंक्रीज
0: जी
1: फ्रॉम द सेम पीरियड इन 2025
0: जी।
1: 12 महीने का अगर देखते हैं
0: जी,
1: एंडिंग जून 150,500 कुछ इंस्टॉलमेंसी फाइल हुई है
0: जी,
1: 5.3% अबव फ्रॉम प्रीवियस ईयर,
0: ओके।
1: अब देखिए प्रपोजल्स वगैरह ये वो ये इतनी बड़ी सरदर्दी बन रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये दिया जा रहा है
0: जी।
1: एक फिगर इससे पहले मैं वोट देता हूँ, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, जिस परिवार में दो इनकम सोर्स हैं
0: जी,
1: हस्बैंड वाइफ या फादर बेटा या फादर मदर या जो भी, या मदर बेटी
0: जी,
1: जिस घर में दो इनकम सोर्स हैं 25% तो वही लोग हैं जो इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर रहे हैं।
0: दैट इज अमेजिंग,
1: जबकि माना जाता है जिसमें सोर्स कम होता है इनकम का, एक सोर्स हो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं।
0: यस,
1: तो अमिताभ जी 23% क्वार्टर टू की फाइलिंग के अंदर टू इनकम हाउस होल्ड वाले भी अकाउंट फॉर हो रहे हैं,
0: एकदम चौंकाने वाली खबर है ये तो,
1: बहुत चौंकाने वाली है। इसमें एक कारण सबसे बड़ा क्या दिया जा रहा है
0: जी,
1: हाउस के प्राइस जो नीचे आए हैं।
0: राइट,
1: अब कोई पूछेगा कि घरों के प्राइस नीचे आने का इंसॉल्वेंसी से क्या मतलब
0: जी,
1: ये मैं बताता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मान लीजिए 1 मिलियन का घर था
0: जी,
1: और उसके ऊपर 7 लाख मॉर्गेज थी
0: जी,
1: 3 लाख आपकी इक्विटी थी।
0: राइट,
1: जब आप 3 लाख इक्विटी में 20% एक तरफ कर देते हो तो बाकी 1 लाख आपके पास एक्स्ट्रा इक्विटी थी
0: जी,
1: उसके ऊपर कई बार आप लाइन ऑफ क्रेडिट ले लिया करते थे
0: जी,
1: उससे अपनी तंगी टेम्परेरी दूर कर दिया करते थे। आज घर के प्राइस इतने गिर गए हैं कि आपके पास इक्विटी बची नहीं है कि आप उसके ऊपर लाइन ऑफ क्रेडिट ले सको।
0: ओह वाह,
1: क्योंकि अगर 1 मिलियन का घर था
0: जी,
1: 7 लाख की मॉर्गेज थी
0: जी,
1: तो 3 लाख इक्विटी थी।
0: एग्जैक्टली,
1: आज 1 मिलियन का घर वो घट के 7 लाख रह गया, 8 लाख रह गया
0: जी,
1: 7 लाख मॉर्गेज है
0: जी,
1: तो बैंक तो नहीं देगा फिर आपको लैंड ऑफ क्रेडिट,
0: आपकी इक्विटी तो वाइप आउट ही, ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुकी है,
1: हो गई
0: जी।
1: सबसे बड़ा जो इस समय जो है ना डेट मैनेजमेंट टूल कहते हैं हम इसको
0: जी,
1: जिसमें आप अपनी इक्विटी को कई बार यूज कर लेते हो इमरजेंसी में
0: जी जी,
1: मैंने भी यूज की हुई है 25 साल पहले, ऐसी बात नहीं है
0: जी,
1: लेकिन आज इक्विटी ही नहीं है तो कैसे मैनेज करोगे अपने फाइनेंस
0: जी।
1: ये बहुत ज्यादा एक चौंकाने वाली फिगर थी
0: जी,
1: जो कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मेरे साथ, और ये जो है मेरे हिसाब से एक चौंका देने वाली बात है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, और सबरवाल जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे ये पूरे कनाडा के थे कि ओंटेरियो के थे या
1: पूरे कनाडा के थे
0: ओके ओके, पर तो हमारे पास प्रोविंस स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है जिससे हमें पता चले कहाँ प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं।
1: देखो सीधी सी बात है
0: जी,
1: प्रोविंस स्पेसिफिक में अगर मैं बात करता हूँ
0: जी,
1: तो मुझे पता है ओंटारियो

0: कंज्यूमर सबसे आगे आएंगे
1: 100%,
0: क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रॉब्लम है
1: जी।
0: जहां पर घर की कीमत ही 3 लाख है
1: जी,
0: तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी?
1: ट्रू ट्रू।
0: यहाँ पर रोटी खाने के लिए आपको 1,000 चाहिए
1: जी,
0: और दूसरी जगह आपको रोटी खाने के लिए 2,500 चाहिए
1: जी,
0: प्रॉब्लम तो 2,500 वाली जगह में आएगी।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है ना। जो आदमी सस्ता से मकान लेके बैठा है
1: जी,
0: और सस्ती जगह बैठा है और रेगुलर जॉब कर रहा है
1: जी,
0: उसके चांसेस कम है
1: जी।
0: और जो इंसान उड़ रहा है
1: जी
0: बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मकान लेके बैठा हुआ है
1: जी,
0: तो गिरेगा भी वही।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पर हम, मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि अगर आपका भी कोई रियल एस्टेट से जुड़ा प्रश्न है तो आप अभी भी फोन उठा के सबरवाल जी से डायरेक्टली मुखातिब होकर पूछ सकते हैं। स्टूडियो की लाइन अभी भी खुली हुई है। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। सबरवाल जी हमारे साथ बस 3-4 मिनट और रहेंगे, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनवैल्यूएबल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट विद मिस्टर पी के सबरवाल।
0: जी
1: जी सबरवाल जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि वो पूछ रहे हैं रेंटल इनकम मॉर्गेज कवर नहीं कर पा रही है, क्या जीटीए में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मैथ्स परमानेंटली चेंज हो गया है क्या?
0: यार बढ़िया क्वेश्चन किया है यार अमिताभ जी, बहुत जिसने भी आपसे पूछा है दिल खुश कर दिया,
1: थैंक यू।
0: अब देखिए जिस इंसान ने
1: जी
0: एक, मैं चलो कॉन्डो अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ
1: जी,
0: कॉन्डो अपार्टमेंट 1 मिलियन का लिया था
1: जी,
0: उसको सूट नहीं कर रहा आज
1: जी।
0: लेकिन अगर 1 मिलियन के कांडो को असाइनमेंट में जिस आदमी ने 7 लाख का खरीदा है
1: जी,
0: उसको सूट कर रहा है
1: 100%।
0: तो डिपेंड करता है आपकी परचेज क्या है
1: जी,
0: परचेज क्या है उस पर डिपेंड करेगा
1: जी,
0: कि आपका रेंटल इनकम इसको जस्टिफाई या ऑफसेट कर रही है कि नहीं कर रही
1: जी।
0: मैं हमेशा ये बताता हूं कि दिस इज द मार्केट टू बाय नॉट टू सेल। और अगर जो आज आप आज के गिरे हुए प्राइस में अगर बाय कर रहे हो
1: जी,
0: definitely it is taking care of your mortgage, your rent will take care of your mortgage, it will offset your mortgage 100%, उसके बगैर हम ले ही नहीं रहे
1: जी।
0: लेकिन जिसने पहला बुक किया हुआ है और उसने महंगा बुक किया हुआ है मान लीजिए 1 मिलियन का और आज उसका रेंट उसको सूट नहीं कर रहा, तो उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो उसकी रेंटल इनकम माइनस पड़ रही है, मान लीजिए $1,000 महीने की कम पड़ रही है, तो टेक इट एज एन एक्सपेंस
1: जी
0: एंड क्लेम इट एज एन कैपिटल लॉस फ्रॉम सीआरए।
1: ओके ओके सबरवाल जी, एक चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो हमारे लिसनर्स का है। वो कह रहे हैं कि 3 वीकेंड से ओपन हाउस कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, लेकिन ऑफर कोई नहीं दे रहा, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम प्राइसिंग की होती है या प्रेजेंटेशन की या मार्केटिंग की या फिर लोकेशन की?
0: तीनों चीजों की।
1: ओके
0: देखो कुछ रियल्टर एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं
1: जी,
0: ये सोचकर कि कमाई नहीं हो रही।
1: राइट,
0: स्टॉपिंग द एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: टू सेव मनी इज लाइक स्टॉपिंग द वॉच टू सेव टाइम।
1: व्हाट एन एग्जांपल सफरवाल जी, ब्रिलियंट
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: लोग भी तो टाइम रुक जाएगा,
1: सेल्फ डिफीटिंग, यस इट इज सेल्फ डिफीटिंग।
0: आप कई लोग इस नरो, आप अगर नोट करो मेरे साइन मेरे बोर्ड
1: जी
0: चारा लगे हुए हैं इस वक्त जगह जगह।
1: एग्जैक्टली,
0: दो फायदे हैं, एक इस वक्त मार्केटिंग की जरूरत है, नंबर टू
1: जी
0: इस वक्त नेगोशिएशन बड़ी जबरदस्त है मार्केटिंग के अंदर।
1: ओके,
0: क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स कम है। दूसरा प्रेजेंटेशन, हाउस कैसा प्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने
1: जी।
0: और नंबर तीन
1: जी
0: सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस।
1: राइट,
0: जहां पर तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी
1: जी
0: 2 दिन में घर बिकेगा।
1: बिल्कुल सही सबरवाल जी, चलते
0: तीनों के अंदर आपको तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सबरवाल जी, हमारा वक्त आज इस हफ्ते का बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो क्यों ना हम उनसे उनका प्रश्न भी ले ले। हेलो अनुज जी, आप लाइव हैं और सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
2: सबरवाल जी गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग सर,
2: आपने अभी अभी बोला कि 25% जो इंसॉल्वेंसी के केसेस आए हैं डबल इनकम फैमिली से आए हैं।
0: जी जी जी,
2: तो इसमें आपको क्या लगता है कि देयर वाज अ पुश फ्रॉम द ब्रोकर और बहुत ज्यादा ही चादर फैला लिया कि जितना का नहीं लेना चाहिए था उतने का ले लिया है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। देखो आप, ये सबसे बड़ी हमारी गलती एक हो जाती है अनुज जी, जब हम कहते हैं कि उसने हमें कहा, हम बुद्धू थे या हमने मान ली उसकी बात?
2: हाँ जी,
0: हमने क्यों उसकी बात मान ली?
2: करेक्ट। तो यहाँ पे
0: इनकम किसी भी हालत में आपकी फैमिली इनकम का 40% से ज्यादा आपके घर में नहीं जाना चाहिए।
2: लेकिन कंटिन्यू करें
0: बताइए।
2: लेकिन मोस्ट ऑफ द देसी ब्रोकर जो हम देखते हैं वो बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट ले लो, अपने बहन से ले लो, भाई से
0: मतलब
2: ले लो।
0: वो आपको कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लो और आप आत्महत्या कर रहे हैं।
2: ये हो रहा है एक्चुअली।
0: हाँ देखो बात ये है, देखो मैं बता दूं सीधी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने ये बात कई बार कही है
1: जी।
0: जब हम बातों में आगे बड़ा घर अपनी उपास से ज्यादा ले लेते हैं, अपने लिए खड्डे खोद लेते हैं। मेरा एक कहावत बड़ी मशहूर है जो मेरे इंस्टाग्राम में मेरी बहुत चली है
1: जी।
0: वो ये है, देखा जाए तो रहते तो आप एक कमरे में है, बाकी कमरों में आपका गरूर रहता है, आप नहीं रहते
2: जी।
0: अब ईगो रहती है, वो ईगो आपके मार देती है। जो आदमी जमीन में बैठा है वो कभी गिर ही नहीं सकता, तो क्यों ट्राई करें सर। ये डबल इनकम वाले चाहे सिंगल इनकम वाले मिसमैनेज्ड है फाइनेंशियल। देखो अनहोनी तो कहीं भी हो सकती है, घर में प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, वो मैं मानता हूं, लेकिन मिसमैनेज्ड फाइनेंसेस और दिखावा ये आदमी को जीने नहीं देता, ये आदमी को जीने नहीं देता। ये मतलब पॉलिसी मेरे खुद की निभाई हुई है और बहुत कामयाब पॉलिसी है। अगर आप अपनी इनकम का 10% एक तरफ रख के चलते हैं, आप कोई ताकत ही नहीं कि आपको रोक सके मिलियनर मरने से। इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर इट इज योर फॉल्ट।
2: जी इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने देखा है ब्रोकर्स बहुत सारे ये ऐड डालते रहते हैं, मैंने बिलियंस का सेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें एक फैक्टर ये भी आना चाहिए ना कि हमारे सेल्स में कितने इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वो तो एक
0: वेरी नाइस बड़ी सी बात है। ये क्वेश्चन उठना चाहिए यार वाकई कि तुमको जिस चीज को दिलाया
1: जी
0: और तुमको तुमने कहां मरवा दिया लेके,
2: करेक्ट
0: ठीक है ना। और मैं बोलता हूँ, मैं बहुत बार बात बोलता हूँ, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं मेरे से, और मैं उनको एक ही डायलॉग बोलता हूँ, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई से नॉट फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड। तुम जो मुझे सोचो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैंने जो बोलना है वो बोलना है। और ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ब्रोकर ने मैं मरवा दिया, मैं 90% कसूर उन्हीं का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसकी बात क्यों मानी, टू गुड टू बी ट्रू। वो बहाना हम असाइनमेंट में बेच देंगे, आज देख लो असाइनमेंट में कोई बेच ही नहीं पा रहा, हम डबल जॉब कर लेंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी, लाइन ऑफ क्रेडिट ले लेंगे। मतलब वो उनको बता रहे हैं कि मैं तो गधा हूं, तुमको भी मैं गधा बना रहा हूं।
2: ये कुछ इंडिकेटर होते हैं।
0: एक मेरे को मैंने किसी फंक्शन में बोला कि वो कहते हैं खुदा के घर से गधे फरार हो गए, कुछ तो पकड़े गए, कुछ हमारे यार हो गए। तो है तो वो यारों वाली बात गधों से मत करो, मतलब थोड़े इंटेलिजेंट बंदे से बात करो, ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या करना है। प्लस जरूरी नहीं है कि आपने सारी बातें उनकी माननी है।
2: हाँ जी, लेकिन वो जो ब्रोकर का एक रैंकिंग टाइप होना चाहिए ना, आप अपनी कम्युनिटी में बात कर सकते हैं कि ऐसे हम वैसे उनके खुद के तहत में खिलाड़ी होगी, लेकिन फिर भी आई थिंक जो अच्छा ब्रोकर होगा वो तो सीना तान के बोलेगा हाँ लगा दो कुछ भी, मेरे तो कोई बैंकक्रप्ट नहीं हुए जो मैंने बेचा है।
0: मेरे यहाँ पर मेजोरिटी 60% लोगों को मना कर दिया जाता है, कभी मिलिएगा आके आप हमारे कॉलेज जी, आप बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बताइएगा मत कि आप रेडियो में आए, अपनी प्रोफाइल लाके दिखाइएगा, आपको क्लियर आंसर मिलेगा और उसका एक कागज आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू अनुज जी एंड सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट एनालिसिस एंड कमेंट्स के लिए, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स आपकी एक एक बात पे हैंग ऑन करते हैं, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी एक्सपर्ट प्लेस। तो सबरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अगले वेंसडे फिर 4:25 पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।

और जैसा कि बच्चन साहब अपने शो पे कहते हैं, समय समाप्त की घोषणा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जतिन जी और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक मुस्कुराते रहिए, ड्राइव सेफ और याद रखिए जैम 101.3 जरा सुनिए तो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।

And here we meet again on the day jahan slogan of the day is ki nawjawanon ka zamana kabhi hoga na purana. At least UN ka to aaj ke din yahi rehta hai ishara. Koi san 2000 kuch se. Usse pehle bhi halaki youth hote the aap kahenge, par wo kehte hai na jab jago tab savera. Aur isliye na hoga purana kyunki is umr aur peedhi mein bahut kuch naya, bahut kuch fresh hota hai. पुराना नए तरीके से, नया नए सलीके से. वो बात और है कि कई बार वो सलीका तरीका एक पीढ़ी को बिल्कुल हजम नहीं होता. इनफैक्ट कई बार नौजवान भी आपस में बचे रहते हैं क्योंकि एक ग्रुप होता है जो कहता है भाई ऐसे थोड़ी होता है ना. वेल ऑन दिस इंटरनेशनल यूथ डे टुडे दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर सेइंग कि ये बात तो सही है, यूथ है तो फ्यूचर है और इसीलिए देश बदलना है अगर फॉर गुड तो यूथ पर ध्यान देना भी जरूरी है. अगर यूथ बदलना है फॉर गुड तो उसकी एजुकेशन पर ध्यान देना जरूरी है. एंड माइंड यू, लिटरेसी और एजुकेशन एक बात बिल्कुल नहीं होती. मैंने बहुत सारे डिग्री होल्डर्स देखे हैं जो विचारों आचार व्यवहार से कहीं से भी एजुकेटेड नहीं लगते. एंड यस, वन मोर थिंग बहुत जरूरी है. पूछो क्या, करण जौहर जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले स्कूल जो होते हैं ना, उनसे बचना जरूरी है. उनमें बिल्कुल मार पढ़ाना. क्यों, वरना द स्टूडेंट्स विल ओनली लर्न हुकअप्स, क्रेडा एंड किली किली अखा. ऐसा ही कुछ. स्टे ट्यून्ड विद मी, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑन बोर्ड.

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111, 6473278111।
4: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1,

0: our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
2: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर. वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
3: On your feet with Peppy Nukkar Beats.

ब्यूटिफुल सी मेलोडी, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स लेटली. बहुत ही इंस्पायरिंग बायोपिक से था ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा. शेरशाह कोड नेम था उनका, मैं भी थोड़े दिन पहले बता भी रही थी. हालांकि ये फिल्म पहली नहीं थी जहां किसी फिल्म में उनको पोर्ट्रे किया गया था. LOC कार के लिए याद है आपको 2003 की, उसमें भी अभिषेक बच्चन जो थे उनको ये रोल मिला था प्ले करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा का. पर जब फुल फ्लेश्ड फिल्म की बात आई ऑन विक्रम बत्रा जी, तो जूनियर भी वॉज नॉट द चॉइस पर बत्रा फैमिली, क्योंकि अब 2003 में LOC कार के लाई थी, इट्स बीन क्वाइट अ फ्यू इयर्स, यू नो, तब उन्हें लगा कि अब जब करेंगे तो एक यंग फेस चाहिए. एंड दैट्स हाउ द जेंटलमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा केम इनटू बीइंग और शेरशाह बनी उनके साथ. फिल्म का टाइटल पहले कहते हैं ये दिल मांगे मोर रखा गया था, क्योंकि ये फ्रेज उन्होंने कई बार उस फिल्म में यूज किया था. फिल्म की बात नहीं, उन्होंने रियल लाइफ में किया था. एंड इट वॉज लेटर चेंज्ड टू शेरशाह. वेल, फिल्म हैज कंप्लीटेड रिलीज टुडे और जो भी फैंस हैं फिल्म के कैप्टन विक्रम बत्रा के, वो सब इस फिल्म की चर्चा वापस कर रहे हैं. एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोपिक्स लेटली आई हैव सीन. मैं ये कह सकती हूँ बैडमैन इज वन ऑफ देम.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wayne's Auto Group.
1: फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर मैं हूँ स्वाति, साथ है पायस्विनी और 7 बजे तक रहेगा हमारा आपका साथ। सोचा याद दिला देती हूँ। और आज के कुछ खास सेगमेंट्स हमारे साथ रहेंगे, जैसे कि हमारे साथ मीता जी जुड़ेंगी फ्रॉम काव्या होम्यो केयर, दैट्स गोइंग टू बी अ हेल्थ सेगमेंट। उसके अलावा हम गेस द सॉन्ग सेगमेंट करेंगे, जिसमें कि आप जीत सकते हैं 2 टिकट्स और मैं कोशिश करूँगी 1 से ज़्यादा राउंड करने की, जिससे कई विनर्स हम चूज कर पाए इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 विनर। और हर विनर जीतेगा 2 टिकट जो मिसिसागा फ्रेंच फेस्ट हो रहा है ना मिसिसागा में, उसके बहुत सारे प्लेज हैं, उसमें 12 प्लेज हुए हैं इस हफ्ते, 6 प्लेज हैं, उनकी हर प्ले की 4 परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो आप जीत सकते हैं अलग अलग दिनों में, अलग अलग प्लेज, अलग अलग टाइम्स पे, आपको जो सूट करता है उसके टिकट्स आपको दे दिए जाएंगे इन केस यू विन द कॉन्टेस्ट। और उसके अलावा विन करने के लिए, गेस द सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए नंबर रहेगा हमारा 416-593-0055। ये नंबर नोट करके इसलिए भी रखें क्योंकि आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे अनुज उब्रॉय जी। कल नहीं जुड़ पाए थे लेकिन आज जुड़ेंगे 6:15 बजे, तो अगर कल आप उनका इंतजार करते रहे थे, वैसे तो मैंने बता दिया था, पर आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे 6:15 बजे, टाइम वही रहेगा, बस ट्यूसडे की जगह आज वेंसडे को जुड़ेंगे 6:15 बजे। अनुज जी जुड़ेंगे इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स और बताएंगे कैसे नंबर्स कैन डू वंडर्स एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, हाउ यू कैन बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो नंबर्स के जरिए क्या क्या हो सकता है, आपके अपने सवाल हो सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी जुड़े हो सकते हैं, आपके डाउट से जुड़े हो सकते हैं, यू कैन चैलेंज हिम एज वेल। और साथ में अपनी बर्थ डेट से जुड़े, अपने हाउस नंबर से जुड़े या जो भी नंबर्स आपकी लाइफ में है उससे जुड़े सवाल भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू करियर, लाइफ, यू नो, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। बट अगेन वो सवाल पूछने का नंबर भी रहेगा ड्यूरिंग द सेगमेंट 416-593-0055। तो या तो पार्टिसिपेट करना है आपको गेस द सॉन्ग में या नंबर्स डू वंडर्स सेगमेंट में, या यूं ही अपना कोई फीडबैक, अपना प्यार, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपना कोई मैसेज हमें देना है तो भी स्टूडियो का नंबर रहता है वही हमेशा 416-593-0055।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Don Valley North Hyundai ke Hyundai upgrade your ride sales event ka fayda uthaye. Sirf 0.99% se financing aur saath mein 90 din tak koi payment nahi aur paye $1000 tak ka upgrade bonus bhi. Offer sirf August 31st tak hai. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
2: Don Valley North Hyundai, doing
3: a proud member of Wayne's Auto Group.
4: फायदा उठाएं ऑगस्ट के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना. 3 इयर्स फिक्स 3.94%, 5 इयर्स फिक्स 4.04%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500. कॉल अमित खुराना एट 6473412785. दैट्स 6473412785.
5: ये है राजधानी राजधानी राजधानी.
6: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
7: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
6: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
9: हर कहानी की अपनी एक आवाज होती है और इस अगस्त वो आवाज गूंजेगी मिसेस सागा में. 10 से 23 अगस्त तक मिसेस सागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल 2026 लेकर आ रहा है 12 प्रोडक्शंस, 48 परफॉर्मेंसेस, ड्रामा, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री और एक्सपेरिमेंटल थिएटर. हर शो एक नया एक्सपीरियंस. सावित्री थिएटर ग्रुप के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपनी लैंग्वेज और कल्चर को. टिकट्स और पूरे स्केड्यूल के लिए विजिट करें 2026.mississaugafringe.ca या कॉल करें 647-640-7999 पर.
10: Another Don Clean with the Don Ducks.
11: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
12: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
11: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
12: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
11: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
12: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
11: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
10: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: Well, this was a request. Anur sahab, aapki pasand ka gana aapke liye, ya kehle sifarishain aapke liye.
1: Genesis Markham mein luxury milti hai ek aise experience ke saath, jo expectations se bhi aage ho. Beautifully designed 2026 GV70 ya 2026 GV80 ko lease kare. Sirf 2.4% se for up to 39 months. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: अच्छा इंटरनेशनल यूडे के अलावा ऑल्सो इस हॉकी मेरे साथी वाला दिन मतलब वही गाने वाला इट्स वर्ल्ड एलिफेंट डे विद अ गोल टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स अफ्रीकन हाथी में पढ़ रही थी कि वल्नरेबल लिस्ट में आ चुके हैं विद 90% इन यू नो है नहीं अब ऑलरेडी डिप्लीट हो गए हैं इन पास्ट सेंचुरी एशियन एलिफेंट्स एंडेंजर्ड में आ चुके हैं एंड सैडली ivory trade is the main reason. बाकी हाथियों के बारे में कहते हैं कि बिना बादाम खाए

0: Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye Markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोटराल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: यही नंबर है जो आपके लिए हेल्थ के दरवाजे खोल देगा। काव्या होम केयर की बात कर रही हूँ, ब्रैम्पटन में है, 10 कॉटर बुलेवर्ड, जैसे कि आपने एड्रेस सुना भी। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेंगी नीता जी। बहुत ही लंबा अनुभव है उनका, बहुत अरसे से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं। और होम्योपैथी के लिए तो हम जानते हैं कि भाई बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स ना होने वाली दवाइयाँ इसकी या ट्रीटमेंट होता है। और ऐसे में अगर जो होम्योपैथ आपका एकदम मंझा हुआ हो, एकदम एक्सपीरियंस वाला हो, तो बात अलग ही बनती है ना। तो नीता जी के अनुभव का फ़ायदा आप अपनी सेहत अच्छी करने के लिए उठाएं। घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जिनके लिए तो कहते हैं होम्योपैथिक मेडिकेशंस हमेशा ही बहुत सेफ होती हैं या वो ट्रीटमेंट्स, तो आप ज़रूर एक बार अपॉइंटमेंट लेके बड़ी छोटी बीमारियों को अपनी ठीक करें। और एक बात, ठीक ही ना करें, हमेशा के लिए ठीक करें, क्योंकि जड़ से बीमारियां जाती हैं। और एक बात कि दवाइयों की जब बात हो रही है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, वो आपके घर तक पहुंच सकती हैं। नॉर्थ अमेरिका में मीता जी कहती हैं आपके दरवाजे तक दवाई पहुंच सकती है अगर आप चाहते हैं ट्रीटमेंट। अगर कोई भी इशू है कम्यूट का, आने जाने का, टाइम का, तो आपको घर बैठे भी कंसल्टेशन मिल सकता है। उसके लिए आपको बस एक बार नंबर उनका नोट करें, डायल करें और अपनी बात उन तक रखें। 6477602779 इज द नंबर। बाकी बातें मैं सीधे मीता जी से करवाती हूँ, आप खुद पूछ सकते हैं। मीता जी, वेलकम।
3: थैंक यू सो मच स्वाति जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो?
2: बढ़िया बढ़िया, पर बढ़िया में भी कई बार कहते ना, थोड़े बहुत नुक्स लगे रहते हैं हम सबके साथ, हेल्थ के, बदलते मौसम के साथ लगे रहते हैं, बदलते लाइफस्टाइल के साथ लगे रहते हैं। अब लाइफस्टाइल की जब बात आती है, एक चीज तो बहुत ही देखने में आती है, वो होती है कई बार पीठ का दर्द, और उसमें कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन एक चीज उसमें अक्सर सुनने में आती है लोगों के, कि वो ये कह रहे होते हैं हमें ना स्लिप डिस्क हो गया। अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली कमर के दर्द की यही वजह है या ये मेन रीजन है आजकल, या ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है, पर ये रीजन तो सुनने में आता है। तो क्या इस कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है?
3: हाँ जी, बिल्कुल है स्वाति जी। और ये डिस्क प्रोलिप्स की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में बढ़ती रही है, और इसका रीज़न है यहाँ का काम, कि हम सारे जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक लेबर के साथ जुड़े हुए हैं। घर पे कुछ करना है तो वो खुद से करना है, उठाना है, मूव करना है, जॉब में आपका काम इस तरह का है, तो इस ऐसे में कई बार होता है ये कि डिस्क प्रोलिप्स हो गई और उसके साथ आपको बैक में पेन या साइटिका की पेन स्टार्ट हो जाना। सो ये जो है डिस्क की प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बैक में जो बोन्स होते हैं उसको हम मनके यानी के वर्टिब्रा कहते हैं, जिससे हमारा बैक बोन पूरा बना होता है। अब ये दो वर्टिब्रा के बीच एक डिस्क होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये कुशन की तरह काम करेगी कि दो वर्टिब्रा एक दूसरे को टच ना करें, उसके बीच के जो कंटेंट्स हैं वो फ्री रहें, और वो शॉक एब्सॉर्बर की तरह भी काम करेगी, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब आप कह लो कि एजिंग के हिसाब से वियर एंड टियर से जो आर्थराइटिक चेंजेस आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि ये डिस्क जो है नॉर्मल उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है तो ये डिस्क ड्राई होने लगती है और फिर वो ब्रेक डाउन होने लगती है, जिसको हम डीजनरेटिव प्रोसेस कहते हैं। सो ये डिस्क का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा नियर द एज 50 कह लें कि अराउंड दैट एज या उसके बाद, और डिस्क प्रोलिप्स या बल्जिंग भी हो सकता है एज अ पार्ट ऑफ आर्थराइटिक प्रोसेस। अब कई बार ये प्रोसेस पीडी बन जाती है, किस तरह के कहीं पे आपको जोर से झटका लगा आपकी बैक में कि आफ्टर इंजरी कहीं पे गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ, या काम पे कुछ इस तरह उठाना पड़ रहा है, हेवी विप्लेश हो गया एक्सीडेंट में, तो ऐसे में क्या होगा कि ये डिस्क एकदम से बाहर आ जाएगी। अब डिस्क का ये बल्ज हुआ जो हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही नर्व को कॉम्प्रेस करेगा, जिस करके आप इसके सिम्टम्स फील करते हैं, और ये ज्यादातर आपने देखा होगा लोअर बैक में या आपकी गर्दन में ये फील करते हैं। सो अगर नेक में आपकी डिस्क प्रोलेप्स हो गई है तो उसके साथ गर्दन में पेन होना, स्टिफ हो जाना, और नेक से लेके दोनों शोल्डर या हाथों में या कोई एक साइड के हाथ में आप पेन है, नमनेस, टिंगलिंग फील करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी गर्दन अकड़ गई है, साथ में वर्टिगो का अटैक हो रहा है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, बैलेंस खो देंगे वाली फीलिंग, तो ये सारे सिम्टम्स नेक की आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसके साथ आप फील कर सकते हैं। सिमिलरली जो मोस्ट कॉमन दूसरी साइट है वो है लोअर बैक में। सो लोअर बैक में अगर डिस्क प्रोलेप्स है तो उससे क्या होगा कि लोअर बैक में पेन होना, जिसको हम साइटिका की पेन कहते हैं, और ये पेन लोअर बैक से लेके हिप से लेके थाई में और पूरे लेग में जाती है। ज्यादातर स्टार्टिंग में ये वन साइडेड होती है, तो समटाइम्स दोनों लेग्स में ये पेन जाएगी। डल सी पेन से लेके सीवियर थ्रोबिंग पेन कह लो, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह झटके लग रहे हैं, वो वाली शार्प वाली पेन हो जाना। सो यहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो क्या करेगा, ये मेडिकेशन काम करती है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो डिस्क को जो प्रोलेप्स हुई है उसको ये आगे बढ़ने से रोकने में हेल्प करेगा, साथ में आपके सिम्टम्स के पेन है, स्टिफनेस है, या फिर नमनेस, टिंगलिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप देखोगे कि कुछ ही टाइम में आपको इम्प्रूवमेंट होगी। और इसके साथ है थेरेपी एज वेल, जिस करके लाइक मसाज थेरेपी है, सो बैक पेन है, साइटिका है, वो सारा थेरेपी साथ में लेते हैं, काफी रिलैक्सेशन आपको फील होगा और पेन को आप मैनेज कर सकते हैं। सो बॉडी में कहीं पे भी आर्थराइटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आपके नी में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में टेयर हो जाना, पेन होना, या कोई भी जॉइंट में दर्द है, बैक पेन है, नेक पेन, साइटिका, या इसके अलावा कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो कोल्ड फ्लू जैसे ओवर द काउंटर आप मेडिकेशन लेते हैं कि खांसी हो गया, स्टमक फ्लू है, सो यू कैन गेट 1 week, 2 weeks मेडिसिन एज वेल। छोटे बच्चों में टीदिंग वगैरह की मेडिकेशन चाहिए, अपने लीवर का क्लिंजिंग कराना चाहते हैं तो लीवर क्लिंजिंग टिंचर्स आर अवेलेबल, किडनी क्लिंजर्स आर अवेलेबल, एंड पूरे जैसे स्वाति जी ने बता दिया है कि नॉर्थ अमेरिका में, यूएस, कैनेडा में मेडिकेशन हम मेल भी करते हैं, एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज जिनका एक्सटेंडेड प्लान होता है सो दे डू कवर होम्योपैथी, तो अगर आपको कवरेज है उसका बेनिफिट भी आप साथ में ले सकते हैं।
2: परफेक्ट, मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगी कि स्लिप डिस्क हो या कोई और परेशानी, इट मे मेक यू ट्विस्ट, फ्रीज, यू नो, बट मीता जी का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है इट एम्स टू ब्रिंग यू बैक एट ईज। तो उन्हें कॉल ज़रूर करिएगा 6477602779, और यू कैन विजिट काव्या homeyocare.com। थैंक यू मीता जी, फिर अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए गुड लक।
3: थैंक यू सो मच स्वाति जी।

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wings Auto Group.
1: Ding dong! Guess this song. Right answer wins and no prize for her wrong. Well, time for guess this song. सबसे पहले स्टूडियो का नंबर याद दिला दूं 416-593-0055 for you to participate. Participation का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जीतना ही जीतना है या कुछ गिफ्ट मिल रहा है. वैसे गिफ्ट मिलेगा आपको जीतने वाले को, लेकिन अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका अपना ही एक मजा है. जीत जाते हैं तो डबल मजा है, और कुछ जीत के गिफ्ट मिलता है तो ट्रिपल मजा है. और यहाँ पे आज आपको ट्रिपल मजा मिलने वाला है. फिर आपका मंशा चाहे सिर्फ पार्टिसिपेशन की हो. और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे 6:15 हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट भी अनुज ओब्रॉय जी इन द सेगमेंट नंबर्स यू वंडर्स. उसके लिए भी नंबर रहेगा 416-593-0055. तो ये नंबर तो नोट करके रखें ही. फिलहाल पार्टिसिपेशन आपको जो करना है उसमें ये बता देती हूँ आपको मिलेगा क्या. वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इन दोज टिकट्स. आप किसी को पास ऑन भी कर सकते हैं अपने टिकट्स जीत के. जीतना इज इम्पॉर्टेंट. और ये जो टिकट्स हैं ये मिसिसागा फ्रिंज फेस्टिवल के हैं जो हो रहा है मिसिसागा में. और इसमें 12 प्लेज हैं, 48 परफॉर्मेंसेज हैं इन 2 वीक्स. एक वीक तो बस खत्म भी होने वाला है. और इस वीक में जितने भी प्लेज हैं, 6 प्लेज हैं, उनकी 24 परफॉर्मेंसेज हैं. तो उसके अलग अलग दिन के अलग अलग शोज हैं जिनके टिकट्स में आपकी सुविधा अनुसार आपको आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जीतने वाले को मैं दे सकती हूँ. कोशिश करूंगी एक से ज्यादा राउंड हों, पर फिलहाल पहले राउंड की तरफ चलते हैं. आई एम गोइंग टू प्ले स्टेंजा ऑफ ए वेरी पॉपुलर क्लासिक. 1967 का ये गाना है. बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी, हिट फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी. उसका ये गाना है और बहुत ही पॉपुलर गाना है. रूठने मनाने के गानों में वन ऑफ द वेरी फाइन सॉन्ग्स आता है. आप सुने और देखिए, अगर पहचान पाते हैं तो हमें गा के सुनाइएगा कि कौन सा गाना है. और सी हु विंस इट टुडे 416-593-0055.

वेल, इस गाने में थी सायरा बानो और जॉय मुखर्जी, और ये जो फिल्म आई थी ना, ये बाद में दोबारा बनी थी, इसी नाम से बनी थी, नहीं इस नाम से नहीं बनी थी, किसी और नाम से बनी थी, और लेकिन स्टोरी एग्जैक्टली सेम थी। जॉय मुखर्जी वाला रोल प्ले किया था ऋषि कपूर ने, और आईएस जौहर वाला रोल प्ले किया था उसमें अनुपम खेर ने, और सायरा बानो वाला रोल प्ले किया था उर्मिला मातोंडकर ने। और फिल्म वो वाली ज़्यादा नहीं चली थी, पर ये सुपर हिट रही थी, लता जी की आवाज़ थी, और इसमें साथ में आगे जो पोर्शन है वो रफ़ी साहब गाते हैं, डुएट है ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक है, मजरू साहब के लिरिक्स हैं, और ये गाना जो है बहुत पॉपुलर था। देखते हैं कौन जीतता है, मैं फिर से सुनवाती हूँ। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055।

0: Let's see if there is a winner or not. Hello, G. Hello. मेरी आवाज आ रही है. हेलो जी, आपका नाम?
1: ममता.
0: ममता जी, अच्छा मुझे लगा ये आज का बहुत आसान नहीं है. उस जमाने के लोग जो हैं या जो म्यूजिक के फैंस हैं जिन्हें गाने सुनने का आज तक शौक है, वो जैसे मेरे सामने एक यूथ बैठा है, वो उसको पता ये गाना क्योंकि वो पुराने गाने सुनता है. तो जिनको अच्छे गाने सुनने का शौक है, क्लासिक्स नए या पुराने, बियॉन्ड यू नो, उनको तो ये समझ में आएगा ही, मुझे पता है. पर आई वॉज थिंकिंग लाइक 1967 का है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा या नहीं. देखिए आपको पता है या नहीं. ममता जी गा के हमें सुनाएंगे आगे का, इसके आगे क्या लाइन है, अगर वहां से चलेंगे तो मजा आ जाएगा, वरना सिर्फ कोरस भी सुना सकते हैं.

क्या बात, क्या गाती हैं आप! मुझे लग रहा था आगे गाएंगी तो मैं सुन सकती हूँ, बहुत मजा आ रहा था आपको सुनने में। थोड़ा लिरिक्स इधर उधर थे बट बहुत खूबसूरत गाती हैं आप, मधुर गाती हैं आप। चलिए ममता जी, आप के तो मुझे लगता है कि नंबर नोट करके रखना पड़ेगा आगे ये कहने के लिए, प्लीज कभी कभी कॉल करके सुनाती रहा करें। आप होल्ड पे रहिए, आपकी हम डिटेल्स लेते हैं। एंड बाकी लोगों से मैं ये कहूंगी, हमारे साथ हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं फॉर द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स। स्टूडियो का नंबर फॉर योर पार्टिसिपेशन, योर क्वेश्चन जो उनसे आप पूछना चाहते हैं रहेगा वही 416-593-0, रहेगा वही 416-593-0055। टाइम लगा तो मैं एक और राउंड करूंगी गेस द सॉन्ग का। स्टे ट्यून्ड।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabharwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz
4: 647-453-5353.
5: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
6: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
5: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
7: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
8: Don Valley North Hyundai ke Hyundai upgrade your ride sales event ka fayda uthaye. सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी. ऑफर सिर्फ अगस्त 31st तक है. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
9: Don Valley North Hyundai, doing
8: a proud member of Wayne's Auto Group.
10: Let's turn it up.
11: Let's kick it up.
12: Let's shake it up.

लोगों की तो ठोकर में है ये जमाना। मतलब उस यूथ वाली एज में ना इसी गलतफहमी का तो शिकार होते हैं हर जनरेशन के यूथ, जो अब अधेड़ हैं वो भी, जो अब बुजुर्ग हैं वो भी, जो अब नौजवान हैं ताजे ताजे वो भी। नहीं पर यूं भी है कि गलत फहमियों के साथ साथ ढेर सारी एनर्जी होती है इस एज में, ढेर सारे ख्वाब होते हैं, कुछ कर गुजरने की धुन होती है, दुनिया बदल डालेंगे की जिद होती है, चांद तारे तोड़ लाने की ललक होती है, और वो कोई कहे कहता रहे अपने कान पे तो भाई जू नारेंगे की बेफिक्री बेपरवाही की एक आदत सी भी होती है, जिसे बहुत सारे लोग बुजुर्ग ना समझी भी कह देते हैं, है ना। वेल आई वुड से कि बीइंग अ यूथ कैन बी अ थिंग ऑफ नंबर फॉर सम, यू नो वो जो एज काउंट करते हैं, पर जो एक क्वालिटी प्रॉपर्टी जी एक यूथ में मिलती है ना उसकी एक्चुअली कोई उम्र होती कहाँ है। इट्स हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। बचपना जवानी बुढ़ापा से कहते हैं ना वो है अनजान, जिंदगी जिंदा दिली जिसके लिए है दूसरा नाम, क्या कहते हैं।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD

0: भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा इन ब्रैम्पटन एंड स्कारबरो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है, इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: ऑलराइट, हम आ चुके हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपने अब इस हफ्ते एक दिन एक्स्ट्रा किया इंतजार। मैं बात कर रही हूँ नंबर्स डू वंडर सेगमेंट की। आई नो ट्यूसडे को करते हैं हम 6:15 बजे, पर फिलहाल इस हफ्ते हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबेरॉय जी, जैसे कि मैं अनाउंस किया था कल भी, परसों भी और अभी थोड़ी देर पहले भी, कि फाइनली आज वो समय निकाल पाए हैं और आप सबके साथ जुड़े हैं। तो आपके अगर कोई सवाल रहते हैं, कई बार हमें ऐसे सुनने में आता है कि कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो अनुज जी से, और अनुज जी हमेशा कहते हैं कि ही इज अप फॉर दोज। तो आप बिना हिचक आपके मन में जैसे भी सवाल उठ रहे हैं, चाहे आपको लगता है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे काउंटर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं, और चाहे वो आपके अपनी लाइफ से रिलेटेड हैं और आपके अपने पास कुछ नंबर्स हैं उनके बिना पे आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क हिम। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, 416-593-0055। न्यूमरोलॉजी को समझने में अगर आपको कुछ सवाल हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम हाउस नंबर वाली न्यूमरोलॉजी भी ले चुके हैं, हम यहाँ पे आपकी बर्थ नंबर वाली भी ले चुके हैं, आपकी डेस्टिनी नंबर वाली भी ले चुके हैं। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, बट अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे रहे हैं, जो टिप्स अनुज जी ने दी हैं उस पे रहे हैं, उसका फीडबैक हम ले सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है वो भी, वी आर ओपन टू हैव देम। नंबर अगेन 416-593-0055। अनुज जी वेलकम।
1: थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच। आपको पता है ये मंथ बहुत यूनिक है।
0: मंथ यूनिक है ये मैं पूछना चाहूंगी क्यों, बिसाइड्स के सावन का महीना है, बट उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी। आपने जो सैटरडे को एक मास्टर क्लास की थी, बिगनर्स मास्टर क्लास ऑन वास्तु
1: जी,
0: मेरे पास जिन लिसनर्स ने सुन के अटेंड किया, बाकी लोगों का तो मुझे पता ही नहीं कितने लोगों ने किया होगा, बट जिन लिसनर्स ने अटेंड किया उनमें से कुछ लिसनर्स ने मुझे फीडबैक दिया, एंड यकीन माने वो फीडबैक इतना पॉजिटिव था, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई कुड डायरेक्ट देम टू समवन वेरी गुड एंड फ्रूटफुल। कहीं ना कहीं वो क्रेडिट मुझे दे रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं दोनों हाथों से ले रही थी, बट थैंक यू कि आपने कुछ अच्छा सा गाइड किया मुझे। कई लोगों ने ये कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मास्टर क्लास के तो लाइक नहीं थी, इसके तो उन्हें पैसे चार्ज करने चाहिए थे। किसी ने कहा कि बहुत मन से पढ़ाते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है। किसी ने ये कहा कि आधे घंटे की क्लास में हमें बहुत कुछ पता चल गया। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी, एंड मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि जो आपने करा उसके लिए आपका धन्यवाद।
1: मैम धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये दिस वॉज माई वे टू गिव शो माई लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स 101 फिल्मी नुक्कड़ के ऑडियंस। आप मानेंगे ये क्लास मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए की थी जिन्होंने आपके चैनल के थ्रू मुझे मैसेज भेजा था
0: वास्तु।
1: उसके अलावा मैंने इसको कहीं प्रमोट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो बेसिकली दिस वाज डेडिकेटेड टू फिल्मी नुक्कड़।
0: आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है क्या?
1: आता है।
0: तभी आप इतने इमोशनली डिसीजन लेते हैं। देखिए इतनी न्यूमरोलॉजी तो हम भी सीख गए। इसे कहते हैं सानिध्य, कंपनी का असर। अच्छा कुछ कॉलर्स हैं, बिफोर आई गो हेड विद योर क्वेश्चन कि व्हाई दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, आई वांट टू टेक फ्यू कॉलर्स एंड देन विल जंप ऑन टू योर आंसर। हेलो जी, हेलो, रेडियो बंद करेंगे सर? हेलो, रेडियो बंद करेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको।
2: हेलो,
0: हेलो, आपका नाम बताएंगे सर?
2: हाँ, मेरा नाम अरुण प्रसाद है
0: जी। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुज जी ने जो संडे को क्लास किया था मैंने वो अटेंड किया।
0: ओ वेरी नाइस,
2: और बहुत बहुत आपको बधाई और शुक्रिया, आपने ऐसे नॉलेजेबल पर्सन को हमारे कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज अनुज जी का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इंडिया का, और उन्होंने जो क्लास 2-2.5 घंटे चली काफी सिंपल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वैदिक तरीके से उन्होंने समझाया, हर तरह के चार्ट बताए, लोगों को ये बताया, काफी इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए भी और मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए भी। तो अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जो कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों ने नहीं क्लास अटेंड की है वो फिर से अगर अनुज जी के पास टाइम हो तो आप करें और लोगों को ये दें कि भाई हाउ ईजी इट इज टू डू this vastu shastra and numerology, so I must say thank you so very much Anuj ji for doing this for our community, and Swati ji aapka to bahut bahut, aap hamesha achhi cheezon ko lati hai hamari society ke liye, hamari community ke liye, hamare diaspora ke liye, to अनुज जी ने बहुत ही अच्छा हिंदी अंग्रेजी में किया और बड़े सवालों का जवाब भी दिया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो।
0: मुझे कहते ना तू कौन मैं खामा खा वाला क्रेडिट लेने में बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर ना मैंने सीखा ना मैंने सिखाया, पर वो कहते हैं ना सिर्फ कनेक्ट कराया सीखने और सिखाने वालों को, उसका ही क्रेडिट ले लिया और मुझे बड़ा ऐसा लगा सर पे मैंने ताज पहन लिया।
1: मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है सर, ग्रेटिट्यूड। I'm happy that you enjoyed what you learned and I hope you learned something good and you can make use of it.
2: Absolutely. And you know what? आप इस बार जरूर लोगों को बताएं कि आपकी फीस क्या है, because then लोग will also be interested in going in personal and in detail, because general तो सबके लिए ठीक है लेकिन आप कहाँ पे available हैं, आपका क्या वो है, तो ताकि लोग बाग अपने पर्सनल निजी सवाल आपसे बन कर सके।
1: अरुण सर, डेडिकेटेड टू यू, दिस वीक अगेन दिस सैटरडे 12 o'clock वी विल हैव अनदर क्लास।
0: ओह वाओ,
2: थैंक यू।
0: एंड
1: दिस टाइम इट विल बी ऑन न्यूमरोलॉजी, नॉट वास्तु, बट बिल्कुल बिगनर्स लेवल, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेयर बेसिक्स। एंड आपको एक काम करना है, सब 6473308555 पे लर्न टेक्स्ट कर दीजिए।
0: लर्न, ठीक
1: है। दिस वाज नॉट प्लान्ड सर, दिस इज जस्ट impromptu out of just the love you've given to me.
0: Arun ji, मुझे लगता है जो क्रेडिट आप मुझे दे रहे थे, अब ये क्रेडिट आप अपनी जेब में रख सकते हैं कि आपके वजह से अब बहुत सारे लोगों के लिए एक और क्लास अनाउंस हो गई है। इस बार वास्तु की नहीं, बट इस बार न्यूमरोलॉजी की अनाउंस हो गई है।
2: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
0: एंड मैं फिर से जैसे अनु जी ने कहा रिपीट करना चाहूंगी, लर्न करके आपको टाइप करना है टेक्स्ट, LEARN लर्न, ये टाइप करना है टेक्स्ट उनके सेल नंबर पे, विच इज 6473308555 इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दिस, सो दैट वी नो हाउ मेनी पीपल वॉन्ट टू अटेंड दिस, एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री अगेन।
1: इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड इट इज ओनली डेडिकेटेड टू फिल्मी नुक्कड़।
0: ओह सो स्वीट, चले थैंक यू अरुण जी, एंड गुड लक, अगली बार फिर बात करते हैं जब आप न्यूमरोलॉजी की क्लास अटेंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम?
3: मेरा 21 नवंबर है
0: जी
3: तो मुझे हेल्थ के बारे में और कैरियर के बारे में पूछना था।
0: अच्छा, आपका नाम बताना चाहेंगे या वी कैन पास इट आल्सो इफ यू डोंट वांट टू शेयर?
3: मिनेश MINESH।
0: अच्छा मिनेश, ओके, मिनेश जी की 21 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है।
1: हेल्थ सर, साल भी बताइए प्लीज।
3: 1970।
0: मैं स्टूडियो का नंबर फिर से अनाउंस कर देती हूँ, अगर आपको कुछ बात करनी है अनुज जी से, अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपने क्लास अटेंड करी थी उसके बारे में पूछना है या जो क्लास इन्होंने अनाउंस करी है उसके बारे में कुछ सवाल है, तो स्टूडियो का नंबर 4165930055।
1: सर थोड़ा ख्याल रखिए, इस साल में सेहत ऊपर नीचे जा सकती है, नॉट अ वेरी फेवरेबल टाइम, बट ओवरऑल ठीक है सर। थोड़ा एडवाइजिंग का शौक है, उसको थोड़ा कम रखिए तो अच्छा है, आजकल लोग जल्दी हर्ट हो जाते हैं।
3: ओके जी, दिस इज द नॉर्मल।
1: ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा ध्यान रखिए सर, थोड़ा सा टाइम जो है ना ये साल स्पेशली थोड़ा सा एंटी चल रहा है।
3: ओके
1: ओके
0: ओके। नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी।
4: हेलो,
0: हाँ जी, तो आप नाम बताना चाहें तो नाम बताएं, वरना जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ लें।
4: माय नेम इज कुश।
0: Kush ji,
4: my question is, I'm interested in politics. Is it good for me? My date of birth is the 19th of March, 1969.
0: So 19th of March, 1969, his name is Kush, and he wants to ask, you are interested in politics, whether you want to go into this?
4: I'm interested. So is it good for me? Yeah.
0: Haan, so politics mein interest hai, aap usme jana chahiye ya nahi, right?
4: Right.
0: Chale.
1: Sir, I would say that you are missing key numbers for politics. Politics se zyada business aapke liye acha hai. And thode rigid hai sir. Politics ke liye jo, sorry, I'm pardon my words, but jo chhal kapat chahiye hota hai na, wo aapke paas nahi hai.
0: Par koi
1: manipulation,
0: imandari ki rajniti karna chahe to.
1: ईमानदारी की राजनीति में दो ऑपोजिट चीजें हैं, वो मैच नहीं करती है। सर, आई वुड से यू आर टू ब्लंट अ पर्सन टू बी अ पॉलिटिशियन, ऑनेस्टली।
4: यस, आई एम वेरी ब्लंट,
1: दैट इज व्हाट आई सेड। आपके अंदर वो डिप्लोमेसी नहीं है।
4: राइट,
1: तो
4: आई बिलीव डिप्लोमेसी इज हिपोक्रेसी। that's what I feel.
0: जी so आपकी आवाज कट गई कुछ सर.
4: Yeah, I feel diplomacy is hypocrisy. That's why I don't.
0: अच्छा.
1: सर दोनों ही मिसिंग है ना आपके पास.
4: Right.
1: तो थोड़ा सा you know आप बहुत सिद्धांतवादी पॉलिटिशियन बन सकते हैं मगर फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट यू हैव द स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स हैं आपके पास, ये मैं जरूर बोलूंगा. ओके थैंक यू सर.
0: ओके चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो आपको हमारी आवाज आ रही है जी? हाँ बताएं, नाम बताना चाहें तो नाम बताएं वरना सीधे सवाल पूछ सकते हैं.
5: सीधे सवाल.
0: अच्छा अच्छा ठीक है, सीधे सवाल पूछे. सवाल बीच में गायब हो गया मुझे लग रहा है. हम दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं, हम आपके पास दोबारा आएंगे, एक बार फिर कॉल करें हमें. हेलो हेलो
6: जी, मैं अब अच्छा मेरा नाम जफर है.
0: जी जफर साहब बताएं.
6: और 30 अक्टूबर 1962.
0: अच्छा 1962 30th October.
6: हाँ जी. मेरे हालात कब ठीक होंगे?
0: कौन से हालात? रिलेशनशिप वाले, करियर वाले, सेहत वाले?
6: सारे.
0: अच्छा जिंदगी के हालात कब ठीक होंगे?
1: सर क्या काम करते हैं आप?
6: मैं टैक्सी चलाता.
1: सर ज्ञानी आदमी है आप, कुछ ज्ञान से रिलेटेड काम कीजिए तो आपके लिए अच्छा है.
0: पढ़े पढ़ाएं.
1: सर एडवाइजिंग का काम करिए किसी भी तरह के, आपके लिए बहुत अच्छा है ये. और थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखिए सर, गुस्से से ज़्यादा जुबान पे काबू रखिए. आप जुबान से ही बहुत दुश्मन बना लेते हैं. थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दें सर. और जहाँ तक टाइम की बात है, ये साल आपके लिए अच्छा है, अगला साल भी अच्छा रहेगा, आपके हालात में काफी सुधार देखने को मिलेगा.
6: जी अच्छी बात.
1: ठीक है सर.
6: ठीक है. यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करें.
1: क्या चीज सर दोबारा बोले?
6: कोई पढ़ाई लिखाई का काम करें.
1: पढ़ाई लिखाई का, कोई एडवाइजरी का, किसी को कंसल्टेशन का काम. ज्ञान बहुत है आपके पास, नॉलेज बहुत है, उसको यूज कीजिए.
6: जी अच्छी बात.
1: ठीक है.
6: ठीक है. थैंक यू.
0: मैं बस ये कहना चाहूंगी जो लोग कॉल कर रहे हैं थोड़ा हमारे साथ पेशेंस रखें, क्योंकि हम एक एक करके कॉल लेते हैं. आई नो सबकी कॉल एक साथ नहीं ले सकते हैं, थोड़ा पेशेंटली आप डायल करें, रखें नंबर, तो हमारे लिए आसान होता है. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ.
7: हेलो जी.
0: हेलो जी आपका नाम?
7: मेरा नाम पूजा है. और मैं ये मेरी बर्थडे 1961 नवंबर. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं लॉ सूट फाइल करने वाली हूँ तो उसमें मैं सक्सेस होगी कि नहीं होगी?
0: कौन सा नवंबर बताया आपने 1961 ईयर के साथ?
7: 26 नवंबर.
0: तो आप किसी के लिए लॉ सूट फाइल कर रही हैं, किसी के अगेंस्ट, और आप पूछना चाह रही हैं क्या
7: अगेंस्ट फाइल कर रही हूँ तो मेरा सक्सेस होगा कि नहीं?
1: मैम 1951 बताया कि 61.
0: 61. मैं मीनवाइल स्टूडियो के नंबर फिर से सबको याद दिला दूं, 416-593-0055.
1: इस साल रुक जाए तो चांसेस बढ़ जाएंगे. अभी थोड़ा सा पीरियड अच्छा नहीं है, अगले साल अच्छा टाइम आएगा.
7: अगले साल?
1: जी
7: अगले मींस नवंबर 26 के बाद.
1: नहीं साल बदलने के बाद 2027 में. जी
7: ओके जी थैंक यू.
0: ऑलराइट नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी. हेलो.
8: हाय.
0: आप रेडियो थोड़ा बंद करेंगे तो आपको सुनने में आसानी होगी. आपका नाम बताना चाहें तो नाम, वरना सवाल पूछें सीधे.
8: डेट ऑफ बर्थ?
1: ये गो अहेड.
8: 3rd October 1961.
0: जी और सवाल?
8: What is the lucky number and health and retirement?
0: अच्छा लकी नंबर क्या है? ये मुझे लग रहा है लोटो खरीदने वाली है, लॉटरी. लकी नंबर बताएं भाई.
1: मैम आपके लकी नंबर्स है 1 and 5.
8: ओह थैंक यू सो मच.
1: ओके
8: And what about
1: number
8: my
1: to avoid is number six.
0: Number to avoid is number six. ये जरूर ये भी ध्यान रखें. कई बार क्या होता है हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं.
8: Okay. And could you please tell me about my health and retirement?
1: Ma'am, health is okay. थोड़ा सा, you know, I will advise you something which will be very good for you. You okay. don't have to have a last word in an argument. Sometimes keeping quiet is also very, very good.
8: Okay.
1: Okay?
8: Okay.
1: All right. Thank you.
8: Thank you so much.
0: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो. मुझे आवाज नहीं आ रही है. हेलो. कैन यू हियर अस? ये तो हमें लग रहा है शायद मिस डायल है कोई. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ दोबारा कॉल करिएगा. हेलो.
5: हेलो.
0: हाँ जी. आपका सवाल, नाम बताना चाहें तो नाम भी बताएं.
5: 1993.
0: December 2nd, 1993. सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे.
5: फ्यूचर. Yeah, in husband with husband future.
0: Husband के साथ future कैसा है?
1: बस यही एक sector कमजोर है.
0: यही एक sector. जब तभी वो पूछ भी रहे हैं.
1: Relationship problematic है.
5: Relationship
1: में काफी problem है, challenging है. मैम आपके key numbers है 2 and 9. 2 number चंद्रमा का होता है, water होता है. 9 number मंगल होता है, fire होता है. तो आप खुद सोचिए कि पानी और fire जब मिलेंगे तो क्या होगा. पानी भी उड़ जाएगा, आग भी बुझ जाएगी. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़े मूड स्विंग्स पे काबू रखिए, गुस्से पे काबू रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा.
5: ओ, इसका फ्यूचर
0: फ्यूचर पे क्वेश्चन है.
1: लंबी लाइनअप है अभी यहाँ पर. मैम एक क्वेश्चन पर प्लीज पर कॉल.
0: ठीक है. आपको मैं अनुजी का नंबर जरूर देती हूँ. आप आफ्टर शो उनसे बात कर सकते हैं. 6473308555. और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना भी चाहते हैं, कोई भी जो सुन रहे हैं, तो कमिंग सैटरडे 12 बजे एक फ्री मास्टर क्लास है न्यूमरोलॉजी की. इस बार वो आप अटेंड कर सकते हैं. आपको सिर्फ उनको टेक्स्ट करना है लर्न लिख के, LEAR लर्न. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो.
9: हेलो.
0: हाँ जी. आपका सवाल पूछ सकते हैं, नाम बताना चाहें तो नाम भी.
9: हाय.
0: हाय.
9: Am I audible?
0: Yes, you are.
9: Okay. So my date of birth is 24 January 1974. और मेरा सवाल है कि मेरा करियर या बिजनेस दोनों में कौन सा बेहतर रहेगा, मतलब जॉब या बिजनेस, और मुझे क्या करना चाहिए आगे.
1: मैम अगर आप 74 बॉर्न है, अब ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है तो आप थोड़ा लेट हो गए. यू वर बॉर्न बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन. यू सपोज यू ऑट टू डू वेल. मैम अगर आप गुड नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे.
9: सीरियसली, मतलब आई रियली कुडंट गेट दैट.
1: यू आर अ 6 and 1 कॉम्बिनेशन, वीनस एंड सूर्य. देयर कैन वन ऑफ द बेस्ट.
9: ओके.
1: ओके. Anything to do with beauty, anything to do with materialistic things, anything to do with leadership, that is your strength.
9: Mm-hmm.
1: Anything जहाँ पर luxury involved होती ना, चाहे वो घर हो या casino हो या bar हो या fancy restaurants हो, that is your forte. That is where you should go.
9: I have nothing to do in that sector as of now.
1: So, ma'am, beauty, but I wanted to beauty, woman's jewelry, artificial jewelry or clothes, mm-hmm. anything, glamour, media, fashion.
9: Okay.
1: Okay. Just to let you know, just to tell you, ma'am, your numbers are shared with Steve Jobs. He's same combination as you.
9: Oh, wow. Okay. That sounds great.
1: God bless you. Right, you can do you. Tremendously well.
9: But then, can you guide? Should it be a business or a job?
1: Business, definitely business.
9: Definitely business. Mm-hmm. Okay.
0: जब आपका एम्पायर सेट हो जाए तो हमें ना भूलिएगा. आप फिल्मी नुक्कड़ पे ही एडवर्टाइज करेंगी, बस ये ध्यान रखिएगा.
1: नहीं, मेरी मॉर्गेज आप उतारेंगे.
0: चलें.
1: गॉड ब्लेस यू मैम. सी, सक्सेस इफ डिनाइड, ओनली 2 reasons, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्क और रॉन्ग नेम नंबर. इफ यू थिंक यू हैव नॉट रीच द डिजायर्ड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, यू नीड टू कॉल मी ऑफ एयर.
9: I need to do that then.
1: Yes.
9: Because, I think I have a potential, but I haven't really
1: exactly.
9: reached where
1: that
9: I
1: is where go. Numerology excels, you know. That is the mm-hmm. core strength of numerology.
0: Mm-hmm.
9: Okay. I'll take your number.
0: मैं अनाउंस करती हूँ, आप नोट कर सकती हैं 6473300330855. तो 330855, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, वरना ऑफ एयर आप मुझसे ले सकते हैं बाद में. चले चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी.
10: हेलो.
0: हेलो, आप नाम बताएं और क्वेश्चन बताएं अपना.
10: सुमन. सुमन.
0: सुमन जी.
10: सुमन. August 18, 1957.
0: जी.
10: फ्यूचर कैसे होगा,
0: भविष्य कैसे होगा जी, भविष्य की चिंता.
1: डेट दोबारा बोलिए. 1967 आगे.
0: अगस्त 18.

0: ऊपर वाला हिम्मत देगा आपको.
1: दैट्स आइडिया कि आप थोड़ा ध्यान रखें. नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ चलिए बताएं नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, या अगर कोई और सवाल है वो भी पूछ सकते हैं. आपको हमारी आवाज आ रही है?
2: हेलो.
1: हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं मैम.
2: यस, दिस इज माय नेम इज शीला पुरी एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 May 1971 एंड माय क्वेश्चन इज अबाउट माय हेल्थ.
0: ओके, कुड यू रिपीट your date of birth, please. I couldn't hear.
2: 15 May 1971.
0: Ma'am, the biggest challenge is your name. I could see your name. I'll not repeat on air. Your name is absolutely anti to your date of birth. Your date of birth is good, strong, but your name number does not match. Absolutely, it's anti. That will give you a hindrance in life. You need to consult somebody and correct your name.
2: Okay, so how do I do that? I have to go first.
1: आप numerologist हैं हमारे भाई, उनसे बात करिए. आप उनसे बात कर सकती हैं off air 647-330-8555. इस नंबर पर उनसे बात करेंगे. He may have a suggestion for you. एक बार
2: सुनिए. I've also texted already the profession on Saturday.
1: Okay, thank you so much.
0: We will be in touch on Saturday then.
2: Okay, thank you so much.
0: Thanks, ma'am. Bye.
1: Okay, next question. Hello, ji.
3: Hello.
1: Hello. Yes, what's your question?
3: Can you hear me?
1: Yeah, हम बिल्कुल नाम भी बताएं, सवाल भी बताएं, जो बताना चाहें.
3: Okay. मैं अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहता हूँ. मेरा डेट ऑफ बर्थ है February 10, 1983. जी. ये जो नंबर की बाहर हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि अपना लकी नंबर जानो.
0: बिल्कुल सर, 1983 तो मुझे सुना, बाकी नहीं सुना.
1: February 10.
0: ओके,
3: February 10, 1983.
0: सो यू नीड टू अवॉइड टू नंबर्स, विच इज नंबर 3 and नंबर 8.
3: ओके,
0: ये दो नंबर्स आपके लिए एंटी हैं. बाकी बेस्ट फ्रेंड्स नंबर आर नंबर 1, एनीथिंग नंबर 1, 3, 5, 7, एवरीथिंग इज गुड. जस्ट अवॉइड दीज टू नंबर
3: 6 and 3.
0: ओके,
3: ऑल राइट.
0: 8 इज शनि, यू आर बॉर्न 1, तो शनि इज आंटी.
3: तो सो 1983 इज माय बर्थ.
0: आई गॉट यू सर. सो योर एंटी नंबर्स आर, एज आई सेड, 8 and 3. रेस्ट ऑल आर योर फ्रेंड्स.
3: ओके. All right, thank you, sir.
0: You're
1: thank
0: welcome.
1: You. चलते हैं next caller की तरफ. Hello, जी. Hello. Can you hear us? मुझे लग रहा है हमारी आवाज़ पता नहीं पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही. चलते हैं next caller की तरफ. हाँ, hello. आवाज़ आई थोड़ी थोड़ी. आपको आ रही है हमारी आवाज़? हम दूसरे caller की तरफ चलते हैं. Hello, जी. Can you hear us? स्टूडियो का नंबर 4165930055. इफ यू कैन यू हियर अस. हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है. अगर आप हेलो बोलेंगे तो आएगी, क्योंकि हमें बाकी आवाजें आ रही, तो लाइन में प्रॉब्लम नहीं है हमारी, हमें ये पता है. हेलो. चलिए मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ अनुज जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलती हूँ. आई हैव अ क्वेश्चन and we'll see if we can take more callers.
0: Sure.
1: Aap log jo call kar rahe hain, please stay tuned. We may be taking more calls. Thank you.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter. It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months. Or up Tundra 4x4 Crew Max TRD lease kijiye from $173 weekly for 36 months. Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye Markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wayne's Auto Group।
0: फायदा उठाएं ऑफिस के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 3.94%, 5 years fixed 4.04%, 5 years variable 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500। कॉल अमित खुराना एट 6473412785। दैट्स 6473412785।
2: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
3: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
6: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट. फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
4: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: You are tuned in to CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.
8: All right, Filmy Nukkad, CMR 101.3 FM per you are with Swati, Paswini and our Mr. Numerologist Anuj Raj in the segment Numbers Do Wonders. Callers le rahe the, hum koshish karte hain jitne bhi calls abhi le payenge, par agar aaj aapki call hum nahi le paate hain due to टाइम कंस्ट्रेंट, 7 बजे शो ओवर हो जाता है, तो आप प्लीज़ अगले हफ्ते फिर हमारे साथ जुड़िएगा 6:15 बजे. अनुज जी हमारे साथ होते हैं, तब अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा या ऑफ एयर आप उनको कॉल कर सकते हैं 6473308555. एंड डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट हिम जस्ट लर्न. तो आपको टेक्स्ट करना है उनको इस सेल नंबर पर लर्न इफ़ यू वॉन्ट टू अटेंड हिज मास्टर क्लास, बिगनर्स मास्टर क्लास ऑन न्यूमरोलॉजी इन दिस कमिंग, ऑन दिस कमिंग सैटरडे 12 बजे. फ्री है बिल्कुल, आप अटेंड कर सकते हैं. तो एक कॉलर और लेते हैं. हेलो जी. हेलो, कैन यू हियर अस?
9: हेलो.
8: हेलो, हाँ जी, आपका नाम सर?
9: माय नेम इज नील.
8: हाँ जी नील, आप बताएं कि क्या क्वेश्चन है. क्विकली, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, जल्दी से बताएं.
9: ओके, 9 अप्रैल 1986, रिलेशन एंड बिजनेस.
10: सो ग्रेट.
8: ग्रेट
10: इन वन वर्ड.
9: ओह रियली?
10: यस, वेरी वेरी स्ट्रांग कॉम्बिनेशन सर, 9 and 1. बस थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कीजिए, अग्रेशन पे कंट्रोल रखिए. And believe me, you are a born businessman.
8: चलें एक और कॉल लेने की. जी आप.
9: Thank you.
8: ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी.
11: नाम है.
8: हेलो.
11: नाम है कृष्ण गोविंद प्रसाद.
8: कृष्ण गोविंद प्रसाद जी.
11: डेट ऑफ बर्थ जुलाई 18 2011. फ्यूचर कैसा होगा?
8: ये तो अभी 16 साल के बच्चे हैं,
10: बच्चों का मैं
8: अभी इतनी जल्दी नहीं या इतना. आई अंडरस्टैंड आप बीइंग अ मदर, शायद क्यूरियोसिटी होती है. आई थिंक इट्स टू अर्ली.
10: मेडिकल फील्ड में डालिए, बहुत अच्छी सर्जन बन सकती है ये.
11: लड़का? लड़का है.
10: बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है फिर.
11: अच्छा ठीक है. और सुमन, ये देखिए सुमन
8: जी. जी एक बार में एक सवाल आप अगले हफ्ते प्लीज पूछिएगा. थैंक यू सो मच. अनुज जी मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ अब, और बाकी प्लीज जो कॉल कर रहे हैं अगर आपकी कॉल नहीं उठती है अगले हफ्ते फिर हमें हमारे साथ जुड़िएगा. हेलो.
12: हेलो.
8: हाँ जी, क्विकली अपना क्वेश्चन पूछ लें.
12: 16 मार्च 1966.
8: एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन?
12: प्रॉब्लम्स नेवर एंडिंग.
8: जिंदगी ने जीना दूभर कर रखा है, यहाँ से वहां से सब जगह से थपेड़े.
10: प्रॉब्लम्स नेवर एंडिंग बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन. स्टॉप योर ओवर थिंकिंग मोड.
12: ओके,
10: दैट इज अ प्रॉब्लम. मैम दिमाग को जितना खाली करेंगे ना.
12: हाँ.
10: देखिए दो प्रॉब्लम्स है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर ट्रस्टिंग. फिर धोखे पड़ते हैं.
12: बिल्कुल है, वही है.
10: बस इन दो चीजों पर कंट्रोल कीजिए. आप ये मान के चल लीजिए पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, ठीक है? जो है उसको संभाल के रखिए.
12: ओके जी, थैंक यू.
10: डोंट ओवर ट्रस्ट.
12: ओके, थैंक यू.
8: ऑल राइट, थैंक यू सो मच अनुज जी जुड़ने के लिए हमारे साथ.
10: यू वेरी वेलकम मैम. एंड आज कुछ ज्ञान की बात हम कर ही नहीं पाए.
8: हाँ, आज हम कॉलर्स लेते रहे और उनको हम मदद करते रहे, बट थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम.
10: एंड it's an offer for everybody, all the listeners. Just text me learn and hum log milenge Saturday ko, and I will even take your personal questions. And yes, we will connect on Saturday.
8: Chalein.
10: Look forward to it.
8: And number is 647-330-8555.

वेलिंगटन नेशनल यू डे है आज, और ये गाना मुझे उस टाइम का याद आया जब हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े यूथ हुआ करते थे। ऑन दिस नोट, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद दिस लवली ट्रैक। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू।

0: 3FM
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। पेशी खिदमत है अब तक की हेडलाइंस। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मकतूल को कर्ज देने वाले 10 अफराद की फहरिस्त तैयार। बलूचिस्तान में बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका, 18 दहशतगर्द हलाक और 3 शहरी जां बहक। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए पानी और सीवरेज के बिलों की शरह में इजाफा कर दिया। रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन की मुलाजमा दरियाए सुवां में डूबकर जां बहक, वाकये की तफ्तीश जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 5वें रोज भी जारी, हुकूमत के साथ मुजाकरात ताहाल नाकाम। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद मार्च के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, 20 लाख अफराद लाने का दावा। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की पाकर टॉप 10 में वापस आ गए। ये थी अब तक की खास खास खबरें। खबरों की तफसील होगी कुछ देर के बाद। जुड़े रहिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के साथ।
3: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meivani with local updates. Halton police seeks help identifying suspect seen entering exiting Oakwell store where a man found dead. Micro shelter community being built in Scarborough. Hockey Canada extends ban of all but one player acquitted of sexual assault in 2018 case. New Peel regional police helicopter entering into service. 3 lithium-ion fires occurred in the city in the past 24 hours, Toronto Fire Safety Department confirms. Anti-immigration speaker banned from UK still planning to attend Ontario conference. Another 6 whales being moved out of marine land headed to US aquariums. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
4: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 198 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 198 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। वेंसडे राजीव तलवार साहब मॉर्गेज की मालूमात आप तक पहुंचाया करते हैं। डेट कॉन्सलेशन के वाले से आयशा मनवर साहब हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ ICC इमिग्रेशन से MD भाई साहब मुलाकात करवाएंगे। खबरें 7:30 बजे भी आपके लिए पेश करेंगे और फिर तफसीली खबरें 8 बजे भी आपके लिए बिलाल तमान साहब पेश किया करते हैं। और भी कुछ मौजूद रहेंगे, हमारी भी आपकी बातें होंगी, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे साथ रहना है। अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे प्यारे सामईन, 12 अगस्त अगर तारीख के हवाले से देखें तो 12 अगस्त 1947 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी तौर पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहने की मंजूरी दी गई थी। 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर सार असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी। इस करारदाद के जरिए फैसला किया गया कि सरकारी कार्रवाइयों, दस्तावेजात, खतूत और मरासलत में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नाम से मुखातिब किया जाए। यह तरीका खिताब 15 अगस्त 1947 से सरकारी तौर पर नाफिज होना था। करारदाद लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म ने पेश की थी। इसके अलावा बुनियादी हकूक और अकलियतों के लिए खसूसी कमेटी कायम की गई थी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड मिनोरिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसी रोज़ दस्तूर सार असम्बली ने एक अहम कमेटी जिसका नाम आपको बताया, जिसमें इसका मकसद था कि पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक और अकलियतों के हकूक के बारे में असम्बली को सिफारिशात देना था। इस कमेटी में मुख्तलिफ इलाकों तबकात की नुमाइंदगी रखी गई थी ताकि नई रियासत में शहरियों और अकलियतों के हकूक के तहफ़ुज़ के लिए मुनासिब कानूनी इकदाम तजवीज़ किए जा सकें। असेंबली के रिकॉर्ड के मुताबिक सदर असेंबली को मजीद अफराद को भी कमेटी में शामिल करने का इख्तियार दिया गया था। इसके अलावा नई रियासत के आईनी ढांचे की बुनियाद रखने का आगाज भी 12 अगस्त 1947 को हुआ था। इकदाम इसलिए भी अहम थे कि पाकिस्तान भी बाकायदा तौर पर वजूद में आने से सिर्फ 2 दिन दूर था। दस्तूर साज असेंबली बैकवक्त कानून साज इदारे के तौर पर काम करने और मुस्तकबिल के आइन की तैयारी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। यानी 12 अगस्त 1947 का सबसे अहम पैगाम यह था कि पाकिस्तान सिर्फ एक नई रियासत के तौर पर वजूद नहीं आ रहा, बल्कि इसके लिए शुरू ही से आइनी निज़ाम, शहरी हकूक और अकलियतों के तहफ़ुज़ की बुनियाद भी रखी जा रही थी। इसी रोज कायदे-ए-आज़म के सरकारी इलाकों की मंजूरी और बुनियादी हकूक और अकलियतों से मुतल्लिक कमेटी का क्याम भी अमल में आया। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM स्टूडियोज में आपके नंबर 4165930003। 14 अगस्त को बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे केक कटिंग सेरेमनी जो है वो होने जा रही है मिसिसागा सिटी हॉल में, और 10 बजे शार्प जो है ये केक कटिंग होगी और इसमें आप शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिस रूम में होगी वो उसमें महदूद तादाद में लोग आ सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप आना चाहते हैं उस केक कटिंग सेरेमनी में शिरकत करना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए और मैं आज कोशिश करूंगा आरिफ शेख साहब को भी ऑनर लूँ और उनसे इस हवाले से बात करें, तो फिर हम आपको बताएंगे कहाँ पे आना है और आप ज़रूर तशरीफ लाइएगा। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें शिरकत करें। 14 अगस्त को सिटी हॉल मिसिसागा में ठीक 10 बजे केक कटिंग सेरेमनी होने जा रही। 24 घंटे हमारे निशात पर पाकिस्तान.fm पे सुन सकते हैं, फेसबुक पर मेरा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से भी लाइक कीजिए, ट्यून इन पर हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फोन के जरिए सुनना चाहें 6475060003 पे कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीवीजन चैनल टोरंटो 360 टीवी, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल जोम बस के साथ साथ एपल टीवी, अमेजन फायर टीवी और रोकू टीवी के साथ साथ टू बल्ब के थ्रू रॉजर्स पर भी हमारे निशात देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप से बजाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी, एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरनेट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। हमारा प्रोग्राम जो इस वक्त आप रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM पे देख रहे सुन रहे हैं, ये आप CMR 101.3 के साथ साथ हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे लाइव देख भी सकते हैं। जी हाँ, इसको हम उस पर टेलीकास्ट भी साथ साथ कर रहे हैं। रियल सेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 6472957861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए। नई मेल एड्रेस भी टेक्स कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, नई मेल एड्रेस टेक्स कर दीजिए तला भट्टी 6472957861 6472957861। बाबुल इल्म बनी हाशिम सोसाइटी मस्जिद अली 900 ग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट मिसाका के ज़ेर एहतमाम आज 12 अगस्त को शबीए तबूत रसूलुल्लाह ये खास तौर पे बरामद किया जाएगा। खिताबत है मजहबी स्कॉलर हैं जरी हैदर जैदी साहब और सलाम अकील हैदर, सोज खानी जुल्फकार हुसैन जाफरी, ताबूत नोहा जुल्फकार हुसैन जाफरी, नोहा खानी अली रजा आबिदी। आप ज़रूर इन मजालस में शिरकत कीजिए, बाद नमाज मगरब ये मजालस होती हैं और नज़र का भी अहतमाम है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि मस्जिद की तमीर के लिए खास तौर पर आप डोनेशन दीजिए, और फ्यूनल जो मेम्बरशिप है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, उसमें भी आप ज़रूर शिरकत कर लीजिए। हज के ड्रॉ के लिए भी आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, $500 उसकी पार्टिसिपेशन फ़ी है और 30,000 दो लोगों के एक्सपेंसेस हैं, तीन ड्रॉ जो है इसमें किए जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मुश्ताक जादी साहब 4169850293। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट हूं दोस्त अरशद भट्टी।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
2: दिल से दिल तक अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4168143600। आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, आवाज जो रूह के तारों को छेड़। जी हाँ, ये आवाज है उस्ताद राहत फतेह अली खान और शाह जमान खान की, जो आ रहे हैं आपके शहर टोरंटो में एट प्रेस्टीजियस स्कोशिया अरेना ऑन 27 सितंबर संडे 7 PM। फॉर टिकट्स लॉग ऑन टू ticketmaster.ca। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल वाजिद मलिक 4168273333। ऑफिशियल मीडिया पार्टनर रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एंड टोरंटो 360 टीवी, प्रेजेंटेड बाय ट्रू साउंड लाइव। الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پیپ ایونیو. سہجا کیرلا آیورویدک ہربل کنسلٹیشن سینٹر, جہاں کیرلا ویدیا رتنا پی وی راج, جو کہ خاندانی وید ہیں, نبض دیکھ کر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. بے شمار مریض ان کی ہربل دواؤں سے شفایاب ہو چکے ہیں. استھما, الرجی, سکن پرابلمز, کمر یا گھٹنوں کا درد, آرتھرائٹس, ہیئر پرابلم, گیس پرابلم, السر, لیڈیز پرابلم, ویٹ لاس, سورسز اور ساری ہی بیماریوں کا علاج کر کے ان کا جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں. برمپٹن اور اسکارپرو دو لوکیشن سے آپ کو سرو کر رہے ہیں. کال کیجیے 6473278111. It's 6473278111.
4: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho, Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 9058191001, 9058191001, license number 12374.
0: جی ہاں, 9058191001 راجیو دلوار صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. ویری رینؤنڈ اینڈ ویری ویری پاپولر ساؤتھ ایشین بروکر ہیں مارگیجز کے حوالے سے, اور مارگیج کا کوئی بھی معاملہ, ویری ٹرسٹڈ پرسن, آپ ان سے رابطہ کر لیجیے. اور اگر یہ آپ کو فون پہ بتا دیں گے آپ کی مارگیج ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اگر کہیں گے ہو سکتی ہے تو فار شور ہو جائے گی. لاسٹ منٹ کی مارگیج کے اسپیشلسٹ ہیں, نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں. آج کل مارگیج کے بہت مسائل ہیں. 9058191001 ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید کہیں گے. راجیو بھائی, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
5: تھینک یو بٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہائی لسنرز, کیسے ہیں آپ سب؟
0: بہت شکریہ. اپریزلز کا بڑا مسئلہ ہے, یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس کی, اور کوئی خاص علاقے یا ریجن ہے جہاں اپریزل بہت کم آ رہی ہے؟
5: دیکھیے, اپریزل تو تھرو آؤٹ کینیڈا کم ہے سر. پچھلے 2-3 سالوں سے جو چل رہا ہے سب کو معلوم ہے, ہم ہر ہفتے بات بھی کرتے ہیں. لیکن اگر سب سے زیادہ کہیں پرابلم آ رہی ہے آنٹیریو کی میں اگر بات کروں تو دا موسٹ سفرنگ سٹیز جی ٹی اے ویسٹ کے اندر 905 ایریا کوڈ میں برمپٹن از دا ورسٹ سفرنگ, اور آس پاس کے جتنے بھی اس کے علاقے ہیں ان کے اوپر کافی اثر ہے. کوئی بھی پراپرٹی میرے پاس بھٹی صاحب, جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, جتنے بھی کال آتی ہیں, اس میں سے 60-70% کالز آر فرام برمپٹن یا 905 ایریا سے, جنہوں نے پچھلے 3-4-5 سال پہلے 1.1, 1.2, 1.3 کا گھر لیا تھا. وہ 9 لاکھ 10 لاکھ 1 ملین 1.1 تک رہ گیا ہے. 20-25% ہر جگہ پہ ویلیو ڈاؤن ہے, اور لوگوں کی مورگیج کی ویلیو آج کی ڈیٹ میں عام بات ہے کہ گھر کی ویلیو 1 ملین, مورگیج 1.2 کی, عام بات ہے. تو ایسے لوگوں کو تو سر کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ایک ہی پراپرٹی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی سجیشن یہ ہے کہ آپ کو اگر فکس کرانا ہے اپنے آپ کو, اور اگر آپ کی ویلیو گر گئی ہے گھر کی بیکاز آف واٹ ایور از ہیپننگ ان دی نارتھ امریکن اینڈ کینیڈین اکانمی, آپ صرف اپنی مورگیج کو اور 1 سال پے کرتے ہیں سر. اس سے بچنے کا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لینڈر آپ کو منع نہ کر دے. دیکھیے, میرے پاس بہت فون آ رہے ہیں اسپیشلی برمپٹن اور آس پاس کے علاقوں سے جہاں پہ لینڈرز رینیو نہیں کر رہے مورگیج. साफ बोल रहे हैं 3 महीने पहले टेक योर मोगे समराज. ऐसे लोग अगर आपके साथ ये हो रहा है कॉल मी बैक, वी हैव समथिंग विच वी विल टॉक वन ऑन वन. उसके अलावा अगर आप लोगों ने परचेज बुक की हुई है आने वाले 6 से 8 महीने में, अगर आपकी परचेज आ रही है, सोचें कि अगर आप फरवरी मार्च तक आपकी परचेज आ रही है और आपको मॉर्गेज तो अभी कुछ किया नहीं होगा उसके लिए, वो लोग करें क्योंकि उनको दिक्कत आने वाली है बिग टाइम सर. और अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर लो, देखिए आम बात है आज की डेट में अच्छे लोग जो 750 पे रहते थे दे आर अराउंड 5, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 560, 570, 580, लेस देन 600 क्रेडिट. तो इनको दिक्कत आ रही है और दिक्कत आएगी रिन्यूअल से पहले, बिग टाइम प्रॉब्लम आएगी. तो वो लोग मेरे पास फोन करें, मैं बताऊंगा आपको कैसे अपना क्रेडिट फिक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और परचेज को कैसे करना है. और अगर बैंक ने मना कर दिया है रिन्यू करने के लिए, वो देखिए साहब अप्रेजल में दिक्कत है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. जब तक वैल्यू नहीं बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस या दूसरा लेंडर टच नहीं करेगा, करेगा तो अप्रेज वैल्यू पे करेगा. और अगर वैल्यू डाउन है तो आपके पास पैसे की शॉर्टेज है, सो नथिंग कैन हैपन टू सेव योर होम. द ओनली थिंग यू कैन डू इज अगर आप कुछ कर सकते हैं तो टाइमली उसको फिक्स करें साहब. मोर्गेज को रीस्ट्रक्चर करने के बहुत तरीके होते हैं, हजार तरीके होते हैं जो आम पब्लिक को नहीं मालूम है. कॉल मी बैक, आई विल एजुकेट यू, आई विल गाइड यू. और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर आने वाले 6, 8 या 2 साल में अपने घर को बेचने की आपको लगता है कि बेचने की नौबत आएगी तो डू नॉट पुट एनी मनी इनटू रेनोवेशन, इट विल नॉट कम बैक. अगर आप सोचें कि मैं इसको थोड़ा और ठीक कर दूं तो ये जल्दी बिक जाएगा सर, आज की डेट में तो बिके कुछ नहीं था, तो और पैसे डाल के उसको ना वेस्ट करें. कॉल मी बैक, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा. देखिए कितनी भी आप खराब सिचुएशन लेके आएंगे ना, बट इस क्लाइंट मेरे पास लाते हैं ऑलमोस्ट मुझे 24-25 साल हो गए इस बिजनेस में, हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देंगे, बताएंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. बट कॉल इन टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आपका घर इस समय स्टेक पे है, स्पेशली ब्रैम्पटन और आसपास के एरियाज में जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी है. कॉल मी बैक इन कॉन्फिडेंस, जस्ट अ 5 मिनट कॉल कैन सेव योर होम एंड सेव यू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. थैंक यू वेरी मच.
0: 9058191001, 9058191001. छोटी सी बस एक बात जरा से बता दीजिए, रीफाइनेंसिंग जब बात कर रहे होते हैं तो इक्विटी होगी तो ही रीफाइनेंस होगा, अदरवाइज मुश्किल.
5: रीफाइनेंस तो इक्विटी होगी तो कुछ होगा, उसके बिना इक्विटी के अलावा कुछ नहीं हो सकता. हमारे पास और बहुत कुछ है. देखिए लेट्स से मेरे पास कोई क्लाइंट आता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अगर कोई क्लाइंट आता है इक्विटी नहीं है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस कर रहा है, हो सकता है मैं आपको 50,000 से 1,00,000 का लोन दिला दूं, लोन दिला दूं आप जिसके अंदर घर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप अपने इस सारे चीजों को कवर कर सकते हैं. कॉल अस बैक, सी व्हाट आई डू फॉर यू इन जस्ट अ 5 मिनट.
0: और दूसरी बात यह है कि कोई ना कोई हल तो होता ही, मतलब आप कहते हैं ना कि कोई टनल के एंड पे रोशनी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोई ना कोई हल निकाल देंगे उनके लिए कुछ ना कुछ.
5: देखिए सर, देखिए हमने इतनी इम्पॉसिबल मोर्गेजेस कर दिए हजारों हजार आज 25 सालों में, आप आइए देखिए व्हाट आई कैन डू फॉर यू. कॉल मी एंड ट्राई.
0: नंबर नोट करें 9058191001, 9058191001. थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं. थैंक यू
5: सर, इंशाल्लाह
0: बहुत शुक्रिया. 9058191001, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM में आपका होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी. असल नाम, तेज बारिश हो रही है इस वक्त. नॉर्मली यहाँ तो आपको पता है कि घर बड़े बंद होते हैं, कुछ बाहर की आवाज कम आती है, लेकिन इतनी तेज बारिश इस वक्त हमें स्टूडियो में यहाँ पे आवाज आ रही है, पता नहीं शीशों के साथ जो है वो टकरा रही है, जो है बूंदे तो नहीं कहेंगे एक किस्म की, और स्ट्रेट बारिश है आज. नॉर्मली जब हवा होती है तो थोड़ा सा रुख के ऊपर बारिश होती है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिर रही हो सीधी सीधी, इतनी तेज़ और सीधी बारिश है, बिल्कुल स्ट्रेट बारिश हो रही है. काफ़ी इस वक्त मिसागा में तो बहुत शदीद बारिश हो रही है, तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता पानी जमा हो जाए, कहीं कहीं हो भी जाता है, फ्लडिंग हो भी जाती है, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो तो ठीक लगती है, लेकिन थोड़ा सा मौसम कम अज़ कम अच्छा हो गया. अच्छा जनाब, चलिए पहले पंजाब, मेरा ताल्लुक मुल्तान से, तो आज मैंने खबर पढ़ी तो मुल्तान एयरपोर्ट से एक दिन में 37 प्रवासों का नया रिकॉर्ड है, तो मैं इस थोड़ी देर में आपको इसकी तफसील बताता हूं, लेकिन इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं हम आज की शायरी.
6: जिंदगी गुजरने में देर कितनी लगती है, आशियां उजड़ने में देर कितनी लगती है, मौसमों से करते हो जाने जा गिला यूं ही, आदमी बदलने में देर कितनी लगती है, याद की चताओं पर आंख जब भी रोती है, रूह के निकलने में देर कितनी लगती है, जिंदगी की राहों पर क्यों उदास फिरते हो? जिंदगी बदलने में देर कितनी लगती है? हिचकियां से आती हैं, याद आ रहे हो तुम, सांस के उखड़ने में देर कितनी लगती है? तुमसे जो मोहब्बत है साथ साथ चलते हैं, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है? आज तो सितारे हैं आपकी फजाओं में, आज तो सितारे हैं आपके फजाओं में, आसमां से गिरने में देर कितनी लगती है? मौसमों से करते हो जाने जा गिला यूं ही, आदमी बदलने में देर कितनी लगती है?

ट्रिलियन रुपए का कर्ज मुकर्रर मदद से पहले अदा कर दिया है। एक साल में कर्जों पर सूद के खर्चात में तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए की कमी हुई है। हुकूमती आमदन में सूद अदायगी का बोझ 61% से कम होकर 35% रह गया है। पाकिस्तान ने मुसलसल 3 साल प्राइमरी बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी कैपिटल मार्केट में वापस आया है। पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड की तलब जारी करदा हजम से तकरीबन 5 गुना ज्यादा रही है। S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग 20 स्टील कर दी है। S&P की जानब से पाकिस्तान की रेटिंग तकरीबन 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ सही नज़र आ रही है। लोग फिर क्यों जिक्र करते हैं कि जी इतने ज़्यादा कर्ज इस गवर्नमेंट ने लिए हैं? अब अल्लाह जानता है ये सिर्फ फिगर्स का हेर फेर है या वाकई पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर तो बहुत कमाल की बात है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: 14 अगस्त सुबह 10 बजे सिटी हॉल मिसागा में केकटिंग सेरेमनी, मेयर कैरिन पेरिश और काउंसलर्स मौजूद होंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, जरूर शिरकत कीजिए। किसी किस्म की मालूमात चाहिए हूँ आप मुझे कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए 4163005600, 4163505600 या आरिफ शेख साहब से आप रब्ता कर लीजिए 4166782743। 24 घंटे हमारी निशात बड़ी पाकिस्तान .fm सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल, जूम बस के साथ साथ एपल टीवी, अमेजन फायर टीवी, रोकू टीवी के साथ साथ उबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारा निशात देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। ग्रेसेट के वाले कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 6472957861, 6472957861। न्यूज़ आपके लिए मिलाल जवान साहब पेश किया करते हैं। मिलाल जवान साहब ने आज उनसे बात हो रही थी, कुछ तबीयत उनकी नासाज है, शायद उनकी किडनी में स्टोन है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बी करीम उनको सेहत दे, हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। तो चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब बिलाल जमान साहब।
1: You're listening to CMR FM 101.3।
2: न्यूज़ के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
2: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
4: ये तफसील लेकर बिलाल जमान आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 29 जुलाई 2026 को कत्ल किए जाने वाले नौजवान मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूल को कर्ज देने वाले 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा ने मजमूई तौर पर कितना कर्ज ले रखा था, तफसीलात सामने आ गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मीर रजा ने मुबैना तौर पर आबिद नामी शख्स से 1,75,00,000 रुपए से जायद का कर्ज ले रखा था। मोनी नामी शख्स ने भी मीर रजा को 5,00,000 रुपए कर्ज दे रखे थे। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5,00,00,000 रुपए से जायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि फहरिस्त में शामिल अफराद से पूछ गछ का फैसला किया गया है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया है कि 12 अगस्त को सुबह बलोचिस्तान के जिला सोराब में फितरतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों की जानिब से तैयार की जाने वाली व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अचानक धमाके से फट गई। बयान में बताया गया कि बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान कबल अज वक्त धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो गए। दहशतगर्दों की जानिब से जखीरा किए गए दीगर बारूदी मवाद के पड़ने से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जान बहक हुए। ISPR ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द भी हलाक हुए, और इन वाकयात में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों पर एक और महंगाई का बम गिराते हुए पानी और सीवरेज के बिलों की शरह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पानी और सीवरेज पर 7.5% इजाफा किया गया है, जिसके बाद नजरसानी और नए रेट्स का इतलाक 1 जुलाई 2026 के बिलों से होगा। वाज़ह रहे कि पहले ही कराची के कई इलाके पानी से महरूम हैं, और मुतल्लिका हुकाम कई मरतबा इस बात का एतराफ भी कर चुके हैं। तहम इन इलाकों में भी महाना बिल आते हैं, जबकि शहरी पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर भी मजबूर हैं। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया, इलेक्शन कमीशन की मुलाजमा दरियाए सवा में डूबकर जान बहक हो गई। पुलिस से जराए का कहना है कि खातून की शनाख्त 28 साल कोमल जान के नाम से हुई है, और वह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर असिस्टेंट मुलाजमा होने के साथ साथ सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर और हैवी बाइक राइडर भी थी। وفاقی حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا، جس کے بعد گڈز ٹرانسپورٹر کی ہڑتال پانچویں روز بھی جاری رہی۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد ایوان نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ہماری ہڑتال پرامن ہے اور اپنے جائز مطالبات کے لیے ہے، مطالبات کی منظوری تک غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ دسمبر کی طرح ہم ہڑتال ختم کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، مطالبات کی مکمل منظوری تحریری طور پر ہوگی تو ہی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ ملک شہزاد ایوان نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت ہمارے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، ہڑتال کو پانچواں دن ہے جس کی وجہ سے اربوں